सुप्रभात। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी देहरादून है। आप हमें न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि। तदनुसार 20 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 20 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59:55 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन, वाचन स्वर मंजुला नेगी।
3: प्रकृति का कुछ ऐसा विधान है कि उत्थान के साथ पतन स्वाभाविक है। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए परिश्रम, लगन, संयम, उत्साह और निष्ठा की आवश्यकता होती है, जबकि पतन भी स्वयं अपने साधन खोज लेता है, जैसे कुसंगति और गलत साहित्य। अतः हमें गलत संगति और गलत साहित्य से बचना चाहिए। मन गतिशील है और चंचल भी। मन की गति को सबसे तेज चलने वाला कहा गया है और मन वो पानी को एक तरह से देखा गया है। इसलिए हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि पतन की स्थिति को हावी नहीं होने देंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब आपके संकल्प में शक्ति हो। ये शक्ति लगातार संकल्प से आती है। वर्तमान में जिधर देखें, लोग बुराई को ही भलाई कहते हैं और गलत कार्यों की तरफ उनका मनन और चिंतन चल रहा है। इस कारण व्यक्ति के चरित्र में गिरावट आ रही है। अगर इस वातावरण से ऊपर उठना है तो हम सबको संयम के साथ संकल्प लेना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या राजनीतिक, विकास हेतु संकल्प की आवश्यकता होती है। छोटे से छोटे सफलता बिना परिश्रम संभव नहीं। पत्थर को ऊपर फेंकने में हमें मेहनत करनी होती है, जबकि नीचे फेंकने में कोई खास श्रम नहीं लगता। व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से जो इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेता है, जिसका आधार परिश्रम है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भारतीय इतिहास साक्षी है कि जितने भी सफल आविष्कारक, योग्य चिंतक, श्रेष्ठ विचारक हुए हैं, सभी के पीछे संकल्प और परिश्रम की भूमिका है। हमारे संतों, ऋषि मुनियों ने भी मन को मजबूत बनाने की बात कही है, क्योंकि मन बलवान होगा तो विचार उज्जवल होंगे, संकल्प शक्ति बढ़ेगी। शास्त्रों में भी संकल्प शक्ति का प्रभाव बताया गया है। संकल्प शक्ति सर्वोपरि शक्ति है, इसी से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। संकल्प शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अतः प्रत्येक सफलता की कुंजी है संकल्प शक्ति और परिश्रम। इनके अभाव में संसार की गति रुक जाएगी और व्यक्ति उत्थान के स्थान पर पतन के अथाह सागर में डूब जाएगा। संकल्प शक्ति से मनुष्य के हर उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और मनुष्य प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6:08:17 हुए हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम प्रस्तुत है मातृ।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6:15 हो गए हैं। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब सुनिए विघ्नहर्ता श्री गणेश वंदना।

स्वर में FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6:40 हो गए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थीं। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूं, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब आप आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनेंगे। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओ आवाज सवेरे 7:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत चित्र रागिनी। शैल संगीत में लता पांडे सुनाएंगी कुमाऊनी लोकगीत प्रातः 7:30 पर।

प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून हमारे श्रोता सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे श्रोताओं प्रातः 9:00। कमर के दर्द विषय पर डॉक्टर विजय गंभीर से रमेश चंद्रा करेंगे बातचीत। सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत समय रहेगा प्रातः के 9:45। सवेरे के 10:02 पर रूपक में सुनना ना भूलिएगा मशक बीन पर थिरकता पहाड़। प्रस्तुत करता है विनय ध्यानी।

लोक संगीत में शशि जोशी और रुचिका रानी सुनाएंगी रुहेलखंडी लोकगीत। समय रहेगा सवेरे के 10:35। अपने फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुनेंगे श्रोताओं सवेरे 11 बजे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। श्रोताओं दिन में 12:12 पर रेखा शर्मा प्रस्तुत करेंगी भजन सुगम संगीत में। उनके साथ संगत करेंगे तबले पर सैकत मंडल, बांसुरी पर होंगे महेश चंद्र, गिटार पर अरुणाभ चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह।

श्रोताओ, कार्यक्रम घर गृहस्थी में आज डॉक्टर राखी पंचोला प्रस्तुत करेंगी वार्ता। वार्ता का विषय होगा डिजिटल युग और महिलाएं। दोपहर 1:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। मेजर भानु प्रताप सिंह के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आप सुनेंगे सैनिकों के लिए फिल्म संगीत दोपहर के 2:30 पर। दिन में 3:02 पर कार्यक्रम गाने नए तराने आप सुन सकते हैं श्रोताओं।

0: शास्त्रीय संगीत में आज अरिंदम चक्रवर्ती करेंगे सितार वादन राग वाचस्पति में सायं के 4:02 पर, और सायं के 4:30 पर फिल्मी गीत।
1: अथ वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रम् अद्यारभ्य अगस्त मासस्य 13 दिनांक पर्यन्तं प्रचलिष्यति। 25 दिनानां सत्रेस्मिन् 21 उपवेशनानि भविष्यन्ति। सत्रे अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि चर्चायै अंगीकरणाय च उपस्थापितानि भविष्यन्ति इत्यपेक्षते। अद्य लोकसभायां सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20-26, राज्यसभायां च राष्ट्रिय सम्मानस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात

0: रखना चाहता है, पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मॉल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026, are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest, march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, the police said that Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is in force in the area, hence protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. Delhi police has appealed all the citizens to respect the law, refrain from participating in any unauthorized gathering and march, and cooperate in maintaining public peace, safety and security. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC will provide equal opportunities and rights to all communities and this law is a major step in that direction. He said the UCC bill does not violate the fundamental rights of the citizens. The bill will now be tabled in the monsoon session of State Assembly beginning today. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team for securing four gold medals at the 58th International Chemistry Olympiad. In a social media post, Mr. Modi said that this was India's best ever performance at the prestigious global competition. He said the team's brilliance, dedication and passion for science have made the entire nation proud. The India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha and parts of Northeast India during the next 2 days. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain's substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. In men's cricket, England beat India by 27 runs in the third ODI and sealed a 2-1 series win at Lord's in London last night. England set a target of 388 runs for India. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 7 in 50 overs. Jacob Bethel was declared player of the match and Joe Root was adjudged player of the series. And that is the end of this news bulletin.
5: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून. स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:10 हुए हैं. श्रोताओ, अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र रागनी.

ये गीत आपने सुना फिल्म चित्रलेखा से लता मंगेशकर के स्वर में, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रोशन। अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म डॉक्टर विद्या से, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत श्रोताओं आपने सुना फिल्म मेरा साया से लता मंगेशकर के स्वर में। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और यात्रियों से मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का अधिकांश कार्य अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और अब निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से लगातार प्रतिबंधों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और श्रावण मास के सोमवार पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और राज्य में आने वाले यात्रियों से अपील की है कि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों तथा उफनते नदी नालों के आसपास जाने से परहेज करें। किसी भी असुविधा या आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क बंद होने जैसी स्थिति में प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, राहत एवं बचाव दल पूरी तरह तैयार रहें और प्रभावित लोगों को समय पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, पेयजल और संचार जैसी आवश्यकताएं सेवाएं बाधित होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में रविवार सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून, टिहरी, गढ़वाल व हरिद्वार जिले में रेड अलर्ट, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी व उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में बारिश का येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, भूस्खलन, जलभराव, अचानक बाढ़ जैसी परिस्थितियां और नदी नालों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि की संभावना जताई गई है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज अधिकतर जिलों में कक्षा 1 से 12 तक स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों ने अवकाश का आदेश जारी करने के साथ ही अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने बताया कि मौसम विभाग की जारी प्रत्येक चेतावनी पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिला एवं तहसील स्तर के आपदा नियंत्रण कक्षों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए और किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव दल बिना विलंब मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि नदियों, बरसाती नालों, गाढ़ गदेरों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखे जाने और जोखिम वाले स्थानों पर रहने वाले परिवारों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं, सड़क निर्माण कार्यों और अन्य संवेदनशील स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा की जाए।

0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्युत मंत्री से जुलाई 2026 की शेष अवधि के लिए 150 मेगावाट और अगस्त 2026 के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत केंद्रीय पुल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में लगभग 10 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज क्षमता के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों में 7,800 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता अथवा वायलेटिबिलिटी गैस माफ कीजिए गैप फंडिंग उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
2: मुख्यमंत्री ने राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं और ग्रिड स्थिरताओं को देखते हुए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्वीकृति क्षमता 500 मेगावाट आवर से बढ़ाकर 665 मेगावाट आवर किए जाने व उसके अनुरूप वायबिलिटी गैप फीडिंग उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से उत्तराखंड की ऊर्जा आवश्यकताओं, जल विद्युत परियोजनाओं, पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम व पिडकुल की एडीवी सहायतित परियोजना सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की और राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने के में दिए जा रहे सहयोग के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। आकाशवाणी देहरादून के समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर विनोद पोखरियाल।
1: प्रदेश ने भूतापीय जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। चमोली जिले के तपोवन में जियोथर्मल परियोजना के वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। परियोजना के लिए विश्व की अग्रणी आइसलैंड की जियोथर्मल विशेषज्ञ संस्था ब्रिक्स कंसल्टिंग इंजीनियरिंग की भारतीय सहयोगी फर्म को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने परामर्शदाता नियुक्त किया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि परामर्शदाता प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर ड्रिलिंग, भूवैज्ञानिक परीक्षण और अन्य तकनीकी अध्ययन किया जाएगा। यूजेवीएनएल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक के अध्ययन में तपोवन क्षेत्र को 1 मेगावाट की पायलट परियोजना व 10 मेगावाट की वाणिज्यिक जियोथर्मल विद्युत परियोजना के लिए उपयुक्त पाया गया है। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूजेवीएनएल ने उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन भी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल पर यूजेवीएनएल लिमिटेड और ऊर्जा विभाग को शुभकामनाएं दी हैं। भगवान शिव के पूजा आराधना के पर्व श्रावण मास के सोमवार को आज प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर, हरिद्वार के दक्ष प्रजापति, उत्तरकाशी के विश्वनाथ, पौड़ी के क्यों कालेश्वर व कमलेश्वर महादेव, चमोली के गोपीनाथ, बागेश्वर के बागनाथ व अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में श्रावण मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रविवार को धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से शाम तक 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सभी मंदिरों में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं और लोगों को नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। बहुप्रतीक्षित रेल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का अधिकांश कार्य अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और अब राज्य सरकार उन प्रतिबंधों की समीक्षा की ओर बढ़ रही है जो निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से लगाए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आवास विभाग ने रेलवे फ्रीज जोन में लागू 400 मीटर प्रतिबंध की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दिशा में आवास सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
2: ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतीय रेल परियोजनाओं में शामिल है। परियोजना के निर्माण के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने 9 जनवरी 2024 को रेलवे कॉरिडोर से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित किया था। ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, तिलवाड़ा, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलनी, घोलतीर और गौचर जैसे क्षेत्रों में रेलवे परियोजना की परिसीमा से 400 मीटर तक के दायरे में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि अनियंत्रित निर्माण कार्य, रेलवे परियोजना की सुरक्षा, सुरंगों और अन्य तकनीकी ढांचों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। आकाशवाणी देहरादून के समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर विनोद पोखरियाल।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 23-13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित के लिए सूचीबद्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और यात्रियों से मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का अधिकांश कार्य अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और अब निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और श्रावण मास के सोमवार पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 7:30:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल संगीत।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत और आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत लता पांडे से।

FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत और आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत लता पांडे से। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शैल संगीत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून से आप हमें सुन रहे हैं। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 7:59 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
3: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
4: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा।
5: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
6: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
5: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टानें खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
6: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली PV सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
9: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
8: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
10: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
8: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest, march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, the police said that Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. President Draupadi Murmu will hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu in Chisinau today. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. This is the first ever visit by an Indian President to Moldova. The President is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. After concluding her visit to Moldova, the President in the second leg of her visit will reach North Macedonia tomorrow. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Our correspondent reports that tribal communities have been kept outside the scope of this law.
11: Madhya Pradesh has taken a major step towards implementing the Uniform Civil Code or UCC. A cabinet meeting was held yesterday at Jagdishpur in Bhopal district, chaired by Chief Minister Dr. Mohan Yadav. At this meeting, the draft of the UCC Bill 2026 was unanimously approved. The bill will now be tabled in the monsoon session of the State Assembly, which begins today. The session will run until 24 July. After the cabinet meeting, Chief Minister Yadav told reporters that the UCC will give equal status to everyone in the state. He said multiple marriages will no longer be valid in the state. According to UCC bill, those in live-in relationship will have to register within 1 month. Marriage registration will also be made mandatory down to the village level. However, tribal communities have been kept out of its scope. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
8: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Jammu and Kashmir, 11 persons were killed and 8 are missing as rains triggered flash floods and landslides in the twin border districts of Rajouri and Poonch yesterday. Hundreds of people were rescued and shifted to safer places in multi-agency relief and rescue operations. Union Home Minister Amit Shah reviewed the situation following the incident. He assured of all help from the centre to Jammu and Kashmir. A report.
12: The devastating floods that hit areas of Rajouri and Poonch districts Saturday night, besides incurring huge losses of life, caused massive damage to private and government property, roads and other infrastructure also. In an incident of landslide, 8 persons of a family were buried under the debris of their house in Lower Madah Tehsil of Sorenkot. In Poonch district, around 12 vehicles were either damaged and washed away in the flash floods. Body of a woman was also fished out from a river in Rajouri town. Hundreds of residents to move to safer locations as flood waters in inundated low-lying areas. Weather advisory warned of moderate to heavy rainfall across Jammu and Kashmir till July 23. This is Angulshan Rana for Akashwani News from Jammu.
8: The southwest monsoon has once again become highly active over Himachal Pradesh. The Meteorological Department has issued red and orange alerts for today and tomorrow, warning of heavy to very heavy rainfall across most parts of the state. A report.
3: During the past 24 hours, the highest rainfall of 82.2 mm was recorded at Dharamshala in Kangra district. According to the Meteorological Center Shimla, a red alert has been issued today for Chamba, Kangra, Mandi and Sirmaur districts, warning of heavy to extremely heavy rainfall. An orange alert has been issued for Una, Hamirpur, Kullu, Shimla and Solan, while a yellow alert remains in force for Bilaspur, Kinnaur and Lahaul Spiti districts. The department has warned that the prevailing weather conditions may trigger landslides, flash floods and cloud bursts. People have been advised to stay away from rivers, streams and landslide-prone areas and to avoid unnecessary travel. In view of the red alert for heavy rainfall, the district administrations of Kangra, Chamba and Sirmaur have ordered the closure of all educational institutions today. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
8: Uttarakhand has been experiencing continuous rain since yesterday morning, affecting the life of both plains and hilly regions. The schools and colleges in most of the districts remain closed and administration remains vigilant in view of the alert. More from our correspondent.
4: According to the Met Department, a red alert for heavy to very heavy rainfall has been issued for Dehradun, Tehri Garhwal and Haridwar district, whereas orange alert for Uttarkashi, Nainital, Champawat, Pauri and Udham Singh Nagar and yellow alert for Rudraprayag, Chamoli, Almora, Bageshwar and Pithoragarh. In view of the rain alert, holiday has been declared for schools and all the Aganwadi centers in most districts today. Considering the Met Department's alert, Chief Minister Pushkar Singh Dhami has directed all departments to remain vigilant. Relief and rescue teams are instructed to be fully prepared and all possible assistance to be provided to the affected people in a timely manner. He has also urged the public and pilgrims to follow the advisory issued by the Met Department and the administration. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
8: Almost all districts of Uttar Pradesh are experiencing moderate to heavy rainfall, disrupting normal life across the state. More from our correspondent.
5: 5 people, including 4 children, were killed after an old building collapsed due to heavy rain in Muzaffarnagar district. 5 others sustained injuries and have been admitted to a hospital for treatment. An old temple also collapsed in Sant Kabir Nagar district. However, no casualties or injuries were reported in the incident. Heavy rainfall has affected normal life in several districts, including the state capital Lucknow, with waterlogging and traffic disruptions reported from many areas. The Meteorological Department has issued an orange alert for several districts of the state. The department has forecast that the prevailing weather conditions are likely to continue for the next 3 days. The Tarai region and parts of Bundelkhand are expected to receive heavy rainfall over the next 24 hours. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
8: The US Central Command said it has launched a new wave of military strikes against Iran, marking the 9th consecutive night of operations. In a social media post, the US Central Command said a new wave of strikes against Iran began last night and will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz, thus deepening tensions at the strait further. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of recent increase in levels of instability and conflict in Iran. It has advised Indian nationals intending to travel to Iran for any purpose to postpone travel for the time being until the security environment improves. It said Indians already in Iran should consider temporarily exiting Iran using available flight options. On to sports. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain's substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. More from our correspondent.
13: Spain have won the World Cup.
2: after a tense and fiercely contested 90 minutes ended goalless. Torres finally broke the deadlock in the 106th minute. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. With its victory, Spain became the first nation to simultaneously hold the World Cup crowns in both men's and women's soccer. The French striker Kylian Mbappe is now the owner of World Cup Golden Boots in FIFA World Cup 2026. He became the first player to finish as the leading scorer at multiple World Cups, winning his second Golden Boot award when Lionel Messi was blanked in Argentina's 1-0 loss to Spain in the final. Spain captain Rodri not only got to raise the FIFA World Cup trophy, but was also named the best player of the tournament, receiving the Golden Ball award. Golden Globe award was won by Une Seaman of Spain, while Young Player award went to his teammate Pau Cubarsí. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
8: In men's cricket, England beat India by 27 runs in the third ODI and sealed the three-match series 2-1 at Lord's in London last night. Despite Rohit Sharma's magnificent score of 138 runs, Shubman Gill 77 and Virat Kohli 74, India only managed 360 for 7 in pursuit of a mammoth target of 388, built on the back of a career-best 142 from Ben Duckett and 91 from Jacob Bethell. Opting to bat first, England scored 387 runs for the loss of 3 wickets in the allotted 50 overs. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 7 in 50 overs. Jacob Bethell was declared player of the match and Joe Root was adjudged player of the series. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakel.
13: Thank you, Shagun. The Asian Age informs Shah to introduce Rajya Sabha Vande Mataram Protection Bill today. Armenia and Saudi Arabia among six nations eyeing India's battle-tested Astra missiles, headlines the Hindu Business Line. In its editorial piece titled Two Pillars of Space Success, Hindustan Times writes, a robust talent pipeline will ensure India's continued public sector success and spur private sector momentum in the space sector. From punching above its weight with a low-cost Mars orbiter mission to establishing itself firmly in the club of elite space-faring nations with its superstardom, India has enough claims to space superstardom. Also, India became the third country in the world after the US and China to have private sector capacity in orbital launch, a critical threshold demonstrating technological sophistication. Hindustan Times headlines Sindhu ends two-year title drought in style, adding the 31-year-old become first Indian to win Japan Open, combining relentless attack and tactical discipline and composure. And finally, coming soon in Gujarat, a life-size Harappan town with markets, dockyards. Very soon, visitors to Lothal, one of the most prominent outposts of the Indus Valley civilization, will be able to get a feel of walking through the Harappan streets and civic spaces, informs the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
8: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Monsoon session of Parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of Parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill. Tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

गुड मॉर्निंग सुप्रभात, नमस्कार देहरादून। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और मैं पुष्पा बुंडीर एक बार फिर लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम नमस्कार देहरादून, और बनी रहूंगी आपके साथ पूरे 9 बजे तक। चलिए सुबह सुबह एक छोटा सा सवाल, शतरंज की बिसात में सबसे ताकतवर कौन होता है? राजा, रानी या वो छोटा सा प्यादा जिसे हम अक्सर कम आंक लेते हैं? जी हाँ, आज विश्व शतरंज दिवस है। ऐसा खेल जो हमें ये सिखाता है कि सही समय पर सही चाल पूरी बाजी पलट सकता है, और जिंदगी भी तो कुछ कुछ शतरंज जैसी ही है ना? एक बार जरा अपनी जिंदगी की बिसात पर नजर डालिए, कहीं कोई फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया जा रहा? कहीं एक कदम रुककर सोचकर चलने की जरूरत तो नहीं? जी हाँ, शतरंज की सीख बहुत सीधी है, हर चाल मायने रखती है, हार के बाद भी नई बाजी शुरू हो सकती है, और सबसे साधारण दिखने वाला मोहरा ही कभी कभी पूरा खेल बदल देता है। जहरीला इंसान सुन से प्रोग्राम में आज का पहला गीत।

उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा गैरोला से बातचीत हम करेंगे। श्रावण मास में सोमवार व्रत के आध्यात्मिक सामाजिक महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बात होगी। दून विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर एच सी पुरोहित से। इतना ही नहीं, कुछ प्यारे प्यारे तराने भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों पर और ढूंढ निकालते हैं कुछ ऐसी खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, हमसे और हमारे शहर देहरादून से। प्रदेश में बारिश का प्रकोप, देहरादून समेत 3 जिलों में रेड अलर्ट। यमुनोत्री हाईवे पर आया मलबा, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग 36 घंटे से बंद। दून में रिस्पना बिंदाल नदी उफान पर। दून में उफनाए नदी नाले, 7 का किया रेस्क्यू। राजधानी में रविवार को हुई भारी बारिश के बाद अचानक बढ़े जलस्तर के कारण संतला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने टापू पर फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड को मिले ऊर्जा परियोजनाओं में मदद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कई परियोजनाओं पर चर्चा की। अब तस्वीर, ग्राफ, चार्ट और वीडियो से पढ़ेंगे दिव्यांग छात्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समावेशी शिक्षा मिशन 2030 का किया शुभारंभ। और प्रदेश के मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज राजधानी देहरादून में आज 37 डिग्री अधिकतम और 23 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम रहेगा तापमान। ये थी कुछ स्थानीय महत्वपूर्ण खबरें इतिहास और अखबार के पन्नों से, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: जी हाँ चांद, कभी हमारे गीतों में महबूब का चेहरा बना, कभी हमारे सपनों का साथी, तो कभी दूर आसमान से तकता एक रहस्य जैसा। लेकिन साल 1969 में आज ही के दिन यानी 20 जुलाई को मानव ने पहली बार उस चांद की धरती पर कदम रखा और कल्पना को हकीकत में बदल दिया। मानव की इसी ऐतिहासिक उपलब्धि, अंतरिक्ष विज्ञान की यात्रा और इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका पर आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर देहरादून की वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा गैरोला से। स्वागत आपका, नमस्कार देहरादून में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर गैरोला, 20 जुलाई साल 1969 को मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, विज्ञान की दुनिया में इस घटना का क्या महत्व है?
1: 20 जुलाई

0: मानव इतिहास का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था, और जैसा हम सब जानते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने नासा का जो मिशन था अपोलो 11, उसके तहत चंद्रमा पर पहला कदम रखा। तो उन्होंने कहा था कि इंसान का एक छोटा सा कदम है ये, लेकिन समूची मानवता की प्रगति की दिशा में एक विराट छलांग है। और वहीं से अंतरिक्ष विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत हुई। और ये भी सिद्ध हुआ कि जो हमको असंभव लगते हैं लक्ष्य, वो विज्ञान और तकनीक के बल पर हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान को अभूतपूर्व गति मिली है। स्पेस शटल प्रोग्राम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मार्स मिशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी अनेक उपलब्धियां हैं, इसलिए इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, चंद्रमा हमेशा से मनुष्य के, मानव के आकर्षण और जिज्ञासा का विषय रहा है। आज भी वैज्ञानिक इसके अध्ययन को इतना जरूरी क्यों मानते हैं?
0: चंद्रमा का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का एक शुरुआती इतिहास का एक टाइम कैप्सूल है। और आप जानते हैं कि क्योंकि ये पृथ्वी से सबसे नज़दीकी अंतरिक्षीय पिंड है, और चूंकि पृथ्वी पर बहुत सारी जो भूगर्भीय गतिविधियां हैं, हवा, पानी, उनके कारण जो पुराने साक्ष्य हैं वो मिट जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर वे काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। इसलिए इसके अध्ययन से हमको पृथ्वी और हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है उसके इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। और वैज्ञानिक आजकल यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो वाटर, आइस, मिनरल्स और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पर हैं और कितनी मात्रा में मौजूद हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में मून पर एक स्पेस स्टेशन या लॉन्चिंग पॉइंट भी बन सकता है, जहाँ से आगे मार्स और जो जितने भी डीप स्पेस मिशंस हैं वहाँ से संचालित किए जा सकें। आप देखिए, इस दिशा में भारत का जो चंद्रयान मिशन है उसने भी दुनिया को महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और भारत की जो भी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है।
1: जी, आप यूसेक से जुड़ी हैं, यूसेक में वैज्ञानिक हैं और तमाम तरह की आपने रिसर्च की हैं, कई रिसर्च का आप हिस्सा रही हैं। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अंतरिक्ष अभियानों और चंद्रमा से जुड़ी खोजों का आम लोगों के जीवन या भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
0: जी, बहुत ही सही प्रश्न है आपका। अक्सर लोगों को लगता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का संबंध केवल रॉकेट, सैटेलाइट, वैज्ञानिकों या अंतरिक्ष यात्रियों से है, लेकिन सच तो यह है कि आज इसका उपयोग हम सब हर दिन करते हैं। सुबह मौसम की जानकारी, फोरकास्टिंग, मोबाइल में GPS नेविगेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, TV ब्रॉडकास्टिंग, इन सब में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम चाहे देखें या ना देखें, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्पेस टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। और जैसे कि आपने कहा कि मैं यूसैक की एक साइंटिस्ट हूँ, यूसैक में बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग। तो इस सब के लिए डिफरेंट सैटेलाइट डेटा, ड्रोन डेटा, इन सब के यूज़ से हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जिसको राज्य के जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस संदर्भ में अगर हम भारत के स्पेस प्रोग्राम को देखें तो 1960 के दशक से शुरू हुई ये जो कसरत है, और आर्यभट्ट, PSLV, GSLV, चंद्रयान मिशन, मंगलयान, आदित्य L1, तो बहुत सारे सफल मिशन भारत ने किए हैं और विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और परसों ही जो आपने देखा है कि 18 जुलाई को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम 1 की जो सफल लॉन्चिंग हुई है, वो भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल है। और इससे दिखता है कि भारत इसरो के अलावा प्राइवेटली स्टार्टअप के माध्यम से भी वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बना रहा है।
1: अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों में अंतरिक्ष को लेकर काफी जिज्ञासा रहती है, तो अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों और युवाओं के लिए आज भारत में किस तरह के अवसर उपलब्ध हैं और उन्हें अभी से क्या तैयारी कर लेनी चाहिए?
0: देखिए, आज भारत में स्पेस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो के साथ साथ इनस्पेस, एनसील और कई प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स भी हैं, जो कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जियो स्पेशल एप्लीकेशन और स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर लेके आ रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है, उनको मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनोवेशन पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनमें जिज्ञासा का होना, क्यूरियोसिटी होना, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना। इसलिए बच्चों को सवाल पूछने दीजिए, एक्सपेरिमेंट करने दीजिए और साइंस को इंजॉय करने दीजिए।
2: बहुत धन्यवाद आपका. आप थी उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर देहरादून की साइंटिस्ट डॉक्टर सुषमा गैरोला. प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लेते हैं.

0: जी हाँ श्रोताओं, सावन का महीना आते ही जैसे प्रकृति हरियाली ओढ़ लेती है और मन भक्ति, उल्लास और यादों से भीग उठता है। उत्तराखंड में सावन के महीने के पहले दिन हरेला मनाया जाता है, यानी हरेला पर्व के साथ ही श्रावण मास की शुरुआत मानी जाती है। और आज है सावन का पहला सोमवार। सावन में सोमवार के व्रत का भी अपना अलग महत्व है। आइए इस मौके पर बात करते हैं दून विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर एच सी पुरोहित से। सर, बहुत स्वागत आपका, नमस्कार देहरादून में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रोफेसर पुरोहित, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सावन के जो सोमवार के जो व्रत हैं, इनका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है?
1: श्रावण का जो महीना है, यह पूरे वर्ष में पवित्र माना जाता है और इस महीने में विशेष तौर पर सोमवार का व्रत काफी लाभकारी माना गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से हो, चाहे हमारी समृद्ध धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से हो। सबसे पहले इसका हम धार्मिक महत्व यदि जाने तो हम सभी को मालूम है कि समुद्र मंथन में जो हलाहल निकला था, देव और असुरों के बीच में समुद्र मंथन सावन के महीने में ही हुआ और उसमें जो भीषण हलाहल विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण किया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उस विष की तीव्र गर्मी से महादेव को बचाने के लिए सभी देवताओं ने उनके ऊपर शीतल जल अर्पित किया, इसीलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जलाभिषेक की परंपरा जुड़ी हुई है। तो यह धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि हमारा पूरा जो पंचांग है सनातन का, हिंदू का, यह खगोल शास्त्र पर आधारित है और सावन का महीना वर्षा ऋतु के आगमन में है, इसलिए इसके पीछे पाचन की जो क्रिया होती है ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ा सा मंद रहती है। इस कारण से जो पाचन तंत्र जो प्रभावित होता है, यदि हम उसको थोड़ा विराम देंगे हर हफ्ते तो पाचन क्रिया भी हमारी सही रहेगी। और क्योंकि हम सबको मालूम है कि व्रत के समय हम लोग हल्का भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं जिससे किसी प्रकार का अपच न होने पाए। ऑटोफिजी का भी ये नियम है कि हम अपनी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा शरीर को विराम देना चाहिए। इसके अलावा वाटर बॉर्न जो डिजीज होती हैं, पानी से जनित, उन रोगों का भी, खासतौर से जो पत्तियां हैं, घास है, तो इस तरह से इसके बचाव के लिए भी जरूरी है कि हम ऐसे हल्का भोजन करें, फलों का उपयोग करें, दूध का उपयोग करेंगे और शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन व्रत के कारण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इसलिए व्यक्ति यदि इस प्रकार के नियम का पालन करेगा जो हमारे परंपराओं में वर्णित है तो उसके वैज्ञानिक लाभ हैं। आध्यात्मिक की दृष्टि से आप देखें तो सोमवार यानी सोम यानी चंद्र, इस पृथ्वी का 70% भाग जल है और मनुष्य के मन में भी जल है, और कैसे हम प्रभावित न हो सके विकारों से, कैसे सही चले, इसके लिए जरूरी है कि हम चंद्र की पूजा करें। तो सोमवार का मतलब इससे भी लिया जाता है, शिव तत्व की इसमें सक्रियता है ऐसा आध्यात्मिक गुरुओं ने माना है, और सात्विकता का हम यदि पालन करेंगे तो निश्चित रूप से अनुशासित होकर के ही संयम के साथ व्यक्ति अहिंसा के साथ यदि जीवन का यापन करेगा तो निश्चित रूप से यह श्रेयस्कर होगा समाज की दृष्टि से।
0: जी बिल्कुल, सावन के महीने में हम देखते हैं कि सभी शिवालय ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंजायमान रहते हैं। ऐसी क्या शक्ति है इन पांच अक्षरों में, इस मंत्र में, ओम नमः शिवाय में?
1: बिल्कुल सही है, नमः शिवाय ये पांच तत्वों का द्योतक है। इस सृष्टि की रचना में पांच तत्व हैं, मनुष्य का शरीर भी पांच तत्वों से ही निर्मित है, इसलिए नमः शिवाय का मतलब है कि हम इन पांच तत्वों के भाव को हमेशा, इनके प्रति कृतज्ञ रहें, इनके प्रति हमारे मन में हमेशा ये ग्रेटिट्यूड का भाव हो कि हम अपने आप में कुछ नहीं हैं। नह माने पृथ्वी, म का मतलब है जल, नमः यानी पृथ्वी और जल, ये दो तत्व हैं महाभूतों में। शिवाय यानी सी है अग्नि, वा है वायु और य है आकाश। नमः शिवाय यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व का यदि हम मंत्र करेंगे तो उससे हमारे अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं होगा, हमें लगेगा कि मेरा कुछ नहीं है, जो भी है सब इस सृष्टि से लिया, सृष्टि में रह जाएगा और शिवत्व की प्राप्ति होगी, यानी कि कल्याण के लिए एक तरह से वैज्ञानिक चेतना और पर्यावरण के प्रति हमें संवेदनशील बनाने का यह मंत्र है। तो नमः शिवाय का मंत्र निश्चित रूप से धार्मिक न होकर के वैज्ञानिक अधिक है, यह हमें बोध कराता है कि हमें प्रकृति के इन पांचों तत्वों की, जिनका निर्माण हमने नहीं किया, जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदत्त हैं, इनके संरक्षण का हम व्रत लें, इनका हम पालन करें।
0: प्रोफेसर एच सी पुरोहित, आप आज श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से जुड़े और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपने विचार आपने हमारे श्रोताओं संग साझा किए, बहुत धन्यवाद आपका, और श्रावण मास के पहले सोमवार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के पहले सोमवार की, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।

तो नमस्कार देहरादून में आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े आपके कुछ सुझाव हों तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। साथ ही पत्रों के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है नमस्कार देहरादून, द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी, हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून, पिन कोड है 248001। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय किसी और साथी के साथ, मुझे यानी पुष्पा पुंडीर को दीजिए अनुमति। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार देहरादून।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 9:28 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत, और पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म धरती से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक और ताजगी दोनों लेकर आता है। मिट्टी की सौंधी खुशबू और हरे भरे पेड़ मन को सुकून देते हैं। लेकिन श्रोताओ, इस मौसम में सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मौसम का आनंद लीजिए।

फिल्म सत्ते पे सत्ता से आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाज में गीत आपने सुना, जिसे लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत आरडी बर्मन का था। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और फिल्म का नाम मेरे हम सफर। कि दूर तक छाए थे बादल, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ साथ फूलों और गुलशन की खुशबू भी कहीं ना कहीं इस मौसम के लज्जत को बढ़ा देती है। तो सब और फूल खिल जाते हैं और देखिए गुलाब चमेली के फूलों पर कितनी प्यारी बूंदें टिकी होती हैं, जैसे प्रकृति ने उन्हें खुद नहलाया हो।

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम गीत से। आवाज थी अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की, बोल इंदिवर के थे। अब अगला गीत है फिल्म रॉकी से, जिसे गाया है

किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है।

बारिश का मौसम आते ही घूमने का मन और ज्यादा करने लगता है, खासकर जब सामने हरे भरे पर्वत दिखाई दें, बादलों से ढके पहाड़, झरनों का कलकल और ठंडी हवाओं के झोंके, सब कुछ जादू जैसा लगता है और दिल खुद ब खुद उस दिशा में खींच जाता है।

फिल्म नदिया के पार से आप सुन रहे थे हेमलता और जसपाल सिंह के स्वर में एक गीत। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन ने। श्रोताओ, अगला गीत है फिल्म महबूबा से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में।

जब पवन धीरे धीरे चलती है तो वो फूलों की खुशबू को अपने साथ ले ही आती है। वो खुशबू सिर्फ हवा नहीं होती, वो किसी अपने के आने का पैगाम बन जाती है। लगता है जैसे पवन खुद मोहब्बत की दास्तान सुना रही हो, कि फूलों की खुशबू को चुरा लेती है पवन, मोहब्बत की दास्तान बना देती है पवन। तेरे आने की आहट जब भी मिलती है, मुझे खुद से ही ज्यादा भा जाती है पवन।

श्रोताओं, सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सुन रहे हैं। फिल्म बेमिसाल से लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ये सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 9:45 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहत, जहां डॉक्टर विजय गंभीर से रमेश चंद्रा कर रहे हैं बातचीत कमर दर्द के विषय पर।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर विजय गंभीर को। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे पीठ दर्द और फिजियोथेरेपी के बारे में। डॉक्टर विजय गंभीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: रमेश जी, आपका धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पीठ दर्द होता क्या है।
2: रमेश जी, देखिए, पीठ दर्द जो परिभाषित किया गया या डिफाइन करा गया, उसमें अलग अलग गाइडलाइंस दी गई हैं। यूरोपियन गाइडलाइंस अलग हैं या एशियन गाइडलाइंस अलग हैं। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, अगर जो आपकी रिब्स हैं उसके नीचे वाले भाग में या आपके जो हिप्स हैं उससे ऊपर वाले भाग में अगर दर्द हो रहा है, तो वो पीठ दर्द की कैटेगरी में आता है। वो पीठ दर्द में हम उसको लोअर बैक पेन बोलते हैं
1: जी।
2: ये जो लोअर बैक पेन है, ये एक तरह एक डिस्कम्फर्ट है
1: जी।
2: और जो मरीज हमारे पास जब आता है, तो हम उसे एक प्रश्न जरूर पूछते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई इस दर्द की
1: जी,
2: और ये कितने दिनों से आपको हो रहा है
1: जी। जी,
2: इससे हमें ये जानने में सहायता मिलती है कि जो दर्द है वो किस श्रेणी का है।
1: डॉक्टर साहब, पीठ दर्द है, इसको साइलेंट एपिडेमिक क्यों कहा जा रहा है?
2: हाँ, आपका प्रश्न ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम इसकी प्रिवेलेंस देखें
1: जी
2: दर्द की, जो कि हमें सबको परेशान कर रहा है
1: जी,
2: तो इंसान की पूरी उम्र में अगर हम देखें तो हर व्यक्ति को कभी ना कभी पीठ का दर्द होता है
1: जी।
2: और अगर मैं प्रिवेलेंस की बात करूं तो कम से कम ना हो तो 80% लोगों को होता है ये, चाहे वो वयस्क हैं, किशोर हैं या बड़ी उम्र के हैं
1: जी।
2: तो इससे तो हमें यही प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति इसमें शामिल हो रहा है, इस दर्द में, और कभी ना कभी उसको ये मैकेनिकल बैक पेन या जिसको मैं नॉन स्पेसिफिक बैक पेन बोलूं या फिर दूसरी कैटेगरीज के हम बैक पेन बोलें जिसमें हम स्पेसिफिक बैक पेन बोलें,
1: जी
2: कहीं ना कहीं उनको जीवन की

0: इस उम्र में कभी ना कभी होता है
1: जी।
0: और परेशान करता है उसकी गतिविधियों को, उसकी वर्किंग को, उसकी लाइफस्टाइल को।
1: डॉक्टर विजय गंभीर जी, पीठ दर्द के कारण क्या हैं?
0: रमेश जी, कारण में अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो दो टाइप के पेन हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। पहले मैकेनिकल बैक पेन हम बोलें या फिर स्पेसिफिक बैक पेन बोलें,
1: जी
0: जिनका कारण जो होता है वो जैसे वजन को आपने एकदम उठा लिया
1: जी,
0: या आप ज्यादा आगे की तरफ झुक गए
1: जी,
0: या जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर दी
1: जी
0: तो मसल्स के अंदर एक टेंडरनेस डेवलप हो जाती है
1: जी,
0: या मसल्स के अंदर एक स्पैजम आ जाता है, या आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपके मांसपेशियों पे और हड्डियों पे या पीठ के जितने भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उस पे प्रेशर या लोड ज्यादा पड़ रहा है
1: जी,
0: और उसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उन स्ट्रक्चर्स की वो कम होती जा रही है उम्र के साथ, या आपकी जो बैठने की जो पोजीशन है या उसका जो ड्यूरेशन है वो ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो फिर आपकी जो बैक की जो स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशली जो डिस्क है उसमें प्रेशर आता है और उसके आसपास की जो नसें हैं या मांसपेशियां हैं वो प्रभावित होती हैं और वो दर्द जो है फिर डेवलप होने लगता है।
1: डॉक्टर विजय गंभीर जी, आपने कई सारे कारण बताए, अगर वजन उठाने की बात करें तो कितना वजन एक सामान्य व्यक्ति उठाए ताकि वो कमर दर्द की जो समस्या उससे बचा रहे?
0: वजन अगर आपको उठाना है तो पहले तो आपको अपनी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ या अपनी बॉडी की कैपेसिटी या अपना टॉलरेंस देखना होगा कि आप उस वजन को उठाने में सक्षम है या नहीं है।
1: जी,
0: अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी बॉडी फिटनेस, अपना टॉलरेंस और जो आपकी एज है या आपके अंदर और दूसरी कोई बीमारी है उससे हटकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको ना ध्यान में रख के, तो फिर वो आपको प्रभाव डालती है। तो वजन अगर आप उठा रहे हैं तो हम यही कहते हैं कि आप एकदम झुक के वजन को ना उठाएं, घुटनों को थोड़ा मोड़ लें आप। अगर आप खड़े हुए हैं तो हल्का सा आप घुटनों को मोड़ेंगे, नीचे की तरफ स्क्वाट करेंगे, फिर आप वजन को उठाइए अपनी बॉडी के पास रखते हुए, जिससे कि जो लीवरेज का जो इम्पैक्ट डिस्क के ऊपर या पीछे की हड्डियों के ऊपर या पीछे की मांसपेशियों के ऊपर जो आ रहा है वो कम से कम आए और आप अच्छी स्टेबिलिटी के साथ उस आउटर वेट को उठा लें और कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्रेन या स्ट्रेस जो बैक पेन का कारण बन सकता है वो ना।
1: डॉक्टर साहब, क्या प्रॉपर तरीका हो, पोस्चर हो बैठने का?
0: देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ऑटोमेशन आया और ऑटोमेशन के बाद अब डिजिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है और उसके बाद हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बैठने की अगर मैं बात करूं, और आपने जैसे पहले भी बोला कि बैक पेन अब साइलेंट एपिडेमिक बन गया है, क्योंकि हमारी पूरी 24 घंटे की दिनचर्या में जो बैठना है, हमारे सारे ऑफिस के काम या बच्चों का जो पढ़ने का काम है वो बैठ के ही हो रहा है
1: जी।
0: और बैठने में क्या होता है कि जो इंट्राडिस्कल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है
1: जी।
0: और अगर आप इस पोजीशन में बहुत ज्यादा लंबे समय तक, लंबे वर्षों तक एक ही स्थिति में काम करते रहेंगे तो जो बॉडी के अंदर जो एडेप्टेबिलिटी चेंजेस हैं वो बहुत होते तो हैं, पर उसके बाद वो चेंजेस होते हैं जो आपको बैक पेन की कैटेगरी में लेकर आ जाएंगे
1: जी।
0: यानी कि जो डिस्क के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा,
1: जिसको
0: हम इंट्राडिस्कल प्रेशर बोलते हैं। और रिसर्च भी यही कहती है कि बैठने की पोजीशन में जो डिस्क का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पे दबाव पड़ेगा और उसमें जो प्रोट्रूजन है या एक्सट्रूजन है या जिसको हम डिस्क हार्निएशन कहते हैं उसके बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ज्यादा देर तक बैठे रहना एक साइलेंट स्मोकिंग है और बॉडी का उसके ऊपर एक सिस्टमिक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जिससे मांसपेशियां कमजोर होती हैं और आपकी जो कोर स्टेबिलिटी है या जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है या जो हार्ट की जो एरोबिक कैपेसिटी है वो कम होने लगती है
1: जी।
0: और अगर ये कम होगी तो जो एक्सटर्नल लोड्स हैं या जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हम अपने काम में कर रहे हैं या अपनी जीवन शैली में कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा होने लगता है और उससे फिर मैकेनिकल बैक पेन बढ़ता है।
1: डॉक्टर विजय गंभीर जी, आज के युवा की बात करें तो वो तो घंटों घंटों बैठा रहता है।
0: देखिए, हम ये एडवाइस करते हैं कि आपका जो भी एक्टिविटी ऑफ लाइफस्टाइल है उसमें आपकी सिटिंग ज्यादा है तो आप इंटरमिटेंट सिटिंग करें, बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें
1: जी।
0: आप अगर बैठ रहे हैं तो 10 से 12 मिनट के लिए बैठिए और जब भी आपको समय मिल रहा है तो अपनी स्पाइन को अनलोड कर लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, हल्की सी स्टैंडिंग ले लीजिए, अपनी स्टैंडिंग में जो स्टांस है अपना चेंज कर लीजिए जिससे कि जो मैकेनिकल जो प्रेशर्स हैं या फोर्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाएं और डीकंप्रेस हो जाएं और दोबारा आप बैठें और दोबारा अपना काम करें। तो एक लंबे समय तक आप ना बैठें, अगर आप लंबे समय तक बैठेंगे तो वो आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो लिगामेंट्स हैं, अंदर की जो डिस्क है, जो फेशिया है, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो जो प्रॉब्लम होगी वो स्ट्रेस या स्ट्रेन होगी और वो दोबारा अपनी पोजीशन फिर वापस नहीं आएंगे, फिर उसमें

0: जो चेंजेस होंगे वो फिर नॉन रिवर्सिबल हो जाते हैं, जिससे कि कैपेसिटी है आपकी बैक की वो कम हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, देखने में ये भी आता है कि आज के समय लोग हैं ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं और नींद की भी समस्या रहती है, क्या ये भी पीठ दर्द की वजह बन सकता
0: बहुत
1: है?
0: बड़ा कारण है। देखिए, अगर हम स्लीप हाइजीन की बात करें और स्ट्रेस की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा कारण है। देखिए, अगर आप तनाव की स्थिति में हैं तो मसल्स ऑलरेडी एक टेंशन में रहती है, वो रिलैक्स नहीं हो पाती, और
1: जी
0: अगर वो रिलैक्स नहीं होंगी तो मसल्स की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होगी।
1: जी
0: आप मेंटल लेवल पे भी ऑक्यूपाइड रहेंगे, और रिलैक्सेशन अगर आपको नहीं मिलेगा, रात को अगर नींद आपकी पूरी नहीं होगी, तो जो नेक्स्ट डे की जो फ्रेशनेस है जो आपकी बॉडी को चलाती है वो आपको नहीं मिलेगी। और मसल्स अगर फैटीग में रहेगी तो उसकी जो टायर्डनेस है, उसका जो फैटीग है, वो भी पेन को जनरेट करता है।
1: जी
0: तो अगर आज की डेट में हम बात करें तो स्ट्रेस और जो नींद है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो युवाओं में दर्द की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है या बैक पेन को बढ़ा रहा है।
1: डॉक्टर गंभीर जी, महिलाओं की बात करें, ज्यादा समस्या रहती है उन्हें कमर दर्द की या पीठ दर्द की?
0: महिलाओं की आपने बात सही बोली कि स्पेशली जो हाउस होल्ड महिलाएं हैं या जो वर्किंग महिलाएं हैं, उन पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना है, और घर भी संभालना अपने में एक बहुत बड़ा काम है, और उसमें इतना, और बैठने के तरीके या दूसरे जो डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं उसको कैसे यूज कर रहे हैं, और अब मोबाइल का भी यूज उनमें बढ़ता जा रहा है। तो महिलाओं की अगर हम मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को देखें कंपेयर टू मेल में, तो थोड़ा सा उसमें चेंज होता है, और उनकी पर्टिकुलर एक उम्र में जब वो 40 या 45 से ऊपर जा रही हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है या उनमें जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो इफेक्ट करते हैं उनके बोन के स्टेटस को, उनकी मसल्स के स्टेटस को, और उस वजह से अगर उनकी मसल्स वीक हैं, एज के साथ वैसे मसल्स सबकी वीक होती हैं, और उसके बाद बोन भी वीक होती हैं, वीकनिंग के कारण उनमें जो मैकेनिकल पेन है वो ज्यादा होने लगता है।
1: डॉक्टर विजय गंभीर जी, अगर कोई व्यक्ति पीठ दर्द से ग्रसित है तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को कब दिखाएं?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि उसे कब दिखाना चाहिए, वो दर्द कब शुरू हुआ है
1: जी
0: और वो कैसे रह रहा है, कैसे परसिस्ट कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी कैसी है।
1: जी
0: तो अगर कोई दर्द जो कि बिल्कुल नया है और आपकी पीठ में आया है, स्पेशली लोअर बैक में,
1: जी
0: तो वो स्ट्रेन से आया, स्ट्रेस से आया, किस एक्टिविटी के बाद हुआ, उसकी शुरुआत कैसी हुई, उसका जो लक्षण आया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
1: जी
0: और उसके बाद नेक्स्ट 2 से 3 डेज में या 7 दिन तक वो दर्द कैसे बिहेव कर रहा है आपके साथ।
1: जी
0: अगर वो दर्द 7 दिन में या 2 हफ्ते में ठीक हो गया है तो इसका मतलब ज्यादा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, बहुत ही सीवियरिटी में और
1: जी
0: बहुत ही असहनीय है, तो फिर तुरंत डॉक्टरी परामर्श आपको लेना चाहिए।
1: डॉक्टर गंभीर जी, क्या जो पीठ का दर्द है वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है?
0: पेन जो ठीक होता है फिजियोथेरेपी से, वो जो नॉन स्पेसिफिक बैक पेन है या जो मैकेनिकल बैक पेन है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं फिजियोथेरेपी,
1: जी
0: और जो स्पेसिफिक बैक पेन है जिसमें इन्फेक्शन है या मैलिग्नेंसी है या फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या दूसरे जो पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं, उसमें सिम्टम्स मैनेज करने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है।
1: जी
0: अब जो नॉन स्पेसिफिक बैक पेन है उसमें फिजियोथेरेपी कैसे काम करती है, फिजियोथेरेपी काम करती है आपकी जो मसल्स के अंदर जो स्पैज़म आया या
1: जी
0: जो टेंडरनेस हुई है उसको रिड्यूस करने, मसल्स को या लिगामेंट को दोबारा अपनी पोजीशन में वापस लाने के।
1: जी
0: उसके साथ वो काम करती है हमारी मैनुअल थेरेपी, जिसमें मोबिलाइजेशन है, मैनुपुलेशन है, उसके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस,
1: जी
0: उसके साथ हमारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं जो इलेक्ट्रोथेरेपी में है पेन मैनेजमेंट के, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी टेंस से ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में लेजर भी आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
1: जी
0: इसके साथ साथ एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मरीज को समझाना कि आपको हुआ क्या है और इसका प्रोग्नोसिस कैसे होगा, वो
1: जी
0: उसको टाइमलाइन देना, उसके लक्षणों को समझना, उसके बिहेवियर को समझना, और जैसा आपने कहा वो नींद और स्ट्रेस,
1: जी
0: उसमें बहुत अच्छा जो काम आता है साइकोलॉजिकली, दो इट्स नॉट माय टॉपिक, उसमें जो एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है CBT, कि आप अपने व्यवहार को कैसे चेंज करें जिससे अच्छी नींद ले पाए, आप
1: जी
0: अपने व्यवहार को कैसे चेंज करें कि स्ट्रेस कम करें, और उसके बाद जो रोल है वो डाइट का है, और उसके बाद सबसे बड़ा रोल है हाइड्रेशन,
1: जी
0: कि आपकी जो पानी की मात्रा है वो आपके मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू को हाइड्रेट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि जितना अच्छा उसमें हाइड्रेशन रहेगा उसकी लोडिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी हो।
1: डॉक्टर साहब, अगर फिजियोथेरेपी की बात करें तो आजकल लोग खुद भी फिजियोथेरेपी करने लगे हैं, कुछ मशीन खरीद लिए या कुछ पैड आते हैं उनका

0: योग कर लिया।
1: वो आपको एकदम अच्छे तरीके से दर्द को कम नहीं करेगा, अच्छा तरीका।
0: जी
1: उसके पीछे कारण यह है कि ठीक है आपने कोई हॉट पैड लगा लिया, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो हॉट पैड आपके दर्द को बढ़ा दे।
0: जी
1: उस दर्द को समझना और उसकी शुरुआत कैसे हुई जैसे मैंने कहा, और वो कितने दिनों से है और कितने दिनों से आपको कहां कहां कैसे प्रभावित कर रहा है या उसकी सीवियरिटी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई स्ट्रेन या स्ट्रेस आया है तो ठीक है आपने एक 48 घंटों के अंदर एक बर्फ की सिकाई कर ली,
0: जी
1: उससे आपके सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे। लेकिन उसकी रिकरेंस ना हो,
0: जी जी
1: दोबारा वो वापस ना आए,
0: जी
1: उसके लिए आपको उस स्ट्रेस या स्ट्रेन को कम करने के लिए एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस, सेगमेंटल स्टेबिलाइजेशन, अपना कोर स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाना। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपने आइसोलेटेड स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा।
0: डॉक्टर साहब कहते तो ये हैं कि अगर दर्द हो रहा है तो एक्सरसाइज मत करो।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, जो पेन कहां पर है, उसका लोकलाइजेशन कहां है, पेन का किस सेगमेंट में हो रहा है,
0: जी
1: ठीक है। तो जहां पर वो दर्द हो रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस या ट्रेनिंग होती हैं जहां पर मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ कॉन्ट्रेक्शन होता,
0: जी
1: जो वहां पर लोड जनरेट नहीं करेगा, वो हीलिंग में आपको हेल्प आउट करेगा।
0: जी
1: उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है। वो पहले सारी मसल्स की टेस्टिंग करेगा, सारे सेगमेंट को देखेगा कि उसका स्टेबिलिटी बिहेवियर कैसा है, आपके दूसरे भी एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से करेगा, चाहे वो इंस्पेक्शन है, चाहे ऑब्जर्वेशन है, चाहे फिजिकल एग्जामिनेशन है। उसके बाद जो भी वो एक्सरसाइज प्रोग्राम देगा, वो हीलिंग में हेल्प आउट करेगा।
0: जी
1: वहां पर जो भी इंफ्लामेशन या जो भी वहां पर स्ट्रेन या स्ट्रेस के कारण कोई और भी समस्या आई है, उसको वो हेल्प आउट करेगा। जितनी भी रिसर्च अभी आई है, वो ये कहती है कि एक्टिव बॉडी जल्दी हील अप करती है कंपेयर टू पैसिव बॉडी से।
0: जी
1: और युवाओं में भी अगर दूसरों में हम देखें, तो वहां पर बैक पेन का एक कारण और भी हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इनएक्टिविटी।
0: जी
1: तो एक्टिविटी अगर ऑर्गेनाइज मैनर में करी जाए और लोड उसका जो हम दे रहे हैं, अगर वो अच्छे से मॉडरेशन में और ऑप्टिमाइजेशन में दिया जाए, सुपरवाइज में, तो वो दर्द को कम करता है। और वहां का जो एनाबॉलिज्म है और वहां की जो एरोबिक सेलुलर लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म है, उसको वो अच्छा बनाता है। यानी कि वहां पर जो हमें एनाबॉलिज्म में जो प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए हीलिंग के लिए, वो ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज से बहुत अच्छा होता है। और ऐसे एविडेंस हैं जो ये शो करते हैं कि जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एक्सरसाइजेस हैं, वो लोअर बैक पेन में बहुत ही अच्छा उनका काम है, स्पेशली जो मैकेनिकल नॉन
0: और
1: स्पेसिफिक।
0: ये बात एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बता सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी,
0: डॉक्टर विजय गंभीर जी, कार्यक्रम के समापन में हमारे जो श्रोता हैं उन्हें पीठ दर्द से बचाव के लिए कोई गोल्डन रूल अगर हो तो क्या
1: हाँ,
0: कहना चाहें?
1: पहली जो बात है कि आप नींद बहुत अच्छी लीजिए। सेकेंडली, जो आपका खान पान है उस पे आपको हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। हरी सब्जियों में मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है, जो आपकी मसल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीजें, हम बहुत आमतौर पे एक सिंपल सा रूल कह देते हैं कि जो चीजें सफेद होती हैं उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है।
0: जी
1: तो ड्राई फ्रूट्स हैं या दूध है या पनीर है, सफेद दिख रही है,
0: जी
1: तो हरी सब्जियां और जो सफेद चीजें उसको आप ज्यादा खाइए। उसके साथ आप फाइबर को अच्छा खाइए, तो आपको अगर दर्द हो भी रहा होगा तो उतनी तीव्रता से
0: नहीं होगा।
1: नहीं होगा, आप मैनेज करेंगे उसको फूड से। थर्डली, आप अपनी जो कोर स्टेबिलिटी है उसको बना के रखें, बैक की। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो आपको कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम बना के दे सकते करें, वो आप जरूर करें। सेकेंडली, एरोबिक कंडीशनिंग जरूर करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय गंभीर जी, पीठ दर्द और फिजियोथेरेपी विषय पर जानकारी देने के लिए।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से और यात्रियों से मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार जिले में बारिश का रेड अलर्ट और उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत व पौड़ी और ऊधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चमोली जिले के तपोवन में जियोथर्मल परियोजना का वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य शुरू कर दिया गया है। देहरादून संतला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने टापू पर फंसे 7 लोगों को का सफल रेस्क्यू कर दिया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी में स्थित बौख टिब्बा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत केंद्रीय पुल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का अधिकांश कार्य अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और अब निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से लगाए प्रतिबंधों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कांवड़ मेले के दौरान परिवहन विभाग देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे से बसों का संचालन करेगा। देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण ने नई कॉलोनियों के विकास में नियम बदले जाने का निर्णय लिया है। सरकार प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में डिजास्टर रिस्पांस टीम का गठन करेगी। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और श्रावण मास के सोमवार पर आज प्रदेश में शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:03 होने को हैं। अब आप सुनेंगे रूपक। विषय है मशकबीन पर थिरकता पहाड़। प्रस्तुत करता है विनय ध्यानी।

खूबसूरत पहाड़ों और आलीशान किलों का देश स्कॉटलैंड अपने वीर योद्धाओं के लिए जितना मशहूर है उतना ही अपने संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। इंग्लैंड के इस छोटे से पड़ोसी देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। कैलेंडर, एनसाइक्लोपीडिया, फ्रिज, साइकिल और जीवन को आसान बनाने वाली कई चीजें यहीं के लोगों ने इजाद की हैं। यूनाइटेड किंगडम के इस राज्य ने संगीत की दुनिया को भी एक नायाब तोहफा दिया है और वो है बैकपाइप वाद्य यंत्र का आधुनिक स्वरूप। स्कॉटलैंड का ये बाजा कालांतर में अंग्रेजों के साथ भारत पहुंचा, जब स्थानीय कलाकारों ने इस पर गढ़वाल और कुमाऊं की लोक धुनें आजमाई तो लगा कि बैगपाइप इन्हीं धुनों के लिए बना है।

ये बाजा आज समूचे उत्तराखंड में मांगलिक अवसरों की शान और पहाड़ की पहचान बन चुका है। आलम यह है कि जब प्रवासी पर्वतीय लोगों को इसकी स्वर लहरियां सुनाई देती हैं, तो उनके जहन में पहाड़ आकार लेने लगते हैं।

0: आखिर इस बाजे में ऐसी क्या विशेषता है कि ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति में रच बस गया। दरअसल दुनिया भर के जनजातीय और लोक समाजों के संगीत में आश्चर्यचकित कर देने वाली समानता सुनने को मिलती है। संगीतविद और कला मर्मज्ञ डॉक्टर ममता सिंह,
1: संसार का जो लोक है वो एक है, चाहे वो कहीं के वाद्य हैं, चाहे वो कहीं का गीत है, नृत्य है, तो उन सब में कहीं ना कहीं एक समानता है। और स्कॉटलैंड के इस बैग पाइप ने उत्तराखंड में अपनी ज़मीन जिस तरह से बनाई है और जिस तरह से ये लोक संसार तक रच बस गया, तो वहाँ उसने यही साबित किया कि जब उसको अपना परिवेश मिलेगा, जिस वाद्य को, जिस गीत को, जिस नृत्य को अपने जैसा, अपने घर जैसा वातावरण जहाँ मिलेगा, तो वो अपनी जगह बनाएगा।
0: वरिष्ठ कवि और उत्तराखंड की संस्कृति के जानकार लीलाधर जगूड़ी,
2: सारी पृथ्वी पर लोक जीवन एक तरह से सोचता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग तो जब पानी का झरना आता है वहाँ गाना गाते हैं, उसको तानपुरा समझ के आपके मन चाह गाना गा रहे हैं। ये प्रकृति की देन है, और प्रकृति स्कॉटलैंड की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे हर्षिल की हो, चाहे गंगोत्री की प्रकृति हो, मैं समझता हूँ भूगोल में प्राकृतिक गुण समानांतर कुछ फैले हुए हैं। उत्सव के क्षण सारी दुनिया में है, वो किसी भाषा के मोहताज नहीं है, वो मनस्थिति के मोहताज है।
1: उत्तराखंड का जो एक सरल और एक सहज, आप कहेंगे लोगों का एक जो स्वभाव है ग्रहण करना, तो शायद मुझे कहीं लगता है वो एक भाव भी इसके पीछे है कि हमने उसे बहुत ही दिल से उसको अपनाया।
2: हमारे यहाँ हृदयंगम करने वाले स्वरों की बहुलता बहुत है। आत्मस्थ होना, संगीत भी आत्मस्थ होने का एक तरीका है। भारतीय संगीत तो ऐसा है कि वो हर संगीत को आत्मसात कर सकता है और उसको दे भी सकता है कुछ।

0: बैगपाइप का इतिहास बहुत पुराना है। इसके पूर्ववर्ती वाद्य यंत्रों के साक्ष्य ईसा से 2500 वर्ष पूर्व से मिलने आरंभ हो जाते हैं। मिश्र की पुरातन सभ्यताओं के अवशेषों से मिले हॉर्न पाइप को इस वाद्य यंत्र का शुरुआती नमूना माना जाता है। एकल पाइप वाला ये बाजा जानवर के सींग से बनाया जाता था। रोमन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक बैग पाइप के उपयोग के साक्ष्य लगभग नहीं के बराबर हैं, किंतु 13वीं शताब्दी तक ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तक पहुंच गया। 14वीं शताब्दी के ब्रिटिश वास्तु और शिल्प कला के जरिए ये पता चलता है कि उस दौर में बैग पाइप अपने कई रूपों में विद्यमान था। शेक्सपियर कृत द मर्चेंट ऑफ वेनिस में उस जमाने के विभिन्न प्रकार के बैग पाइपों का उल्लेख है। सेना बैंड से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट भास्कर सिंह रावत।
1: 13वीं से 16वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में आम लोगों के लिए कई प्रकार के बैग पाइप थे उस टाइम बुलाए, ऐसा उन्होंने अपने द मर्चेंट ऑफ वेनिस में उल्लेख किया हुआ है। शाही दरबारों के लिए ही इसका यूज होता था, बहुत उसमें खामियां भी थी उस टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाकर के इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। लेकिन 13वीं से 16वीं शताब्दी के बाद जब महारानी विक्टोरिया ने अपनी रेजिमेंट खड़ी करी, सिंगल पाइप को क्या कर रहा है, उन्होंने पाइप बैंड में तब्दील कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या करा कि 9 पाइपर रखे एक बैंड के अंदर, 9 पाइप और 5 साइड ड्रमर, 2 टेनर ड्रमर, 1 बास ड्रमर और 1 बैंड मेजर।

0: स्कॉटलैंड में भी बैगपाइप बाहर से आया था, किंतु इसे यहां अपार लोकप्रियता मिली और देखते ही देखते ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र बन गया। बहुत अधिक प्रचलन के कारण स्कॉटलैंड में इसका उत्तरोत्तर विकास हुआ। बैगपाइप के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने का श्रेय स्कॉटलैंड को ही जाता है। 18वीं सदी के अंत तक बैगपाइप ब्रिटिश सेना में शामिल हो चुका था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के बाद मित्र देशों के अभियान बलों के कमांडर के रूप में जनरल पर्शिंग को नियुक्त किया गया। उनका मानना था कि अपने सैनिकों के मनोबल को बनाए रखने में सैन्य बैंड का बहुत महत्व है। इसी उद्देश्य से उन्होंने फ्रांस में एक बैंड स्कूल की स्थापना भी की। इसमें बैगपाइप भी सम्मिलित था। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो यहां 1813 में कर्नल फोर्ट सेंट जॉर्ज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंटों में सैन्य बैंड के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीय सेना की प्रत्येक रेजिमेंट के पास अपना सैन्य बैंड उपलब्ध था। भास्कर सिंह रावत।
1: अंग्रेज ही पाइप बैंड को यहाँ पर लाए थे और उन्होंने यहाँ पर फिर इंडिया के जवानों को ट्रेन किया, फिर उनको नौकरियां दी।
0: डॉक्टर ममता सिंह।
2: पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के माध्यम से ये हमारे यहाँ ज्यादा पहुंचा, जो कि हमारे गढ़वाल के कुमाऊनी सैनिकों ने भाग लिया उन विश्व युद्धों में। हम जानते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड भूमि है वो सैन्य भूमि है, वीरों की भूमि है। तो जब सैनिकों के माध्यम से वो वाद्य घरों तक पहुंचा, चाहे वो मांगलिक उत्सव हैं, लोक उत्सव हैं, वो उसमें बजता रहा, लगातार बजता रहा। और हमें जानते हैं कि जब कुछ अच्छी और सच्ची बातें हों, चाहे वो अच्छी और सच्ची धुने हों, जितनी बार हम दोहराते हैं तो वो कहीं हमारे अंतर मन में बसती है जाके।
0: बैगपाइप को उत्तराखंड में वही परिवेश मिला जिस परिवेश में यह विकसित हुआ था। स्कॉटलैंड और उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता में अद्भुत साम्य है। पहाड़, झरने, नदियां और जंगल मिलकर एक जैसे तिलस्म की रचना करते हैं।
2: मशक बीन या बैगपाइप के पॉपुलर होने में जो सबसे बड़ा एक कारण मुझे लगता है वो ये लगता है कि जब अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ थी, तो क्योंकि जो ये माहौल उनको मिला वो उन्हें अपने देश की याद दिलाता था, वो तमाम चीजें उनको यहाँ दिखाई दी, तो शायद वो जो एक अपनेपन के भाव से उन्होंने यहाँ उसको फैलाने में एक अपना योगदान दिया, तो उसी तरह से यहाँ के लोगों ने भी शायद उसको अपनाया उसी स्नेह के साथ।
0: शादी बारातों में मशकबीन की धुन पर लोगों ने थिरकना शुरू किया तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ने लगी। डॉक्टर लीलाधर जगूड़ी।
3: इस बाजे की वजह से जो मुझे लगता है कि ये जब यहाँ आया तो शादियों का स्तर भी बदला, मिजाज भी बदला और लोकगीत उसमें शामिल हो गए।
0: ये भी अनूठा संयोग है कि मशकबीन भारत में मार्शल बैंड के अंग के रूप में आया था और कुमाऊं के युद्ध नृत्य छोलिया का अभिन्न हिस्सा बन गया।
3: यहाँ के लोकगीतों में, गढ़वाल के लोकगीतों में रासो परंपरा पहले थी और रासो परंपरा में छोलिया का विकास हुआ और छोलिया जो है वो एक तरह का युद्ध नृत्य है। अब युद्ध में तो लड़ाई होती है, नृत्य कहाँ होता है? जब लड़ाई हार जाते हैं, जब लड़ाई जीत जाते हैं तो उसकी स्मृति में आप उसका नाच गाना करते हैं। लड़ाई की प्रतीति और उसकी अनुभूति प्रतीकात्मक रूप से आपको दिलानी होती जब किसी को, तो तब आप उन चीज़ों को ला करके पेश करते हैं।
0: स्कॉटिश बैगपाइप आज भारत में मशक बाजा और मशक बीन नाम से जाना जाता है। मशक एक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है मवेशी की खाल से बना थैला। लीलाधर जगूड़ी।
3: ये शब्द आया जो सफाई कर्मी होता था उस समय का, वो एक चमड़े का थैला लिए चलता था और उसमें पानी भरता था और उससे सफाई करता था, उसको मशक बोलते थे।
0: डॉक्टर ममता सिंह।
2: चमड़े से उसको हम बनाते हैं और पांच उसके पाइप हैं, इनमें से एक पाइप के जरिए चमड़े की मशक में फूंक मारकर हवा भरी जाती है और जो उसका जो छिद्र वाला भाग होता है उसे दोनों हाथों की उंगलियों से हम नियंत्रित करते हैं, जबकि कंधे पर जो रखे अन्य तीन पाइप हैं उनसे एक संगीतमय ध्वनि निकलती है।
0: छिद्र वाले बांसुरी नुमा पाइप को चेंटर कहा जाता है। भास्कर सिंह रावत।
1: चेंटर बैग पाइप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो थोड़ा पतला और लंबा होता है। इसमें 9 छेद होते हैं जिनको हम सरगम या नोट्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं चेंटर से साउंड निकलता है।
0: तीन पाइप कंधे पर रखे जाते हैं, इनमें से 2 टेनर्स ड्रोन और 1 बास ड्रोन होता है।
1: बास ड्रोन यानी भारी आवाज निकलती है इससे, क्योंकि जो सुर चेंटर से निकलते हैं उसकी कॉम्बिनेशन के लिए एक कॉर्ड होता है, जैसे गिटार में कॉर्ड बजाते हैं ना, तो गाने को खूबसूरती देने के लिए ये बेस पाइप को बनाया गया है।
0: टेनर्स ड्रोन से अपेक्षाकृत तीखे स्वर निकलते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो ये ड्रोन चेंटर के लिए तानपुरे का सा कार्य करते हैं।

0: पर्वतीय लोग जब पहाड़ चढ़ते या उतरते हैं तो सामान को सहजता से कंधे पर रख लेते हैं। मशकबीन को भी पर्वतीय लोगों ने इसी सहजता से स्वीकार किया है।
1: पहाड़ पे देखेंगे बहुत सारी महिलाओं को कि जो सामान उठाते हुए कितने बड़े बड़े वजनों को, भारी से भारी चीजों को कितनी सहजता के साथ वो लिए चली जाती हैं। तो ये शायद कहीं ना कहीं एक वो आसान था उस वाद्य को बजाना।
0: एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से बैग पाइप बजाते हैं उनमें फेफड़ों से संबंधित बीमारी

0: बीमारी की संभावना कम हो जाती है। 5 से 10 मिनट तक बैग पाइप बजाना 2 किलोमीटर जॉगिंग करने के बराबर होता है। इसके उलट पर्वतीय लोगों के अपेक्षाकृत बड़े फेफड़ों के कारण भी उनके लिए मशकबीन बजाना आसान रहा होगा। भास्कर सिंह रावत।
1: आर्मी में भर्ती रैली होती है तो उसमें हमारे गढ़वाल के जो जो पुराने ऊपर के बुग्याल साइड के हैं, चमोली साइड के हैं, उत्तरकाशी वो जो बर्फीले स्थान के हैं, जो उधर के लड़के जो भर्ती होने आते हैं, तो हमने ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया है जब रेस होती है तो उसमें हमारे गढ़वाल के बंदे सबसे आगे आते हैं जो गांव देहात के हैं। दौड़ में ही पता लग रहा है कि स्टेमिना उनकी इतनी अच्छी है, उनको उनका सांस नहीं फूलता जल्दी, कम ऑक्सीजन में भी दौड़ सकते हैं वो।
0: ग्राम कांडी के गमाली मिस्त्री बहुत अच्छे मशकबाज हैं। उनका मानना है कि बांसुरी से मिलता जुलता वाद्य यंत्र होने के कारण ही मशकबीन उत्तराखंड में इतना लोकप्रिय हुआ होगा।
2: मैं पहले हल्की बांसुरी जानता था, तो हल्के फुल्के बांसुरी के स्वर और इसके स्वर लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन बांसुरी का एक ही स्वर होता है, एक स्वर बजती है। इसमें 2 स्वर होते हैं, एक इसका ड्रोन होता है पीछे वाला, आगे चेंटर होती है सहनाई।
3: बांसुरी एक ऐसा लोकवाद्य जिसे के भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है, और आज भी आप कुमाऊं और गढ़वाल की होली सुनेगा तो उसमें कृष्ण की ही होली है। तो कृष्ण से जुड़ा होना भी उसके साथ निकटता है, और इसके अलावा जिस माध्यम से उसको बनाया जाता है उस माध्यम का उपलब्ध होना भी एक हमारे लिए उत्तराखंड के लोक संगीत के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि बांसुरी को यहाँ पे एक खास वाद्य बनाया गया। और जब बांसुरी के साथ मशकबीन ने बजना शुरू किया तो वहाँ भी आप उसको हवा के माध्यम से बजा रहे हैं, वहाँ भी आप उसको हवा के माध्यम से बजा रहे हैं। पहाड़ में मैंने कई बार मतलब कार्यक्रमों के जरिए भी देखा और लोगों से मिलते हुए भी देखा, तो वहाँ मैंने बांसुरी बजाने वालों को भी सुना और मशकबीन बजाने वालों को भी सुना, और मेरी दोनों से बातचीत भी हुई। तो उनका कहना ये था कि ठीक है ढोल दमाऊ बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, लेकिन जैसे ही बांसुरी की धुन शुरू होती है तो वो जो मशकबीन बजाने वाला है उसके अंदर से एक भाव जैसे जगता है कि हाँ इस धुन के साथ उसको कनेक्ट होना है। तो मुझे लगता है कि दोनों का सम्मिलन उत्तराखंड के लोकगीत का बहुत बड़ा एक आधार है जिसके माध्यम से वो अपने सुरों के संसार को सजाता है।
0: मशक बाजा उत्तराखंड में आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि देश में सबसे अच्छे मशकबीन उत्तराखंड के पास ही बनते हैं।
3: बहुत सारे जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ तो मत कहिए आप उनको, कहिए कि बजाते आ रहे हैं, परंपरा है उनकी बजाने की, जिनमें से मंगल दा जो हैं या पुष्कर राम हैं या निहाल सिंह हैं या राधे राम पवार हैं एक व्यक्ति जो कि गढ़वाल के रहने वाले, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि लोग तो कहते हैं कि भाई सियालकोट या पाकिस्तान का जो है सबसे अच्छा मशकबीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो वहाँ हैं, लेकिन भारत में मेरठ और जालंधर को माना जाता है कि वहाँ बहुत अच्छे मशकबीन बनाए जाते हैं।

0: आज बाजार में, खासकर प्रदेश के शहरों में, पारंपरिक कलाओं के पारखी मौजूद हैं। उनके पास पर्याप्त धन भी है, किंतु विपणन रणनीति से बेखबर मशकबीन कलाकार सुदूर गांव में अलग थलग पड़े हैं। नए अवसरों की कमी के चलते सिर्फ शादी ब्याह में मशकबीन बजाकर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। इन कलाकारों ने लोगों को अपनी सुरीली धुनों पर थिरकने को मजबूर किया है। इन्होंने हर किसी को कभी न कभी आनंद के पल बांटे हैं, किंतु फिजा में मिठास घोलने वाले इन कलाकारों के प्रति हमारा रवैया उपेक्षापूर्ण रहा है।
1: अभी अगर हम वर्तमान में जो परिस्थितियां मशकबीन बजाने वाले कलाकारों के साथ हम देखते हैं, तो वो थोड़ी सी निराशा पैदा करती हैं कि जिस तरह से सरकारों ने उन्हें जितना संरक्षण देना चाहिए था, वो संरक्षण उन्हें कहीं मिला नहीं। बहुत सारे जो ऐसे बड़े आयोजन होते थे पर्यटकों के लिए, या बाहर से जो भी हमारे रहने वाले आने वाले उन लोगों के लिए होते थे, तो वो आयोजन कम होते चले गए जिनमें वो कलाकार प्रतिभाग करते थे। तो उनके ना होने की वजह से भी उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई, जिसकी वजह से उसको बजाना छोड़

0: अभी जा रहे हैं, तो वो वाद्य जो इस वक्त हमारे उत्तराखंड लोक संगीत की एक पहचान भी है, तो उसको बनाए रखने के लिए सरकारों को शायद बहुत ज्यादा प्रयासों की जरूरत है।
1: प्रशिक्षण और नवोन्मेष के अभाव में आज मशकबाजों की स्थिति दयनीय है। सरकार और सांस्कृतिक संस्थाओं का दायित्व है कि वो इस कमी को पूरा करें। लीलाधर जगूड़ी।
2: और तो और जो हमारे ये कलाकार हैं वो भी इनके प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं है, वो हिस्ट्री जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ धुन जानते हैं, थोड़ा बहुत कर लिया। लेकिन इसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। वर्कशॉप रखो ना, उस विद्वानों को बुलाओ और उन तमाम असफल और सफल कलाकारों को बुलाओ, उनके थोड़ा मंतव्य सुनो, क्या है, क्या वो जानते हैं, तो शायद उद्धार हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि निराश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये है कि थोड़ी सी भी आशा अगर है तो उससे दिया जलाया जा सकता है।
0: आशा की किरण बस ये दिखाई देती है मुझे
1: डॉक्टर ममता सिंह।
0: कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पहली बार कला को एक मुख्य विषय माना गया, उसको ऐच्छिक विषय से हटाकर उन्होंने कहा मैं नहीं, जो कला है किसी भी बच्चे के लिए उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और जब आप कहते हैं कि संस्कृति का संरक्षण करना है, लोक संगीत का संरक्षण करना है, तो जब हमारे जो बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, वो कला विषय के महत्व को ही नहीं समझेंगे, तो संरक्षण और संवर्धन की बातें आप छोड़ दीजिए। तो अभी फिलहाल जो एक स्थिति है वो एक अच्छी सी स्थिति दिखाई देती है कि जहाँ प्राथमिक स्तर से ही संगीत है, पेंटिंग है, डांस है, ड्रामा है, उसको एक ऐसा विषय बनाया गया कि बच्चा जिस विषय में उसे रुचि है वो उसको पढ़े। और इसके साथ साथ मैं यहाँ इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने जोड़ा है कि इस संगीत में या कला में जो स्थानीय आपकी कला है, यानी जो आपकी लोक कला है, लोक संगीत है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक उसका ही होना आवश्यक है। आप अपने स्थानीय कलाकारों के बारे में जानेंगे, ये उनको बताना है, चाहे आप एक्ट करके बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री के जरिए बता रहे हैं, यानी छोटे बच्चों को भी अपने लोक संसार से अवगत कराना है। तो ये मुझे एक महत्वपूर्ण तथ्य लगता है कि शायद जो हम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मशकबीन बजाने वाले हमें मिले ना, और वो जो सुरीली धुन हम पहाड़ी वादियों में सुनते आ रहे हैं और जिसके हम शायद आदी हो गए हैं अपने मांगलिक अवसरों पर, कि उसके बिना शायद शादियां ही संभव ना हो, ऐसा गाँव में माना जाता रहा है कि ये बजाने वाले नहीं है तो शादी का कुछ कमी रह गई, कुछ आनंद कम रह गया। तो इसके लिए ज़रूरी रहेगा कि हम सरकार भी इसके लिए जागरूक करें और इसके संरक्षण के लिए हमारे युवा तत्पर हों और इसके संवर्धन के लिए हमारे जितने सांस्कृतिक विभाग हैं या संस्कृति से जुड़े भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के जितने भी आयाम हैं, प्रकल्प हैं, वो सभी मिलकर जब एकजुट होकर काम करेंगे तो शायद जिसे हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का, लोक संगीत का कि महत्वपूर्ण वाद्य मशकबीन, बैकपाइप, उसे हम जिंदा रख पाएंगे।
1: पुजार गांव टिहरी के सोहन लाल ने मशकबीन कलाकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने और इसे लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सफल प्रयोग किया है। उन्होंने कई साजिंदों का समूह गठित किया और बाजार की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें कार्यशालाओं के माध्यम से गहन प्रशिक्षण दिया। इस समूह से जुड़े लोगों की आय आज अच्छी खासी है।
3: मैं पहले भुवनेश्वरी महिला आश्रम में कार्य करता था, वहाँ पे एक वर्कशॉप हुआ, ढोली रहेगा, ढोल बजेगा, बहुत बड़ा। तो मैं वहाँ पे संचार ग्रुप में काम करता था, तो वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जो जैसे नैन सिंह नेगी और बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने कहा यार ढोल को कैसा जीवित किया जाए, तो अकेला ढोल ढमाओं से कुछ नहीं होता है। फिर एक महीना का वर्कशॉप यहाँ हुआ, रीच वालों ने किया, वहाँ पे हम थे। तब तक दिमाग में नहीं था कि ग्रुप क्या है। मैंने सोचा यार हम खुद इनको जानते, ढोल बजा के जानते हैं, मशक वाले हैं हमारे साथ। मैंने जो है उसी समय एक ग्रुप बनाया 6 लोगों का, ढोल, दमाओं, मशकबीन, रणसिंगा। अब ये ग्रुप हमारा करीबन 40-45 लोगों का है।
1: सोहनलाल का मानना है कि यदि कलाकार बाजार की मांग को समझते हुए ठेठ पारंपरिक कला का प्रशिक्षण लें और संगठित होकर स्वयं अपनी मार्केटिंग करें तो इसके बहुत सुखद परिणाम मिल सकते हैं।
3: बिल्कुल, फायदा यह है कि अगर ग्रुप बजेगा पूरा तो लोग समझते हैं। जैसा किसने शादी में बुला दिया, 8 लोग चाहिए, 10 लोग, हमने उनको उनकी ड्रेस बनवाई और अपना ढंग थोड़ा एक बदला। पहले क्या होता था कि मशक कहीं और बज रहा है, ढोल वाला कहीं और जा रहा है, तो लोग केवल मशक सुनते थे, ढोल तो सुन ही रहे। हमने उस पर ध्यान दिया, या हमने एक वर्कशॉप किया भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने, हमने फिर अपने गाँव में, मैंने कहा यार इनको अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो कम से कम 10-12 लोग बैठे और थोड़ा प्रैक्टिस किया कि अरे मंगल धुन बजाओ ढोल में बजाओ, और अब ढोल में बड़ाई बजती थी तो मंगल, तो अब हम मंगल धुन रिदम में बजाते हैं, तो लोग समझते हैं यार आए हाँ पैसा है, पर वो अगर दिमाग से काम करेगा और वो धुन पकड़ेगा, आपके सामने एक धुन बज गई पूरे रिदम के साथ, तो सुनने वाले तो हजार आ जाते हैं, पर सुनाने वाला चाहिए, उसकी प्रस्तुतिकरण ढंग, चाहे वो शादी में चाहे चोराकर्म में, उसको सही हिसाब से कि मैं क्या, मेरे पास कौन सा वाद्य अंतर है और मैंने किस ढंग से लोगों को बीच में रखना है, तब तो ये आगे जाएगा। ऐसा नहीं है हम नहीं करेंगे दूसरा करेगा, आने वाली पीढ़ी तो इसको जरूर करेगी, क्योंकि इसमें अब पैसा भी हो गया।

लोक संस्कृति के संरक्षण को लेकर कुछ लोग नई पीढ़ी को अक्सर कोसते हुए मिल जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिनके आधार पर ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के प्रति बहुत गंभीर है। न जाने कब कौन युवा किसी स्टार्टअप या सृजनात्मक पहल के माध्यम से इन कलाकारों की दशा बदल डाले। उम्मीद है कि जब तक पर्वतों पर वृक्ष खड़े हैं, जब तक नदियों में कल कल करता जल बह रहा है, जब तक जीवन शेष है, तब तक मशकबीन की सुरीली धुनें इन वादियों में गूंजती रहेंगी।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। मीडिया से बातचीत में श्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया। प्रदेश में रविवार सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून, टिहरी, गढ़वाल व हरिद्वार जिले में रेड अलर्ट, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी व उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में बारिश का येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, भूस्खलन, जलभराव, अचानक बाढ़ जैसी परिस्थितियां और नदी नालों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि की संभावना जताई गई है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज राज्य के 11 जिलों में आज कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और राज्य में आने वाले यात्रियों से अपील की है कि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों व उपनते नदी नालों के आसपास जाने से परहेज करें। किसी भी असुविधा या आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। देहरादून संतला देवी मंदिर के पास कल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से 7 लोग उफनती धारा के बीच बने टापू पर फंस गए थे। एसडीआरएफ टीम ने सिविल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया। तेज बहाव, फिसलन युक्त तट व प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ के प्रशिक्षित जवानों ने सूझबूझ व साहस का परिचय देते हुए विशेष रेस्क्यू उपकरणों की सहायता से सभी व्यक्तियों तक सुरक्षित पहुंच बनाई। सुनियोजित व जोखिमपूर्ण अभियान के दौरान सभी व्यक्तियों को एक एक कर सुरक्षित नदी से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एसडीआरएफ पोस्ट सहस्धारा के उप निरीक्षक राजभर राणा ने बताया कि नदी का वेग अचानक बढ़ा और समय पर रेस्क्यू न होता तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। प्रदेश के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में विशेष डिजास्टर रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के समय घायलों को तुरंत और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। हेमवंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय में गठित ने हर मेडिकल कॉलेज में डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम गठित करने की सिफारिश की। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही टीमें गठित कर दी जाएंगी। कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना प्रसिद्ध रामझूला पुल 25 जुलाई को आम जनता और पैदल यात्रियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान पुल के रखरखाव और मरम्मत कार्य किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने पुल के दोनों छोर पर सूचना पट लगा दिए हैं। लोगों से नदी पार करने के लिए जानकी सेतु या बजरंग सेतु के उपयोग की अपील की है। कांवड़ मेले में देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। सभी बसें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से संचालित की जाएंगी। अभी तक एक्सप्रेसवे से वॉल्वो और एसी बसों का संचालन किया जा रहा है, जबकि साधारण बसें सामान्य रूटों से संचालित की जा रही थीं। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आपदा प्रबंधन व पुनर्वास प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने बताया कि मौसम विभाग की जारी प्रत्येक चेतावनी पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 10:35 होने को हैं और अब आप सुनेंगे लोक संगीत, जहां रुहेलखंडी गीत प्रस्तुत कर रहे हैं निर्देश त्यागी।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से UK.GOV.IN पर प्राप्त कर सकते हैं।

FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। अभी आप सुन रहे हैं निर्देश त्यागी से रुहेलखंडी लोकगीत कार्यक्रम लोक संगीत में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत में निर्देश त्यागी से रुहेलखंडी लोकगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं 11 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही वर्षा हो रही है। आइए वर्षा के इस जल को हम संचय करें और अपने कल को सुरक्षित बनाएं। और अब आपकी पसंद का लेते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत, जिसके लिए हमारे श्रोताओं ने हमें फरमाइश लिख भेजी है। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की फिल्म का नाम अनजाना।

अनजाना फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा था कस्बा गुन्नूर यूपी से फारूक अली खान फेसी फरखास फरहीन फारिया और ताहिरा ने। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा था गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाना अक्सर आबिया और साथ में इनके परिवारजन ने। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं नवीन मंडी हल्द्वानी से सोनू सिंह विवेक पौरवाल कमला और इनके परिवारजन। आइए श्रोतम बढ़ती हैं आप सभी की फरमाइश के इस अगले गीत की ओर। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप हैं शिवानी अंशुका और दिव्या और इनके परिवारजन हमें फरमाइश लिखते हैं गांव रायसाय वाला जिला सहारनपुर से। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है ऊपरकोट मोहला चौकोटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाइना अक्सा और साथ में इनके परिवारजन। आइए श्रोताओं सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें। फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, बरसात का मौसम, जी हाँ, सभी को सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, मन को भाता है। और लेकिन इतनी ही हमें ज़रूरत होती है इस मौसम में सावधानी की, क्योंकि बरसात का मौसम जल भराव से बहुत सी बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसलिए इस बरसात के मौसम में अपने आस पास स्वच्छता बनाए रखें और इस मौसम का भरपूर आनंद लें। आइए बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के इस अगले गीत की ओर। मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजे हैं। आप हैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से उमा सिंह, बयश्री देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बानू, आरु, शौर्य और साथ में दिनेश। साथ ही ये फरमाइश हमें लिख भेजी है। सहारनपुर से हैं शाहबाज, मालदेवता देहरादून से अजीत मनवाल, साथ ही थानू से ये फरमाइश हमें लिख भेजी है हिमानी ने। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी हंसमुख और साथ में इनके परिवारजन। आए श्रोता, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णामूर्ति।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम के लिए अगली फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप है चमाइला टेहरी गढ़वाल से नीलम कृष्णा और साथ में इनके परिवारजन, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक कमल दिव्या और साथ में इनके परिवारजन, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड और चंद्रकला रेवाड, साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज जो श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं द्वारा से रोहित रमोला और इनके परिवारजन। आए श्रोता सुनते आप सभी की फरमाइश पर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है गोपी किशन।

समय 11:32 और 10 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, मानसून की आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों ओर फूल पत्ते रंग बिरंगे फूल और बड़े ही मनमोहक लगते हैं। और ऐसे में बरसात के इस मौसम में बरसात के गीत, जी हाँ, बड़े ही सुहावने लगते हैं। कार्यक्रम का ऐसा ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज़ पर, उनका नाम है मंजिल। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है, आप हैं धूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी और साथ में इनकी परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं कस्बा चिलकाना सहारनपुर से जरीफ अंसारी, नई मंसारी, डॉक्टर आमिर, राजा मुन्ना नजीम। साथ ये फरमाइश लिखते हैं रटलाई बागरी बोहला झालावाड़ राजस्थान से सत्यनारायण, शोभा नैना, प्रभुलाल बागरी और इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है मंजिल।

कार्यक्रम के लिए अगली फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार अजीत आयुष और साथ में है नंदिनी जगेल, दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुना ऋषि ओशिका आदित्य जंगेल और साथ में अंजलि। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता लिखते हैं। आप हैं चोखड़ा धाम कॉलोनी सनावद खरगोन से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित वैभव पाल सिंह चौहान, बेबी ध्रुवी और साथ में प्रद्युम्न चौहान। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं पद्मा टाकी से नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्वी प्रखर, कुशल नीति सुरभि अश्विन, मंगलाबेन शाह और साथ में राजेंद्र जी शाह। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव।

कार्यक्रम वर्षा फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, बरसात के इस मौसम का भरपूर आनंद लें, साथ ये भी ध्यान रखें कि पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करें। आइए श्रोताओं, पढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के इस अगले गीत की ओर मैसेज जो श्रोता हमें लिखते हैं। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, परवीन शर्मा, मुनीश और राहुल शर्मा, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। ये मैसेज ये लिखते हैं राजकोट जंक्शन से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा और साथ में राकेश जैन, गांव लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ से आप हैं श्रोता जिन्होंने मैसेज लिखा है लेकिन अधूरा मैसेज इनका प्राप्त हुआ है। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं आप हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाव खड़सी, ललिता, शरानी, संचिना परी और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है। हमें मैसेज फिर से प्राप्त हुआ है, आप हैं गांव लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका और साथ में रमेश चंद्र डांगी। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं जिला बेगूसराय बिहार से नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, करूला मुरादाबाद से अयुब खान, नीरम गुड़िया और साथ में शोएब खान, मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, और साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर से नासिर शेख, नाजिया और इनके परिवारजन। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म का नाम है बरसात।

कार्यक्रम के लिए अगली फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर, पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रेम थांडी, बेबी मामी का साथ में वानी थांडी ने साथ इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है। आप हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है। नाभा जिला पटियाला, पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमीत कौर मनु और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही ये मैसेज है, श्रोता लिखते हैं, ऋषिकेश से हैं संजीव बेलवाल और इनके परिवारजन, द्वाकरा से हैं आप मोहित रमोला और इनके परिवार वाले। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आपने फरमाइश लिख भेजी है, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर उदित नारायण और

आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजे हैं। नाज रेडियो क्लब करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमे और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं बालावाला देहरादून से मनीष टिंडी, वंदना तेजपाल, शकुंतला ब्रजेंद्र, संगीता प्रमोद, वीरेंद्र राहुल और साथ में यहीं से मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, दीपाली सुल्तान, नीलम, सविता, नीलू, नीतू, बिजला, आशीष, वीरू, सुमन, पवन और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से हैं सुनील चावला, मीना साक्षी, दिनेश चोपड़ा, राधिका, नानू और साथ में इनके परिवारजन। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, प्रेमनगर देहरादून से ही नर्मदा सुरेंद्र, निशा, पूनम, अरुण, रजनी और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, गांव खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से ही अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, शिपाल, सिद्धार्थ और यश। और साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। मैसेज लिखते हैं, आप है देहरादून से ही शिवम, शुभम, बबलू, वीरू, विक्रम, सुषमा और साथ भी इनके परिवारजन। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम चश्मे बद्दूर।

0: फिल्म चश्मे बद्दर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. During the proceedings, Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the House till 12 noon. When the House met after the first adjournment at the noon, the opposition members continued their protests against NEET paper leak. The Rajya Sabha adjourned till 12:30 p.m. Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are boundless as space itself.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोडक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे।
3: President Draupadi Murmu will hold delegation level talks with the Maldivian counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that the interchange facilities and gates are now open at Rajiv Chowk and Central Secretariat Metro stations. Earlier, DMRC said that Janpath, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Central Secretariat and Seva Tirth Metro stations have been closed till further instructions due to security reasons. The Special Investigation Team, SIT, constituted by the Uttar Pradesh government, has filed its status report before the Supreme Court

0: in the Ram Mandir donation theft case. The status report was submitted in a sealed cover before a three-judge bench headed by Chief Justice of India, Suryakant. The matter is scheduled to be heard by the Apex Court today. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC will provide equal opportunities and rights to all communities, and this law is a major step in that direction. He said the UCC bill does not violate the fundamental rights of the citizens. The Chief Minister highlighted that before drafting the bill, a committee headed by former Supreme Court Judge Justice Ranjana Prakash Desai was formed, which conducted consultations across all districts and divisions of the state. He said state-level discussions in Bhopal also included political parties and social organizations from diverse faiths. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain's substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. In men's cricket, England beat India by 27 runs in the third ODI and sealed the three-match series 2-1 at Lord's in London last night. Despite Rohit Sharma's magnificent score of 138 runs, Shubman Gill 77 and Virat Kohli 74, India only managed 360-7 in pursuit of a mammoth target of 388, built on the back of a career-best 142 from Ben Duckett. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% lower in the forenoon session today. The Sensex shed 592 points to 77,559, while the Nifty dropped 147 points. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM News headlines।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 23 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और यात्रियों से मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल व हरिद्वार जिले में बारिश का रेड और उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी व ऊधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और चारधाम यात्रा के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए आज एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा का संचालन अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोकने का निर्णय लिया गया है। चमोली जिले के तपोवन में जियोथर्मल परियोजना का वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य शुरू कर दिया गया है। देहरादून संतला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने टापू पर फंसे 7 लोगों को सफल रेस्क्यू किया गया। मॉनसून के दौरान आमजन की आपदा संबंधी शिकायतों के निस्तारण के उद्देश्य से नगर निगम देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम परिसर में संचालित आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी जिले में स्थित बोख टिब्बा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत केंद्रीय पुल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का अधिकांश कार्य अंतिम चरणों तक पहुंच चुका है और अब निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से लगाए प्रतिबंधों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कांवड़ मेले के दौरान परिवहन विभाग देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे से बसों का संचालन करेगा। देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण ने नई कॉलोनियों के विकास में नियम बदले जाने का निर्णय लिया है। सरकार प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में डिजास्टर रिस्पांस टीम का गठन करेगी। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और श्रावण मास के सोमवार पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:12 हुए हैं, लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए पवी गौर से भजन। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर उद्दालक सामंत और हारमोनियम पर सुनील मुखर्जी। तो आइए सुनते हैं पवी गौर के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पवि गौर के गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर दालक सामंत और हारमोनियम पर सुनील मुखर्जी। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब आने सुनेंगे कार्यक्रम घर गृहस्थी।

घर गृहस्थी सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है और आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी बहन मीरा नेगी। बहनों, सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना भी। सावन सोमवार में हमारे सभी श्रद्धालु व्रत रखते हैं और भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना भी, ताकि उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। बहनों, मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिव भक्ति जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करती है और मन चाहे फल भी देती है। आप सभी को पवित्र सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ बहनों सुनाते हैं आपको शिव भजन।

0: लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो यही कचरा हमारे घर, बगीचे और पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी बन सकता है। बहनों, रसोई से निकलने वाला गीला कचरा, इससे आप बहुत अच्छी जैविक खाद बना सकते हैं। खाद बनाने के कई तरीके हैं। खाद बनाने का पहला तरीका, आप किसी बाल्टी, ड्रम या मिट्टी के बर्तन में सबसे पहले सूखी पत्तियां डालें और उसके ऊपर मिट्टी डालें। मिट्टी डालने के बाद आप उसके ऊपर रसोई का गीला कचरा डालें। बाद में फिर से दोबारा मिट्टी की एक पतली परत बिछा दें। इसी प्रकार आप रोज परतें बनाते रहें। कुछ हफ्ते बाद यही कचरा सड़कर पौधों के लिए पौष्टिक जैविक खाद बन जाता है। आप इस खाद का उपयोग घर के गमलों, बगीचों और खेतों में कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप घर के किसी कोने में 2x2 फुट का गड्ढा करें और उसमें रोज कचरा डालें और मिट्टी से ढक दें। आप देखेंगे 2 महीने में ही घर पर जैविक खाद तैयार हो गई है। बहनों, तरीका कोई भी हो, लेकिन इसके लाभ बहुत सारे हैं। कार्यक्रम में आगे जानेंगे इसके लाभ के बारे में, लेकिन अभी समय है वार्ता का, जिसमें आज का विषय है डिजिटल युग और महिलाएं। वार्ताकार हैं डॉक्टर राखी पंचोला।
1: भारत ने एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। दूर दराज के गांव तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने तक देश ने शहरी ग्रामीण अंतर को पहले से कहीं अधिक कम किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसने 2022-23 में राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया, 2024-25 तक 13.42% तक पहुंचाने का अनुमान है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति से प्रेरित है। वर्ष 1990 में वैश्वीकरण के दौर में प्रौद्योगिकी एक पुरुष प्रभुत्व वाला व्यवसाय था, लेकिन जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होती गईं, वैसे वैसे वे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आगे आने लगी। तकनीकी प्रगति के इस युग में डिजिटल साधन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत माध्यम बनकर उभरे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां लैंगिक असमानता एक बड़ी समस्या है, डिजिटल उपकरण महिलाओं को उनकी क्षमता का एहसास कराने में उनकी मदद कर रहा है। महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु डिजिटलीकरण उन्हें मजबूत व बेहतर तरीके से निर्णय लेने में शामिल होने की उनकी क्षमता का निर्माण करने में मदद कर रहा है। डिजिटलीकरण ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन लाए हैं। कुछ दशक पहले तकनीकी शब्द केवल पेशेवर महिलाओं के संदर्भ में ही देखा जाता था, किंतु आज गृहिणी से लेकर कामकाजी महिलाओं तक इसकी पहुंच है। मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के प्रयोग से ग्रामीण और शहरी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिजिटल परिवर्तन महिलाओं के लिए एक छलांग लगाने का अवसर और अधिक समावेशी डिजिटल वातावरण बनाने का अवसर प्रस्तुत करता है। आवश्यक ये है कि प्रयासों को बढ़ाया जाए और इसका लाभ उठाया जाए। डिजिटल क्षेत्र में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए बेहतर कानूनों की दिशा में G20 की पहल एक महत्वपूर्ण और समयबद्ध कदम का प्रतिनिधित्व करती है। उपयोग के इंटरनेट आंकड़ों के अनुसार केवल 29% महिलाएं इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास ने आईटी क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए अवसर पैदा किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी में काफी विस्तार हुआ है और कंपनी के संचालन की आउटसोर्सिंग के परिणाम स्वरूप आईटी क्षेत्र में नए रोजगार का सृजन हुआ है, जिनमें से कई महिलाओं द्वारा लिए गए हैं। डिजिटलीकरण महिलाओं के लिए अनेक रूपों से प्रभावकारी है, जैसे आर्थिक, शिक्षा एवं कौशल विकास, सामाजिक जागरूकता व नेटवर्किंग, स्वास्थ्य एवं कल्याण की दृष्टि से, सुरक्षा और साइबर जागरूकता के क्षेत्र में। दुनिया की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब आधी है। गृह कार्यों से लेकर समाज के दूसरे अहम मामलों को संभालने तक महिलाएं किसी में भी पीछे नहीं हैं। किंतु द्वितीयक दर्जा होने के कारण कम आर्थिक भागीदारी के अवसर, संसाधनों तक सीमित पहुंच और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कम है। इस

असमानता या भेदभाव को कम करने हेतु डिजिटली शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज शहरी महिलाएं इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करने लगी हैं, किंतु ग्रामीण महिलाएं आज भी डिजिटल शिक्षा में कमजोर हैं। आज सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया, इंटरनेट साथी जैसे कार्यक्रम चलाकर वहां की महिलाओं को जागरूक कर रही है, ताकि ग्रामीण महिलाएं भी इस डिजिटल युग का हिस्सा बन सके। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में भी महिलाओं में डिजिटलीकरण तीव्रता से बढ़ रहा है। राज्य में मोबाइल व इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है। लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल दीदी अभियान और ऑनलाइन बैंकिंग से जोड़ा जा रहा है। राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल फोन की उपलब्धता के कारण महिलाओं की डिजिटल दुनिया तक पहुंच आसान हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 6 के अनुसार उत्तराखंड में 72% महिलाएं मोबाइल फोन का प्रयोग कर रही हैं। बीते 3 सालों में ये आंकड़ा 12% बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों में 77.3% और ग्रामीण क्षेत्रों में 70.4% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। महिलाओं का रुझान डिजिटलीकरण की ओर बढ़ा है। मोबाइल फोन का बढ़ता उपयोग महिलाओं को सूचना और सेवाओं से जोड़ रहा है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। आज महिलाएं डिजिटल लेन देन को सुगमता से अपना रही हैं। फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग उनकी प्रिय सेवाएं हैं। इस प्रकार वित्तीय समावेशन में उत्तराखंड ने प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की 91% महिलाओं के बैंकों में बचत खाते हैं, जबकि 3 साल पहले ये आंकड़ा 80.2% था। पर्वतीय क्षेत्रों में संचार कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। आज दूरस्थ क्षेत्रों तक 5G की सुविधा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक और महिलाओं की आजीविका में सुधार हुआ है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं स्थानीय उत्पादों का कारोबार कर ऑनलाइन माध्यम से संपूर्ण देश में इनको भेज पा रही हैं। हल्द्वानी से आरंभ हुए अभियानों की श्रृंखला में महिलाओं को इंटरनेट ब्राउजिंग, सरकारी सेवाओं के डिजिटल उपयोग, ऑनलाइन भुगतान की ट्रेनिंग दी जा रही है। देवभूमि परिवार आईडी जैसी पूरी तरह पारदर्शी व डिजिटल व्यवस्थाओं से महिलाओं को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके महिलाएं घर से ही छोटे व्यवसाय, क्लाउड किचन, बुटीक, हस्तशिल्प सफलतापूर्वक चला रही हैं। डिजिटलीकरण ने महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग विकल्प दिए हैं, जिससे वे घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी आजीविका का अर्जन भी कर सकती हैं। वर्तमान समय तकनीकी के सफल प्रयोग का है। महिलाएं नए कौशलों का अर्जन कर पा रही हैं। महिलाओं के लिए डिजिटलीकरण आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता और नेटवर्किंग में अति लाभदायक है। महिलाओं के डिजिटल ज्ञान के समक्ष कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं व कम आय वाले परिवार की महिलाएं डिजिटली रूप से कमजोर हैं। शहरी व ग्रामीण महिलाओं के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसे डिजिटल डिवाइड के नाम से जाना जाता है। शहरी महिलाएं जहां आज के डिजिटल युग से जुड़ रही हैं, वहीं ग्रामीण महिलाएं आज भी डिजिटल शिक्षा में कमजोर हैं। सोशल मीडिया या अन्य डिजिटली मंचों से महिलाओं के साथ साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग और धोखाधड़ी की जा रही है। उनका ऑनलाइन शोषण भी किया जा रहा है। समाज की पितृसत्तात्मक सोच इस संदर्भ में महिलाओं के लिए स्वतंत्र नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिकांश जानकारियां अंग्रेजी भाषा में होने के कारण महिलाएं हिंदी भाषा क्षेत्रों में डिजिटली उपकरणों का प्रयोग पर्याप्त रूप से नहीं कर पा रही है, तो ये कुछ समस्याएं हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत उन देशों में से है जिसने डिजिटलीकरण को खुले दिल से अपनाया है। 2015 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया नामक एक प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किया, जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। महिलाओं के संदर्भ में ये अति महत्वपूर्ण है। एक कथन है कि एक पुरुष को शिक्षित करना एक व्यक्ति को शिक्षित करना है, एक महिला को शिक्षित करना पूरे राष्ट्र को शिक्षित करना है। और आज तकनीकी का जमाना है। हमारी संतानें बचपन से ही मोबाइल

0: फोन को हाथों में पकड़ रही हैं। यदि महिलाएं डिजिटल साक्षर होंगी, डिजिटल सशक्त होंगी, तो भविष्य की संतानें भी डिजिटल सक्षम होंगी। सवाल यह है कि सही क्या है, गलत क्या है, तकनीकी में ये छांटना भी महत्वपूर्ण होगा। तकनीकी के इस प्रवाह में जहां चैट जीपीटी आपके विचारों को शब्द प्रदान कर रहा है, यदि मानव मेधा या महिलाएं डिजिटल जागरूक नहीं हुई तो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस क्षेत्र में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हर महिला डिजिटल साधनों का लाभ उठा सके। इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों का प्रचार अधिक हो और सरकार द्वारा नई नई योजनाएं बनाकर महिलाओं को उनके प्रति जागरूक करना होगा।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता जिसका विषय था डिजिटल युग और महिलाएं, और वार्ताकार थी डॉक्टर राखी पंचोला। बहनों, इस वार्ता के बाद समय हो गया है कार्यक्रम में एक और गीत का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, हम बात कर रहे थे किचन वेस्ट मैनेजमेंट की। कचरा प्रबंधन करने से घर का वातावरण साफ रहता है बहनों। जब आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं तो रसोई में बदबू नहीं फैलती और मक्खी मच्छर भी कम आते हैं। इससे भोजन की बर्बादी भी कम होती है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार ही भोजन बनाया जाता है, और अगर भोजन बच भी जाए तो उसका सदुपयोग किया जाता है। बहनों, आजकल बरसात के दिनों में खुले में पड़ा हुआ कचरा नालियों में बहता है, जिससे नालियां जाम हो जाती हैं और पानी भरने की भी समस्या पैदा होती है। मलेरिया, डेंगू या और भी कोई संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बहनों, रसोई के कचरे का सही प्रबंधन निपटान केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। बहनों, किचन वेस्ट मैनेजमेंट का आधार ही कम कचरा अधिक उपयोग है। तो जितना संभव हो आप वस्तुओं का दोबारा उपयोग करें, भोजन की बर्बादी को रोकें, गीला और सूखा कचरा अलग रखें। आप अपने बच्चों और घर के बाकी सदस्यों को भी जागरूक करें, ताकि वो भी इसे अपनी आदत बनाएं और जिम्मेदार बने। बहनों, इसी के साथ समय हो

आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम घर गृहस्थी अनुभाग कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। अब अपनी साथी मीरा नेगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी पहने सुन रहे थे कार्यक्रम घर गृहस्थी। हम आपको याद दिला दें, दोपहर 1:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत सैनिकों के लिए। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु

0: वर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। सुरक्षा की दृष्टि से चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोका गया। देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने लोगों की आपदा से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत माल्टा के छिलके बन रहे महिलाओं की आय का नया साधन। प्रसंस्करण इकाई में तैयार किए जा रहे हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद। और सावन मास के पहले सोमवार पर प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव को पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों में भूस्खलन को देखते हुए आज एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा का संचालन अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोकने का निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए तथा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही आगे की यात्रा कराई जाए। साथ ही मीडिया और अन्य माध्यमों से जनसामान्य और तीर्थयात्रियों तक समय पर सही जानकारी पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्तमान मौसम और मार्ग की स्थिति के मद्देनजर एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया है। मार्ग सुरक्षित होने और परिस्थितियां सामान्य होने पर यात्रा का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा। तीर्थयात्रियों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें तथा मौसम और मार्ग की स्थिति सामान्य होने तक संबंधित जनपद प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह।
0: मॉनसून के दौरान आमजन की आपदा संबंधी शिकायतों के निस्तारण के उद्देश्य से नगर निगम देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने निगम परिसर में संचालित आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि नियंत्रण कक्ष में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। महापौर ने नियंत्रण

0: कक्ष में तैनात कर्मचारियों से संवाद करते हुए कहा कि मॉनसून के दौरान जल भराव, नालों के अवरुद्ध होने, अन्य आपात परिस्थितियों से संबंधित शिकायतों पर विशेष सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायत प्राप्त होने से लेकर उसके निस्तारण तक की जानकारी अभिलेखों में दर्ज की जाए और आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य मॉनसून के दौरान नागरिकों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना है। मॉनसून सीजन में बारिश के चलते हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले से जुड़े निर्माण कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। बारिश की वजह से सड़कों के नवीनीकरण और डामरीकरण को मॉनसून सीजन के बाद कराए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मेला प्रशासन भवन निर्माण, ओवरहेड टैंक और सड़कों के चौड़ीकरण जैसे काम को जारी रखे हुए है। कुंभ मेले के सभी निर्माण कार्यों को आगामी 31 अक्टूबर तक पूरा करने की समय सीमा रखी गई है। मेलाधिकारी सोनिका का कहना है कि सड़कों के नवीनीकरण और डामरीकरण के कार्यों को मॉनसून सीजन की वजह से अक्टूबर महीने में कराया जाएगा। हालांकि अन्य सभी निर्माण कार्य समान गति से सुचारू रखने का प्रयास किया जा रहा है।
1: हमारी प्लानिंग इसी तरह थी कि बरसात के टाइम पे हम किस तरह के काम कर सकते हैं। हमने जैसे रिन्यूअल के और जो डामरीकरण के काम है वो हमने अक्टूबर के बाद वाले टाइम पे ही रखे थे, लेटर हाफ में रखे थे जब बरसात खत्म हो जाए। और जो मेन हमारी बिल्डिंग्स के काम है या ओवरहेड टैंक बन रहा है, आई वेल्स बन रहे हैं और घाट बन रहे हैं, उन सब में हमारे काम मोर और लेस चल रहे हैं और सही गति से चल रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पौड़ी जिले में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत शुरू की गई एक अनूठी पहल ने माल्टा के छिलकों को महिलाओं की आय का नया साधन बना दिया है। उमंग स्वायत्त सहकारिता द्वारा संचालित प्रसंस्करण इकाई में महिलाएं माल्टा के छिलके से फेस पैक, स्क्रब और हर्बल उपटन तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों में छिलकों के साथ मुल्तानी मिट्टी, चंदन, गुलाब पाउडर, हल्दी, बेसन और नीम जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जा रहा है। पूरी तरह हर्बल और केमिकल फ्री ये उत्पाद बाजार में लोकप्रिय हो रहे हैं। ग्रामोत्थान परियोजना के प्रबंधक कुलदीप बिष्ट ने बताया कि पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में होने वाले माल्टा का उपयोग पहले केवल फल और जूस तक सीमित था, जबकि प्रसंस्करण के बाद इनके छिलकों को फेंक दिया जाता था। लेकिन अब इन्हीं छिलकों को वेस्ट टू वेल्थ मॉडल के तहत हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों में बदला जा रहा है।
2: पौड़ी में उमंग स्वायत्त सहकारिता द्वारा एक बेड़ू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है, जिसमें बेड़ू के साथ साथ अन्य फल और सब्जियों का भी प्रसंस्करण किया जाता है। तो जब हम इसमें माल्टे का प्रसंस्करण करते हैं तो माल्टे के जो छिलके हैं वो वेस्ट चले जाते थे, तो इन वेस्ट से कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए, इसी के तहत हमने इसकी रिसर्च और थोड़ा एनालिसिस करके हमने माल्टे के छिलकों से विभिन्न प्रकार के जो कॉस्मेटिक्स हैं वो तैयार किए हैं, जिसमें अभी इनिशियल स्टेज में हमने तीन प्रकार के कॉस्मेटिक जो माल्टा फेस पैक है, माल्टा स्क्रब है और माल्टा का हर्बल उपटन है, ये पूरी तरीके से जो है जैविक उत्पाद जो है तैयार किए गए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जो माल्टे के छिलके वेस्ट होकर फेंक दिए जाते थे उनसे ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का एक नया स्रोत इससे तैयार होगा।
0: वहीं ग्रामोत्थान परियोजना से जुड़ी महिला रवीना रावत ने बताया कि उत्पाद निर्माण, पैकेजिंग और विपणन से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
3: माल्टे के छिलका हम गाँव से मंगाते हैं, लेडीजों से वहाँ से सौ डेढ़ सौ लेडीजें माल्टे के छिलके हमें देती हैं। माल्टे को धो के सुखा के काट के उनको अच्छे से साफ करके फिर हमने उसके बाद फेस पैक उपटन बनाते हैं। और महिलाओं के रोजगार का साधन है, हमारे अपना थोड़ा बहुत खर्चा इससे निकल जाता है हमारे पति के।
0: सावन मास के पहले सोमवार पर आज राजधानी देहरादून सहित राज्य के विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। टिहरी जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में बारिश के बावजूद सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं चमोली जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बागेश्वर जिले के बागनाथ मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। सुरक्षा की दृष्टि से चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोका गया। देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने लोगों की आपदा से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत माल्टा के छिलके बन रहे महिलाओं की आय का नया साधन। प्रसंस्करण इकाई में तैयार किए जा रहे हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद। और सावन मास के पहले सोमवार पर प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एफ एम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थी किशोर कुमार, फिल्म का नाम था याराना। बोल थे अनजान की ओर संगीत राजेश रोशन का था। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म का नाम है वक्त, आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

ये युगल स्वर थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था जीवन मृत्यु। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोतम, इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:30 हो रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कालिया जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश कालिया इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है, लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पटियाओं पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से

0: आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं।
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया।
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है। प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ।

0: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
0: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
0: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? गद्दी पे बैठ कर
9: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: इसके पास बेचारा
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बा

0: अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
2: महाराज की जय हो।
3: महाराज की जय हो।
4: महाराज की जय हो।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

0: देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: आज्ञा दत्त,
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।

0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जी तात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह फलता।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
5: मालदवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मालदवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
6: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाए। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, किसी देशभक्त ने क्या खूब लिखा है, मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। सैनिक साथियों, अपने देश की खातिर सैनिक अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। उनका बस एक ही सपना होता है, देश सेवा का। और देश सेवा का जो सपना देखा था वो थी मेजर भानु प्रताप सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उनके बारे में, लेकिन कार्यक्रम में पहले सुन लेते हैं ये देशभक्ति गीत।

जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है।

सैनिक साथियों, मेजर भानु प्रताप सिंह का जन्म राजस्थान के चुरू जिले के लोहसाना बड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता राजस्थान कैडर के पुलिस अधिकारी आरएस राठौर और माता का नाम श्रीमती पद्मा कंवर है। बचपन से ही भानु प्रताप को सेना में शामिल होने का सपना देखा करती थी और इसी सपने को साकार करने

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, जिस रेजिमेंट में ये भर्ती हुए उसका आदर्श वाक्य है, वीर भोग्य वसुंधरा, यानी वीर ही पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। और यही कारण है कि हर अभियान में मेजर भानु प्रताप सिंह बढ़ चढ़ कर कुशलता से हिस्सा लिया करते थे और एक लंबे अनुभव के बाद इन्हें मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियान में सेवा देने के लिए इन्हें प्रतिनियुक्त किया गया। वर्ष 2008 में मेजर भानु प्रताप सिंह की यूनिट राजौरी जिले में तैनात थी। इनकी यूनिट ने सक्रिय क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयास को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया, पर 19 जुलाई 2008 को सुरक्षा बलों को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि थाना मंडी तहसील कुंडा क्षेत्र में आतंकवादी घुसे हैं और इसकी तलाशी और विनाश अभियान के लिए इन्होंने विशेष अभियान चलाया।

सैनिक साथी। इस प्रकार से मेजर भानु प्रताप सिंह अपने दल का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते रहे और 20 जुलाई 2008 को संदिग्ध क्षेत्र में पहुंच गए और वहां पर चलकर इन्होंने अभियान शुरू किया और जल्द ही आतंकवादियों को इन्होंने घेर लिया और वे सब एक मिट्टी के मकान में छिपे थे। मेजर भानु प्रताप और इनके साथी मकान में घुस गए और भीषण गोलीबारी आरंभ हो गई। ऐसे में अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी और भानु प्रताप आतंकवादी की गोली से एकदम से घायल हो गए, लेकिन फिर भी ये रेंगते हुए आगे बढ़े और सटीक फायरिंग कर अपने दल को एक बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला। पर मेजर बहुत अधिक चोट के कारण देश के लिए शहीद हो गए। मेजर भानु प्रताप ने सेना की सर्वोच्च परंपराओं का पालन करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर भानु प्रताप सिंह के उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के लिए सरकार द्वारा इन्हें वीरता पुरस्कार सेना पदक से सम्मानित किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सलाम करते हैं मेजर भानु प्रताप सिंह को।

0: ये था फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मुद्रता से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू, लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन को देखते हुए एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोक लगाई गई। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही आगे की यात्रा कराए जाने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री खजान दास ने काठगोदाम के गोलपार क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और बरसात के दौरान प्रभावित हुए भवनों का जायजा भी लिया। पौड़ी जिले में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत शुरू की गई एक अनूठी पहल ने माल्टा के छिलकों को महिलाओं की आय का नया साधन बना दिया है। उमंग स्वायत्त सहकारिता द्वारा संचालित प्रसंस्करण इकाई में महिलाएं माल्टा के छिलके से फेस पैक, स्क्रब और हर्बल उपटन तैयार कर रही हैं। सावन मास के पहले सोमवार पर राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से भक्तिमय वातावरण बना रहा और आगामी 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज की। शिव भक्तों की सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आप सुन रहे हैं FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

आप सुन रहे थे मुरली ठाकुर और साथियों की आवाज़ में। गीत फिल्म का नाम था बाकी, शब्द थे कुमार के, संगीत मीत ब्रदर्स का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। शान, सुनीता राव, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम अशोका। गीतकार है गुलजार और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

ये थे हिमेश रेशमिया, फिल्म का नाम था अपनी, गीत था समीर का, संगीत हिमेश रेशमिया का था। श्रोता सुन रहे गाने नई तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं जीत गांगुली के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत। आवाजें हैं पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम आशिकी 2।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

आप मुझे अच्छे लगने लगे। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत, आवाज़ थी उदित नारायण की। श्रोता सुन रहे हैं गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। यह कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का है।

समय 3:37 और 33 सेकेंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं जावेद बशीर को, फिल्म का नाम बाजीराव मस्तानी। गीत को संगीत दिया है संजय लीला बंसाली ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

ये थे श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार। फिल्म का नाम था भूल भुलैया। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पैडमैन।

0: अभी आप सुन रहे थे गाने नहीं तराने। हम आपको याद दिला दें, शाम 4:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक कलाकार। आज के कलाकार होंगे अभिनेता राजेंद्र कुमार। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुद्दता से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में प्रदेश के ग्रोथ सेंटर्स की प्रगति की समीक्षा की। बेहतर प्रदर्शन करने वाले केंद्रों को तकनीकी सहयोग देने और बंद पड़े केंद्रों को फिर से संचालित करने के निर्देश दिए।

0: प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और चार धाम यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन को देखते हुए एहतियात के तौर पर चार धाम यात्रा पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोक लगाई गई। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही आगे की यात्रा कराई जाने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री खजान दास ने काठगोदाम के गोलपार क्षेत्र का भ्रमण किया। कहा, बरसात में संभावित आपदाओं से निपटने और लोगों को त्वरित राहत देने के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। पौड़ी जिले में जनजन की सरकार जनजन के द्वार अभियान का समापन द्वारीखाल विकासखंड में आयोजित अंतिम जनसेवा शिविर के साथ हुआ। शिविरों का उद्देश्य शासन की सेवाओं को लोगों के घर द्वार तक पहुंचाना और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। आगामी 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून जिले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में। यात्रा मार्ग पर व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में कांवड़ियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। और सावन मास के पहले सोमवार पर राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए अरिंदम चक्रवर्ती का सितार पर बजाए राग वाचस्पति।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अरिंदम चक्रवर्ती का सितार पर बजाए राग वाचस्पति। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक कलाकार।

कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, फिल्मी उद्योग में ऐसे कलाकार भी हैं जो अपने नाम से अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ऐसे अभिनेता हैं राजेंद्र कुमार, जिन्होंने फिल्मों में लोकप्रियता के लिए जुबली कुमार के नाम से जाने जाते हैं, जो वर्ष 1960 से लेकर 70 के सबसे सफल भारतीय अभिनेताओं में से एक रहे हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 20 जुलाई 1929 को ब्रिटिश भारत के पश्चिमी पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ था। आज के इस कार्यक्रम में इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, साथ ही सुनवाएंगे इन पर फिल्माए गए फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इनकी फिल्म से इस गीत के साथ।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार आज के कलाकार अभिनेता राजेंद्र कुमार। श्रोता अभिनेता राजेंद्र कुमार को फिल्मों तक पहुंचने के लिए कठिन दौर से गुजरना पड़ा और खूब संघर्ष करना पड़ा, लेकिन राजेंद्र कुमार पर अभिनय का जुनून था। वे चाहते थे कि फिल्मों में आए, अभिनय करें, खूब नाम कमाएं, और यही कारण रहा कि मुंबई पहुंचकर शुरू में इन्हें छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। और 1948 में इनकी पहली फिल्म आई थी मेला, जिसमें इन्होंने एक सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इसके बाद जब ये 21 वर्ष के हुए तो इन्होंने 1950 में केदार शर्मा की फिल्म जोगन में इन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अभिनय किया था, जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। और उसके बाद 1955 में इन्होंने फिल्म बच्चन में अभिनय किया, और जिसमें इनके साथ अभिनेत्री थी गीता बाली। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

शुतम वर्ष 1956 में उन्होंने वीर शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में अभिनय किया और इस फिल्म को खूब सराहना मिली और इनके अभिनय को ऊंचाई तक पहुंचाने भी इस फिल्म ने खूब मदद की। लेकिन शुतम इसकी सफलता के साथ साथ इनके करियर में कड़ी और जब जुड़ी जो इन्होंने 1957 में फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म बेहद ही हिट रही और ये रातों रात मशहूर हो गए। शुतम 1959 में अभिनेता राजेंद्र कुमार को एक बड़ी सफलता मिली जब इन्होंने फिल्म गूंज उठी शहनाई में एक रोमांटिक अभिनेता के रूप में प्रसिद्धि पाई और ये फिल्म उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और ये फिल्म उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में ये अगला गीत।

श्रोताओं, फिल्मों में योगदान के लिए अभिनेता राजेंद्र कुमार को अनेक पुरस्कार मिले हैं। इन्होंने 1963, 1964, 1964, 1965 और 1969 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए। साथ ही इन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया। साथ ही इन्होंने अनेक पुरस्कार और भी प्राप्त किए हैं। श्रोताओं, इन्होंने समाज सेवा से जुड़े कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। पर श्रोताओं, 12 जुलाई 1999 को इनकी लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया, पर इनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। सुनवाते हैं राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम में ये अंतिम गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार संपन्न होता है। हमारे आज के कलाकार थे अभिनेता राजेंद्र कुमार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा कि श्री अब्दुल्ला ने भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि मजबूत हवाई संपर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का मजबूत आधार रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थिर रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तीर्थयात्रियों

0: सुरक्षा को लेकर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर यानी शाम 5:10 पर समय रहेगा युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पीयूष सुंदरियाल से कविता पाठ। पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 5:45 पर। किसान साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7 बजे।

आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण का समय रहेगा शाम 7:50 पर। रात्रि 8:15 पर काव्यांजलि में सुनिएगा श्री सतीश बंसल से कविताएं। फिल्मी गीतों के सफर फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40 पर। रात्रि 8:30 पर, रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10:15 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत।

कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। कल रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट और कल रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये तीनों ही कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल प्रातः 7:30 पर सैल संगीत के अंतर्गत सुनिएगा नूतन भट्ट के गाए गढ़वाली गीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे योगंबर पोली। आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी सुनिएगा कल प्रातः 9 बजे। सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत कल प्रातः 9:05 पर।

महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम महिला जगत कल दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक एवं भावनात्मक पहलू विषय पर डॉक्टर ऋतु गुंजियाल से बातचीत। कल दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा राग पटमंजरी पर विदुषी एन राजम का वायलिन वादन। फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार का समय रहेगा कल दोपहर 4:30 पर, जिसमें हमारे कल के कलाकार होंगे गीतकार आनंद बख्शी। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: चांद तक पहुंचना कभी बस एक ख्याल था, हर दिल में छुपा हुआ एक अनोखा सवाल था।
1: हौसलों ने बदली जब सपनों की उड़ान, तो तब जाकर इतिहास ने लिखा नया कमाल था। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। हम हैं आपके होस्ट और दोस्त, मैं सनाली कठेत
0: और मैं आयुषी भट्ट। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी शाम अच्छे से बीत रही होगी। सोनाली, इंसान ने ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को पार किया, विशाल समुद्रों की गहराइयों को नापा और दुनिया के कोने कोने तक अपनी पहचान बनाई। लेकिन पता है, एक सपना ऐसा था जो सदियों तक सिर्फ आसमान की ओर देखकर देखा जा सकता था, और वो था चांद तक पहुंचने का सपना।
1: और फिर आया 20 जुलाई सन 1969 का एक ऐसा दिन आयुषी, जिसने ये साबित कर दिया कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर उनके साथ विज्ञान, साहस और मेहनत जुड़ जाएं तो वो हकीकत बन सकते हैं। दोस्तों, ये वही दिन है जब पहली बार इंसान ने चांद की सतह पर कदम रखकर इतिहास का एक नया अध्याय लिखा था।
0: और इसी वजह से दोस्तों, आज के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल मून डे। एक ऐसा दिन जब हम याद करते हैं उस ऐतिहासिक सफर को, जिसने सिर्फ चांद तक का रास्ता ही नहीं खोला, बल्कि पूरी दुनिया को बड़े सपने देखने की प्रेरणा भी दी। इस ऐतिहासिक मिशन का नाम था अपोलो 11। इस मिशन की शुरुआत 16 जुलाई 1969 को हुई, जब नासा का शक्तिशाली सैटर्न वी रॉकेट 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ।
1: जी हाँ, और इस मिशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। 4 दिन की ये यात्रा के बाद दोस्तों, 20 जुलाई को ईगल ल्यूनार मॉड्यूल धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ने लगा। लैंडिंग आसान नहीं थी, लेकिन फिर आखिरकार मिशन कंट्रोल में वो ऐतिहासिक संदेश सुनाई दिया कि द ईगल हैज लैंडेड।
0: और फिर क्या था दोस्तों, कुछ घंटे बाद वहाँ पहला पल आया जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा और कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जॉइंट लीप फॉर अ मैनकाइंड। यानी एक इंसान का छोटा सा कदम, लेकिन पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग। उनके कुछ ही देर बाद बज ऑल्ड्रिन भी मून पर उतरे। दोनों ने वहाँ वैज्ञानिक प्रयोग किए, तस्वीरें ली और मून की मिट्टी व चट्टानों के सैंपल्स भी इकट्ठा किए।
1: जी हाँ, और दूसरी ओर माइकल कॉलिंस लगातार चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहे। और पता है दोस्तों, उस समय दुनिया भर के लगभग 65 करोड़ लोगों ने इस ऐतिहासिक मूनवॉक को टीवी पर देखा, और उस दौर में ये सबसे ज़्यादा देखे गए लाइव ब्रॉडकास्ट में से एक था। और पता है आयुषी, नासा ने अभी हाल ही अप्रैल में 10-डे हिस्टोरिक आर्टेमिस 2 मून मिशन भी कम्प्लीट किया है।
0: और हाँ सुनाली, आर्टेमिस 4 भी 2028 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, जब चंद्रमा की बात होती है तो भारत का नाम भी गौरव से लिया जाता है। चंद्रयान 1 ने मून पर पानी के मॉलिक्यूल्स के प्रमाण खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं चंद्रयान 3 ने मून के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया।
1: पता है ऋषि, चांद तक पहुंचने का ये सपना किसी एक इंसान ने पूरा नहीं किया, इसके पीछे हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और वर्षों की मेहनत थी। इसीलिए चांद तक पहुंचने का ये सफर हमें सिर्फ अंतरिक्ष की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ये सिखाता है कि जिज्ञासा, मेहनत और विश्वास मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है।
0: बिल्कुल सोनाली, कभी इंसान चांद को सिर्फ दूर से निहारता था, और आज देखो उसकी सतह पर अपने कदमों के निशान छोड़ चुका है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, कौन जाता है आने वाले कल की सबसे बड़ी अंतरिक्ष

0: अंतरिक्ष उपलब्धि किसी ऐसे युवा के नाम हो जो आज हमारा कार्यक्रम सुन रहा हो।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हुआ है एंटरटेनमेंट का, तो पेश करते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म टू स्टेट से, जिसे आवाज़ दी है के मोहन और याशिता शर्मा ने।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
0: वैसे आयुषी, पता है, शब्द ना जब भावनाओं का हाथ था

0: लेते हैं तो कविता जन्म लेती है, और
1: बिल्कुल
0: शायद इसीलिए कहते हैं कि कविता केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि उसे महसूस किया जाता है।
1: बिल्कुल सोनाली। तो आइए दोस्तों कुछ ऐसे ही शब्दों की दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर पंक्ति एक नया एहसास जगाती है, हमारे सोमवार के इस खास सेगमेंट में। तो चलिए सुनते हैं कविता पाठ पीयूष सुंदरियाल द्वारा।
2: प्रस्तुत पहली कविता अंतरद्वंद में टूटे हुए बिखरे हुए। अंतरद्वंद में टूटे हुए बिखरे हुए, सीधे सीधे रस्ते कितने उजड़े कितने उजड़े। कितने दिन से राही इन पर चलता जाता है लेकिन, कितने दिन से राही इन पर चलता जाता है लेकिन, कौन दिशा है कहाँ ठिकाना, होश न इसका मालूम उसे। कोई हाथ पकड़कर इसका खींच ले एक दिशा की ओर, कोई हाथ पकड़कर इसका खींच ले एक दिशा की ओर। चीखे इसके कान पे आकर ओ राही भूले भटके राही, अपनी गर्दन पर लटकाकर पौने 5 किलो का बंद पिटारा। अपनी गर्दन पर लटकाकर पौने 5 किलो का बंद पटारा। खोखला बेकार कबाड़ भरा है गर्दन इसका वजन न सह सकती, झुककर कब तक चलता जाएगा कौन राह तू पा जाएगा। उतार इसे फेंक इसे, उठा अपनी दुबली गर्दन देख सामने ये अनंत राहें सारी। मूर्खों ने मंजिल का नाम का पत्थर रखकर रास्तों का अंतिम छोर किया घोषित, बोले जहां पर मंजिल है वहीं रास्ते खत्म हो जाते। बोले जहां पर मंजिल है वहीं पर रास्ते खत्म हो जाते। मूर्ख कभी अनंत सत्ता का, मूर्ख कभी अनंत सत्ता का गणित न कर पाए, हार गए और बांध दिया हर चीज को अपनी सहूलियत से। इनके अनुसार बंध जाते हैं पर्वत नदियां झरने बादल और रस्ते। इनके अनुसार बंध जाते हैं पर्वत नदियां झरने बादल और रस्ते, लेकिन राही तुम न बांधना, तुम और तुम्हारे रस्तों का संसार अनंत, आकार अनंत, आधार अनंत, विस्तार अनंत। द्वितीय कविता बोलो कब तक मौन रहोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे। फटे नहीं अंबर जब तक या जब तक धरती चीख पड़े ना, फटे नहीं अंबर जब तक या जब तक धरती चीख पड़े ना। पर की देख चिता को जब तक निज की मौत दीख पड़े ना। जमघट में भूले भटके हो तुम आखिर कब तक गौण रहोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे। खड़े भीड़ में कल्पों से अधिकार तो फिर भी मिले नहीं, खड़े भीड़ में कल्पों से अधिकार तो फिर भी मिले नहीं। सहे सहस्त्रों कुलश देह पर सुख के कुसुम कहीं भी खिले नहीं, सहे सहस्त्रों कुलश देह पर सुख के कुसुम कहीं भी खिले नहीं। फिर भी सीना तान खड़े हो नित नूतन पीड़ा कौन सहोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे। सत्य बिलखता है सम्मुख यह करुण विलाप है फूटा, सत्य बिलखता है सम्मुख यह करुण विलाप है फूटा। उल्लास मनाते हुए निज हाथों हालाहल है घूटा, उल्लास मनाते हुए निज हाथों हालाहल है घूटा। हालाहल है घूटा कब तक विषधारा में डूब बहोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे। फटे नहीं अंबर जब तक या जब तक धरती चीख पड़े ना, पर की देख चिता को जब तक निज की मौत दीख पड़े ना। जमघट में भूले भटके हो तुम आखिर कब तक गौण रहोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे, बोलो कब तक मौन रहोगे। प्रस्तुत कविता देवभूमि उत्तराखंड को समर्पित, इस दिव्य भूमि के आलोक और इसकी अखंड ज्योत को समर्पित। हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम, हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। हे असीम आलोक अखंडित अगणित पुण्यों के प्रदेश, हे असीम आलोक अखंडित अगणित पुण्यों के प्रदेश। हे सुराधीश सीमापति सत्वर सिंह भूमि के शैल सुरेश, हे महाज्योत के हिम किरीट, हे आदिनाथ के अमर ध्यान, हे महाज्योत के हिम किरीट, हे आदिनाथ के अमर ध्यान, गंगा यमुना की प्रथम धार, ओ शैलराज हिमपति महान, हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। कैलाश शिखर के स्वर्ग द्वार, ओ सरस्वती की लुप्त धार, कैलाश शिखर के स्वर्ग द्वार, ओ सरस्वती की लुप्त धार, छलकी अमृत की बूंद जहां, ओ शक्ति पीठ के हरिद्वार, ओ शक्ति पीठ के हरिद्वार। गूंज रहा युग युग से जनने किस महाराग का अमर गान, गूंज रहा युग युग से जनने किस महाराग का अमर गान, तू बैठी शून्य शिखर पर कब से, जगा रही है कौन ध्यान, जगा रही है कौन ध्यान, हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। हे पंच दिव्य केदार घाट, हे पंच दिव्य बदरी कपाट, हे पंच दिव्य केदार घाट, हे पंच दिव्य बदरी कपाट, पंच प्रयागों के भूखंड दिव्य, ओ गौमुख की गंगा विराट, ओ गौमुख की गंगा विराट। रे पुण्य भूमि के शक्ति पुंज, तुझ में दिव्यता का वितान, तेरी मिट्टी का मूल अरे, यह स्वर्ण धूल से भी महान, हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। तेरे अंचल की छाया में पला विश्व का आत्मबोध, तेरे अंचल की छाया में पला विश्व का आत्मबोध, तेरे मठ में हुए लीन जो बनकर निकले पूर्ण प्रबोध, करुणाश्रम से नाम लिए है जपता भारत वर्ष सकल, करुणाश्रम से नाम लिए है जपता भारत वर्ष सकल, युग युग से है खड़ा हिमालय सीमा पर निर्बंध अटल, धारी दीबा मनसा ज्वालपा चंद्र बदनी की ज्योत यहाँ, धारी दीबा मनसा ज्वालपा चंद्र बदनी की ज्योत यहाँ, जागेश्वर का महाधाम वैकुंठ लोक का ओज जहाँ, वैकुंठ लोक का ओज जहाँ। हे वीर सपूतों की धरती है दिए लाल अगणित तूने, हे वीर सपूतों की धरती है दिए लाल अगणित तूने, तीलु गौरा चंद्र सिंह से तुझ पर बलिदान किया शोणित जिनने, तुझ पर बलिदान किया शोणित जिनने। तू अखिल विश्व की बोधिसत्व, तू स्वयं स्वर्ग के लोक समान, तू अखिल विश्व की बोधिसत्व, तू स्वयं स्वर्ग के लोक समान, तुझ में परम आलोक अखंडित, तू नित गर्वोन्नत नित महान, हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम, हे असीम आलोक अखंडित अगणित पुण्यों के प्रदेश, हे सुराधीश सीमापति सत्वर सिंह भूमि के शैल सुरेश, हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम।
0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ का हमारा खास सेगमेंट, चलिए अब सुनते हैं ये ट्रेंडिंग सॉन्ग फिल्म अल्फा से शिल्पा राव और जनीता गांधी की आवाज़ में।

0: आयशी, दुनिया में कितने अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना. कुछ वो जो जिंदगी में बिना कुछ सोचे कदम बढ़ा देते हैं, और कुछ लोग वो जो एक कदम चलने से पहले 10 कदम आगे की भी सोच लेते हैं ना.
1: बिल्कुल सुनाली. और दोस्तों, अगर आप दूसरी वाली टीम में हैं तो यकीन मानिए, आपके अंदर एक चेस प्लेयर छुपा हुआ है. ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि पेशेंस, प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. और आज हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज है विश्व शतरंज दिवस, यानी वर्ल्ड चेस डे.
0: दोस्तों, हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है. इस दिन को 2019 में यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली मान्यता दी थी, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को पेरिस में फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी.
1: और दोस्तों, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि शतरंज की शुरुआत भारत के प्राचीन खेल चतुरंग से माना जाता है. माना जाता है कि इसकी शुरुआत करीब 6वीं शताब्दी में भारत में ही हुआ था. इसके बाद ये खेल फ्रांस, फिर यूरोप और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया. आज भारत के कई खिलाड़ी अपनी शानदार परफॉर्मेंस से देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं और युवाओं को भी इंस्पायर कर रहे हैं.
0: और दोस्तों, इस साल इस दिन को सेलिब्रेट, क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस, यानी कि शतरंज का आनंद लीजिए, नई सोच के साथ आगे बढ़िए और अपने आसपास पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कीजिए, थीम के साथ मनाया जा रहा है. ये थीम हमें याद दिलाती है कि चेस सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, लर्निंग और टीम वर्क का भी बेहतरीन माध्यम है.
1: और जब चेस की बात हो सुनाली, तो भारत का नाम गर्व से लिया जाता है.
0: बिल्कुल.
1: विश्वनाथन आनंद ने भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर देश में चेस को नई पहचान दिलाई. और आज वही विरासत नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है. डी कुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं. वही आर प्रज्ञानंदा और दिव्या देशमुख और आर वैशाली भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं.
0: वहीं अगर हम वर्ल्ड के नंबर वन प्लेयर की बात करें तो नॉर्वे के मैगस कार्लसन का नाम आता है, और उनकी FIDA रेटिंग भी दोस्तों काफ़ी हाई है. और वहीं फीमेल प्लेयर में चाइना की हो यीफान नंबर वन पर है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिडे रेटिंग क्या होती है. तो दोस्तों, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग होती है जिससे प्लेयर्स की स्किल का लेवल पता चलता है.
1: और दोस्तों, चेस में उत्तराखंड भी पीछे नहीं है. लड़कियों में आद्विका साहू, शिराली पटनायक ने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है. वहीं लड़कों में तेजस तिवारी और 13 साल के परिमार्जन नेगी हमारे उत्तराखंड का गौरव बढ़ा रहे हैं. तो दोस्तों, अगर आपने अब तक शतरंज को सिर्फ एक गेम समझकर नज़रअंदाज किया, तो एक बार इसे ज़रूर खेलिए. हो सकता है यही गेम आपकी सोच को नई डायरेक्शन दे दे. फिलहाल बातों का सिलसिला यहीं रोकते हैं. मानसून के इस मौसम में आपको नॉस्टैल्जिया फील कराते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, ये गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने.

0: सोनाली, हम अक्सर कहते हैं काश मैं थोड़ा और आत्मविश्वासी होता, काश मुझ में थोड़ा और धैर्य होता, या काश मैं समय का बेहतर उपयोग कर पाता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बदलता, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनता है।
1: अरे बिल्कुल आयुषी, जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक अच्छी क्वालिटी हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। और अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए हमें किसी बड़ी चेंज की नहीं, बस रोज छोटी छोटी कोशिशों की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। मान लीजिए दोस्तों, आज आपने तय किया कि किसी की बात बीच में नहीं काटेंगे और पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है ये छोटी सी बात लगे, लेकिन यही आदत आपको एक अच्छा लिसनर और बेहतर इंसान बना सकती है। इसी तरह अगले दिन खुद से वादा कीजिए कि हर काम समय पर शुरू करेंगे। उसके अगले दिन कोशिश कीजिए कि किसी की मदद करने का मौका मिले तो बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ेंगे और उसका मदद करेंगे। तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम आपकी पहचान बन जाते हैं।
1: आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में दोस्तों, हम अक्सर अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हम हर दिन खुद से सिर्फ ये सवाल पूछे कि आज मैंने अपने व्यक्तित्व में कौन सा नया गुण जोड़ा, तो शायद वो जवाब हमें भी हैरान कर दे। और हाँ, एक नया गुण कुछ भी हो सकता है, पेशेंस, ऑनेस्टी, टाइम की पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, थैंकफुलनेस, या फिर अपनी गलती एक्सेप्ट करने का करेज।
0: बिल्कुल। और याद रखिए, अच्छे व्यक्तित्व की पहचान सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से नहीं होती।
1: बिल्कुल
0: कई बार किसी को मुस्कुराकर ग्रीट करना, थैंक यू कहना, या किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी उतना ही बड़ा गुण होता है। सोशल मीडिया के इस दौर में हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं, लेकिन हमारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि हमारे फ्यूचर सेल्फ से। अगर आज हम कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो यही सबसे बड़ी जीत है।
1: बिल्कुल। और हाँ दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो किसी क्लास को सिर्फ अटेंड करने से नहीं होता, ये हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो खुद से लगातार कोशिश करने से डेवलप होता है।
0: इसीलिए जब भी दिन खत्म हो, बस एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर
1: बिल्कुल
0: जवाब हाँ है, तो समझिए आप सही दिशा में आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिल्म जब वी मेट से सुनते हैं ये गीत, जिसे गाया है मोहित चौहान ने।

0: दोस्तों दोस्तों आज का हमारा युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें खत द्वारा बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल और हमारा पिन कोड है 2480001।
1: साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। आप अपने विचार हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों और आज के लिए हमें यानी आयुषी और सोनाली को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर शाम के 5:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम का सभ्य सुंदरों तय पर दगड़िया शांति बिंजुलग तरफा बटे सादर शिव सोई नमस्कार। आप सभ्यों तय सोना मैना को पहलू सोमवार की बहुत बहुत शुभकामना छन। श्रद्धा संयम और शिव भक्ति को यु पावन पर्व दिन हम सभ्यों में पवित्रता और सकारात्मकता को संचार कर दो। यु सोना मैना पूजा पाठ को ही मैना नहीं बल्कि प्रकृति को सम्मान और संरक्षण को मैना भी छ। ये वास्ता हम ते ये मैना जका जोर बरखा मा डाल रूपण चैनी छन उनको संरक्षण करनी चाहू किले की भगवान शिव थे प्रकृति बहुत प्रिय छ। आप सभी की भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूरी करें इन कामना कर दो। और आप तो बता दें कि आज के कार्यक्रम में आप तो सुनोला पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता मोटू अनाज का औषधीय गुण और हमारो स्वास्थ्य ये विषय पर डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट जी दगड़ छुई लगाला हमार दगड़िया विनय ध्यानी। यहाँ के अलावा रंतरे बार सुनला गीत लोक गीत भी सुनला और लगोला आप दगड़ छके छुई पर पहले

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में? क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सुन रहे हो आप अनसुनी निरंतर है बार। और वैसे पहले सुन विजय सिंह सैलानी का स्वरमा भगवान शिव को सुंदर सी गीत। उम्मीद च खूब आनंद है होला आपते। सुनते रहो हम बात करना चाहे सोना महीने की। ये महीने माँ हमारे पहाड़ों का किसानों को गुणी खूब काम बढ़ जान। वो लग जा दिन हलग नार निसूड़ खुजान परे, बीज जुटान पर, कुटुल दथर फाल पल्याण पर, किले की यो बहुत महत्वपूर्ण बगत हूँ। क्वादू, जंगरू, मुंगरी, राजमा, उड़द, गौथ और भट्टों ते गुड़न माँ हमारी दीदी भूली भी मस्त हुए जन दिन। कक्की ढोल दमो दगड़ धनकुड़ चल दू, कक्की हुड़क्या बोलूं दगड़ स्यारा लग दिन। और अब तो सोशल मीडिया जमन च काम काज करद करद लोग उल्यारे हुए की वीडियो भी बढ़े दिन। पुंगड़ों की मिंडियों गेहूँ त साफ करे जान दू, पानी बान पानी रोकना बान स्यार लगाना बान ऊँ ऊँचू करे जांद, नालियों की सफाई करे जांद, हर घास कटे जांद और गुठियारे उन साफ सफाई करे जांद। इनका मेहनत करी की हमारे पहाड़ का लोग खुश हुए कि कौतिक बड़े दिन ये भगत थे। यही च हमारे पछाण और स्वस्थ रह दिन मोटू अनाज खाएगी। तो मोटू अनाज पर हम आप एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता सुनाना चाहूँ, जैकू विषय च मोटू अनाज का औषधीय गुण और हमारे स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट जी दगड़ छुई लगाला हम दगड़िया विनय ध्यानी। तो लिया सुना या भेंटवार्ता।
2: श्रोता भाई बंधु नमस्कार, मैं हूँ विनय ध्यानी और आज कार्यक्रम में हमारे दगड़ छन डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट। हमारे स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण है हमारे खाण पीण और खास कर मोटू अनाज। तो आज डॉक्टर भट्ट से हम बातचीत कर ला कि जीवन शैली का जो रोग छन और उखमा मोटू अनाज कै रूप में औषधि को दवे को एक रूप धारण कर लेन, ये परिचर्चा कर ला। सबसे पहले डॉक्टर भट्ट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
5: आपको।
2: आप बताएं कि हम अपन जीवन शैली का जो रोग छन उखमा खास कर कखमा अपन आहार और व्यवहार और खास कर मोटू अनाज ये तो कै रूप में रेखांकित करला।
5: जन के विषय छ कि जीवन शैली से भी छा। तो जीवन शैली को सबसे पहले कि लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में हो कि आप सुबह उठने को समय, फिर सोने को समय और दिनचर्या। तो दिनचर्या में जो सबसे पहले सुबह सुबह को जो समय छ, तो पहले प्रातःकाल उठने को समय। तो प्रातःकाल को समय हमारा ऋषि मुनि जी से पहले से बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठनो। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है 4 से 6 बजे का बीच में ब्रह्म मुहूर्त बोलूँ कि आप सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाओ। और उठने ये एक बड़ी बात नहीं, उठने के बाद आप और उठने के बाद गर्म पानी को सेवन करा। और गर्म पानी सेवन भी व्याधि के अनुसार, यदि माना कहीं को पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती, कब्ज रहती, तो वही रात में त्रिफला भिगोए के रख देनी और सुबेर वही पियावा। तो वैसी वही को पेट भी साफ हो लो और पेट से संबंधित पित्त इत्यादि मंग आराम मिल जा लो। यदि कहीं बीपी से संबंधित छ कोई कोलेस्ट्रॉल बीपी लिपिड प्रोफाइल वाली प्रॉब्लम छ, तो अशोक के छाल रात में भिगे के और तय पानी पी सक दो सुबह। और फिर यदि कोई शुगर को पेशेंट छ, तो जो कुछ दवाइयाँ होंगी जो शुगर नियंत्रित कर दी, मधुशून्य चूर्ण टाइप को जन दारू हल्दी हुई कि विजय सार हुई कि गुटमार हुई कि इन तरीके की, उन रात को भिगे के और सुबह वो खाली पेट सेवन करा। और यदि कोई वजन बढ़ने वाली समस्या जो आजकल पॉपुलर हुई हूँ, तो वही मैं कि स्थूल वालों, तो वही मैं उष्णोदक जल बोल रहा कि ज़्यादा पानी लेते हैं वही आधा सिटे देणु, जब आधा बजा लो तो वही मैं नींबू शहद मिलेगा यदि आप पिए, तो वैसे आपको वजन भी कम हो जा लो। तो ई तरीके से दिनचर्या शुभ करना और कम से कम प्रातः एक घंटा थोड़ा सा पैदल मार्च करना। पैदल बाद में क्या करना कि वही मंग भी सबसे पहले एक आपस से बात करनी, कोई डिवाइस यूज नहीं करने की, कोई आजकल जो छा भजन लगे देंदा, कोई गाना लगे देंदा, चलना लगे आगे जी मोजी आपस में बातचीत करने लग गया, तो इसमें बात नहीं करनी।
2: अच्छा।
5: तेज तेज चलना जैसे कि शरीर से पसीना निकला और खूब तेज चले के एक घंटा कम से कम जो छा रोज चलने में लगाई छ तो पैदल मार्च। तो पैदल चलने बाद वही के बाद जब आला तो योगा प्राणायाम और आसन ई तरीकों को थोड़ा दिनचर्या में शामिल करना। वीक के बाद जो छा फिर नहाना को तय भी जन आपको साप्ताहिक अवकाश है तो वही मंग अभंग बोल रहा कि तेल मालिश करे के थोड़ा धूप में और सूर्य की तरफ पीठ करे के हफ्ता में एक बार कम से कम जो छा सूर्य को भी उलिए चुन तो वही से विटामिन डी की कमी जो छा पूर्ति हो जाली। ठीक है। और नहानु रोज चुन कभी भी वही में नहाने में कंजू से निकलने और खूब दिल खुक नहीं चुन साफ शरीर बदन जब साफ हो लो शुद्ध हो लो तो आपकी जठाग्नि भूख लगली तो जब भूख लगली तो सभी चीज फिर खाने को मन भी कर लो और खाना मंग भी क्या करना पड़ लो कि सबसे पहली सुपाच्य भोजन जो आसानी से पचने वाला भोजन और सात्विक भोजन, सात्विक भोजन और सुपाच्य भोजन वही कुछ सेवन करना सुबह सुबह है ना।
2: अपन डॉक्टर भट्ट बताए कि भाई अपन जीवन शैली से जुड़े जो रोग छन उन थोड़ा जीवन शैली में सुधार का दगड़ ही हम पूर कर सकता है ना, वे पर नियंत्रण कर सकता जन के अपन विभिन्न बीमारियों की बात करें। मोटापा जे आप बोले कि आजकल सब जगह देखे जानो चार खास कर वे से और कई रोग हो जाने। अब जरा खान की बात भी कला कि मोटो अनाज ते हमन आज अपन जो पोषाहार जो उखमा बहुत वरीयता से शामिल कर रहा तो अगर कोई आदमी खूब वजन बढ़नु च और लगातार मोटो होने च तो वे तो कई तरह को खानु खान चाहिए जो कि हमारे घर को खान
5: ये मंग जन आजकल सीरियन डाइटरी फूड के बारे में बोलियो कि मोटो अनाज को सेवन तो ये में यू पाएगी कि मंग सभी तत्व उपलब्ध छ खनिज भी छ लवण भी छ कसाई भी छ और पोषक तत्व ये में सभी कुछ छ जन विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी सिक्स और विटामिन ई में तो सभी प्रकार का विटामिन भी और खनिज लवण भी में सब चीज प्रचुर मात्रा में छ और साथ में क्या करना कि ये की यो रिसर्च निकल कि इसी वजन भी नहीं बढ़नो।
2: अच्छा।
5: हाँ वजन बढ़ने में भी वो लाभदायक छ और जन प्रतिरोधक क्षमता जन कैंसर डायबिटीज वाला जो रोगी छ उनकी यन रिसर्च में आएगी कि उतना शुगर बढ़नो और वही मान कैंसर वाली प्रॉब्लम आई ये मंग तो ये मैं रोज अपना खान पीन में यू डाइटरी फूड इस्तेमाल करी चंद मोटो अनाज इसी फायदा ही फायदा ये फाइबर।

0: कि जन पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होने, और सभी तरीके से आप ही जो छा ई मंग शरीर में तापमान बढ़ाने में भी मदद कर दी, जन हमारी शरदकालीन ऋतु छा और ठंडी की ऋतु में ठंड लग दी। तो आप यदि ई मोट अनाज को सेवन कर ला तो आप ही ठंड भी नहीं लगने, तो ठंड से भी आप बचाव कर सकता। और प्रकृति ने हम इन दिनों कि शरदकालीन में हम जो छा सभी मोटा अनाज को उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में होंगे, और वही टाइम हमारे खाना खाने की भी इच्छा अच्छी कर दी, तो भूख भी अच्छी लग दी, तो वो भी हमारे पर्याप्त मात्रा में। अब जन बाद में क्यों कि जन चुकंदर गाजर वही कुछ जूस पी सकता, तो ज़्यादातर लिक्विड डाइट और जो फूड सप्लीमेंट में जो है ये मोट अनाज यदि हम ये कुछ सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर ला तो हमारा वजन नहीं बढ़ने, और जो कोई बीमारी हो कोई इस तरीके की कोई समस्या हो तो वही को भी धीरे धीरे करके निराकरण हो जाली।
1: डॉक्टर भट्ट आपन बताया कि हम अगर मोटो अनाज को सेवन करता तो वैसे हम तक बहुत कुछ मिले थे और कई रोगों पर वही को सीधा असर, खास कर वजन बढ़ने पर। आजकल हर आदमी बीपी और शुगर से परेशान छे, कैंसर तो खैर एक बहुत बड़ी चुनौती छे, जखमा भी आप बताना चाहे कि अपन जीवन शैली में या कुछ भी इन हानिकारक पदार्थ हम नहीं लेवा जिनके कि हम कैंसर का तरफ जुड़ा। लेकिन अगर हम इन बोले जा कि रक्तचाप से जुड़ी हूँ या मधुमेह से जुड़ी समस्या छ, तो उकमा हमार खान कुमा मोटा अनाज वो कोच जो कि बहुत मददगार साबित, जन की कोदा झंगरोखण बोल दे आपके बोल रहे
0: ये मंग यू पाएगी कि जन हम बाजरा को सेवन करा और जन की कोदा की रोटी भी आजकल लगे हुए चलने लगे हूँ, तो कोदा झंगोरो माल कंगनी चौलाई ई तरीके की जो हमारा मोटा अनाज में था ये सब भी लोग शुगर नहीं बढ़ोदा और अपने शरीर में पोषक तत्व भी पूर्व देने रहा, तो उन चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना। और अपनी लाइफ स्टाइल यदि आप अच्छी तरीके से मेनटेन करा और कुछ जड़ी बूटियों टाइप की भी यदि आप डेली पर यूज करते रहा और पैदल चला तो मैं समझ रहा हूँ कि शुगर कोई इतना बड़ी इशू नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक बोली आपन कि अगर दिनचर्या आपन अपन व्यवस्थित और नियोजित करी छे, खाने खुराक हमार खास कर पहाड़ में तो डॉक्टर साहब उन भी छाई छे, घूमन फिरन भी छाई छे, लेकिन आजकल हमें देखना चाहूंगा कि वे का बाद भी अगर हृदय रोग से जुड़ी बात आन तो वो बहुत सामान्य सी हो गया। उकमा हमारो जो खाण छ मोटो अनाज छ वे तक कन के हम शामिल करा जनके कि हमारा जो हृदय संबंधी रोग छन ऊपर भी रोक लग सके।
0: ये मंग हृदय रोग जो चलनो विमन ध्यान जी जो हम लोग तेल का यूज करना तेल रिफाइंड, तो हम रिफाइंड को यूज बिल्कुल नहीं करें जन, हम कच्चे धानी को तेल जो कच्ची घानी सरसों को तेल छ वही को डेली रोटेशन में इस्तेमाल करना। और पहले जब हम लोग ज्वाइंट परिवार में थे संयुक्त परिवार में तो हम छोंक मारते थे करछे से, तो करछी में जब छोंक मारते थे तो मुश्किल से 50 ग्राम तेल जो छ पांच आदमी उतने हो जाते थे, कम से कम चार पांच आदमी को परिवार उन थे तो वही में 50 ग्राम तेल लगते थे। और अब समस्या होगी जो न्यूक्लियर फैमिली होगी परिवार में सदस्य होगी दो तीन और ग्रेवी बनाने लगे 200-100 ग्राम तेल डालने लगे है ना, वही में खूब प्याज बुनना बड़ी अच्छी ग्रेवी टेस्ट नहीं होने लगे, तो वो जो तेल को जो मात्रा था वो कम करनी बहुत कम, तेल को मात्रा बहुत कम और तेल भी करना तो सरसों को तेल और कच्ची घानी को तेल जो इमें कोई कोई मिलावट ना हो वही चीज को इस्तेमाल करो। गाय को घी भी खा सकता आप तो वैसे भी आपको जो है वजन भी नहीं बढ़ने और बीपी की समस्या भी नहीं होने, तो क्योंकि न्यूट्रिशन डाइट भी चाहिए और जो हमारे पौष्टिक जो खाद्य पद चीज है जन मोट अनाज छा वही जितना भी आप यूज कर ला वैसे कोई ब्लड प्रेशर वाली कोई समस्या नहीं होनी। आजकल बेसिक चीज है आप लाइफ स्टाइल मेंटेन करा, सुबह जल्दी उठा सुबह, और एक आजकल ध्यान दीजिए थोड़ा सा ना लोग डिप्रेशन में ज्यादा टेंशन में, तो टेंशन से क्या होनो कि आप ही कोई भी जै पर्याप्त नींद नहीं होने, पर्याप्त नींद यदि लेटे तो छन दो पर वही नींद नहीं होने, तो जो गहरी नींद छ वो डीप स्लीप वो नींद नहीं, तो नींद जै नहीं वही बीपी की समस्या भी वही होने लगी, और जो नींद अच्छी वो ऐसी समस्या नींद।
1: बिल्कुल ठीक बोले आपन की नींद भी जरूरी छे और खान पीन भी जरूरी छे और ये मत संतुलन भी बहुत जरूरी छे। आपन बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि अगर हम अपन खान पीन में लून तेल ये रकम कर दियो तो बहुत सारा समस्या हम दूर कर सकता, लेकिन यूं को अगर विकल्प के तौर पर हम

0: तो आपन बोली बस सरसों तेल इस्तेमाल करा। लेकिन अगर हम लूण की और चीनी की बात करा तो वो एक को हम अपन मोटो अनाज में क्या ढूंढ सकना।
1: देखो जी, नमक मा सेना नमक, काला नमक वी को यूज करा कम से कम, ज़्यादा कम से कम ना शुरू करा कि जैसे आपको स्वाद भी बन जा और नमकीन भी जा। और मीठा मा जो छ, यदि थोड़ा सा गुड़ को सेवन या खांड को सेवन करा, चीनी को सेवन नहीं करा, चीनी बहुत
0: कम
1: कम करो, ना के बराबरी करो, गुड़ को सेवन करो। तो गुड़ में जो छ, और गुड़ में भी केमिकल फ्री गुड़, मसाला वाला गुड़, जो बगैर मसाला का गुड़ हो, तो वही को यूज कर ला, तो वो भी हमारे बीपी से ये तरीके में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वैसे।
0: डॉक्टर भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में। और मोटा अनाज का जो पोषक तत्व तो छन, वो हमारे जीवन शैली से जुड़े कई रोगों पर रामबाण को असर दिखाना छन। यही बात है, आज सारा दुनिया, सारा शोध और सारा चिकित्सा विज्ञान मनोनु छ। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हमारा सुनदरों तक पहुंचाने का खातिर।
1: आपको भी
2: मोटू अनाज और औषधीय गुण और हमारे स्वास्थ्य विषय पर अभी अपन सुन पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट जी दगड़ छुई लगाना छे हमार दगड़िया विनय ध्यानी। उम्मीद कर दू आप लोग ही भेंटवार्ता को लाभ ले ली और स्वस्थ रह ली। और अब कार्यक्रम में जरा छुई सुनदरों, हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाई जान। यु दिन मनखी की अंतरिक्ष यात्रा, वैज्ञानिक उपलब्धियों और चंद्रमा का शांतिपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग का प्रति जागरूकता को प्रतीक। चंद्रमा यानी जून आकाश को सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि मनखी का सांसु जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को जीवंत प्रतीक। आज का दिन चंद्रमा पर पहली सफल यात्रा की ऐतिहासिक उपलब्धि को सम्मान करे जादु और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और वैश्विक सहयोग के प्रति लोगों तय प्रेरित करे जान। ई पहली यात्रा ने हम तय सिखाई कि आगा से कोई सीमा नहीं, बल्कि नए शुरुआत हूं। आप सभी तय ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना छन। और अब कार्यक्रम में सुन दो भजन दास का स्वरमा जौन सारी लोकगीत।
0: आप सभी तय हमार तरफ बटे बहुत बहुत बधे। अरे भाई, आप विदेशक दिन अपन बधे अपना शुभ चिंतकों तक, अपना परिजनों तक और अपना प्रियजनों तक। बस अगर आपक जन्म बार च कोई खास दिन च आप बधे दिन जाना चन आकाशवाणी का माध्यम से, तो आप सिर्फ 300 रुपया यानी कम से कम 15 शब्दों का दगड़ी अपनो शुभकामना संदेश आकाशवाणी का माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो देर के लगा ना, जब कोई राजकीय या लोक पर्व हो या आपक जन्मबार हो, तो आप बधाई दे सक दिन अपना मित्र वरों थे, अपना प्रियजनों थे। ये का खातिर आप हमारा विज्ञापन अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

0: पेमेंट फेल।
1: पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए।
0: गई मेरी मेहनत की कमाई।
2: हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप।
3: या बिल,
4: मेरी फीस।
2: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: सुन रहा हूँ अभी अपन सुने जरूरी रंत रैबार और रैबारों दगड़ सुना अपन जौन सारी लोकगीत जैते स्वर देना चाहे भजन दास। और अब जरा छुई लगन दो एक और ही खास दिन च आज आज विश्व शतरंज दिवस भी च। यु दिवस शतरंज का महत्व वे का बौद्धिक लाभ और लोगों में रुचि पैदा करण का वास्ता मने जान किले की 20 जुलाई सन 1924 इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना करेगी छे। विश्व शतरंज दिवस हम तो एक और ही संदेश भी दें दू कि जीवन भी एक शतरंजी जंच ये माँ हर निर्णय सोच समझी लेन चाहिए और हर चुनौती को धीरज धैर्य सामना करन चाहिए किले की जीवन की बाजी वही जीत सकूँ जो हर चाल सोच समझी चल दू धीरज नहीं खो दू और विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य पर अडिग्रान। तो आप सभी तय ये दिवस की बहुत बहुत शुभकामना छन। और अब कार्यक्रम में चल दो कुमाऊं छोड़ और सुन दो दीवान सिंह धनिक का स्वर में यू कुमाऊनी लोकगीत।

0: दीवान सिंह धनिक का स्वर मा अभी आपन सुनियो कुमावनी लोकगीत। और अब मटमट के बगत हुणु च समाचारों को, तो ल्या सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश के ग्रोथ सेंटर्स को बाजार और निजी भागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया। देहरादून जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की व्यापक तैयारियां। यात्रा मार्ग पर बनाए जाएंगे चिकित्सा राहत केंद्र। और प्रदेश में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की। सभापति CP राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। विपक्ष के हंगामे के कारण

0: पार्लियामेंट दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आज सचिवालय में संबंधित विभागों के साथ प्रदेश के ग्रोथ सेंटर्स की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ग्रोथ सेंटर्स को स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि इन्हें बाजार, निजी भागीदारी और कोल्ड स्टोरेज चेन से जुड़ना जरूरी है। मुख्य सचिव ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले केंद्रों को तकनीकी सहयोग देने और बंद पड़े केंद्रों को फिर से संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही उत्पादों को GI टैगिंग, जैविक प्रमाणन से जोड़ने और उनकी पहचान व्यवस्था पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ समन्वय बढ़ाने, नाबार्ड से वित्तीय सहयोग सुनिश्चित करने और वन आधारित ग्रोथ सेंटर्स के लिए बिजनेस प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अंतर्गत पशुपालकों की समस्याओं को समझने और उनके निस्तारण के लिए लगातार पशुपालकों के साथ संवाद और कार्यशाला आयोजित करने की बात भी कही। नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री खजान दास ने आज काठगोदाम के गौलापार क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और बरसात के दौरान प्रभावित हुए भवनों का जायजा भी लिया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बरसात में संभावित आपदाओं से निपटने और लोगों को त्वरित राहत देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है।
2: प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे भूस्खलन, चाहे कभी भूकंप आ जाए, इस तरह की आपदाएं यहां पे आती रहती है। अति संवेदनशील क्षेत्र है। फिर भी हमारी जो सरकार जो काम कर रही है, और सभी मंत्रीगणों को निर्देशित किया गया कि समय भारी बारिश होने के कारण अपने अपने क्षेत्रों में रहें, प्रभारी जिला जो तुम्हारे सौंपे गए हैं उन जिलों की स्थिति को देखें।
0: इस दौरान प्रभारी मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है। आगामी 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से देहरादून जिले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसके तहत यात्रा मार्ग पर व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में कांवड़ियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थलों और चिन्हित चेक पोस्टों पर विशेष स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था की जा रही है।
3: प्रत्येक साल की भांति अभी तक जो जानकारी है उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो पॉइंट चिन्हित किए जाते हैं, जैसे श्यामपुर चौकी पे एक MRP हमारे द्वारा बनाया जाता है, ऐसी IDPL में भी एक हमारे द्वारा MRP स्थापित किया जाता है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जिसमें हमारी जो मेडिकल टीम है जिसमें एक डॉक्टर रहता है, एक फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स रहती है और एक वार्ड बॉय रहता है, तो ये टीम हमारे द्वारा वहाँ पे जाती है और टीम 24/7 काम करती है, रोस्टर में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है और वहाँ पे जो सामान्य औषधियाँ हैं और जाँच की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है लोगों को रहती है। इसके अलावा जो बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी 108 की जो के द्वारा एम्बुलेंस की जो स्थापना जो है हमारे द्वारा की जाती है, तो ये लगातार हमारे द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है।
0: सावन मास के पहले सोमवार पर आज राजधानी देहरादून सहित राज्य के विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बागेश्वर जिले

0: का प्रसिद्ध बागनाथ धाम शिव भक्तों की आस्था से सराबोर नजर आया। मंदिर के पुजारी पंडित हरीश पाठक ने बताया कि सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।
1: आज का विशेष महत्व यह है कि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और इस सोमवार में जो पहले श्रावण मास शिव को अति प्रिय है, इसमें हर किसी दिन यहाँ पे जलधारा का विशेष महत्व है। जल प्रिय है, आशुतोष है, जल से प्रसन्न होने वाले हैं और सोमवार का उसमें और बड़ा महत्व हो जाता है। इस दिन जो है महिलाएं खासतौर पर व्रत रखती है अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए, जो भी कामना उनके मन में होती है अपने परिवार के लिए वो कामना उनकी शीघ्र पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ जी।
0: उधर टिहरी, चमोली और चंपावत जिलों में बारिश के बावजूद मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। पौड़ी जिले में जनजन की सरकार जनजन के द्वार अभियान ने शासन और आमजन के बीच संवाद और सेवा वितरण का सशक्त माध्यम बनकर उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। 4 जुलाई से 19 जुलाई तक आयोजित 16 बहुउद्देशीय जन सेवा शिविरों में 7,000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जन सेवा शिविरों का उद्देश्य शासन की सेवाओं को लोगों के घर द्वार तक पहुंचाना और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
2: यहाँ पे 15 दिवसीय हमारे जो जनजन की सरकार का एक दूसरा चरण चला, तो उसमें 19 तारीख को भी हमारे सभी ब्लॉक्स में ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें कई प्रकार की शिकायतें आई। इनफैक्ट लगभग 7,000 से अधिक लोगों ने इसमें विभिन्न लाभ अर्जित किए। लगभग हमारी 3,000 शिकायतों का भी इसमें समाधान किया गया और लगातार इसमें काफी जनप्रतिनिधियों ने भी बहुत उत्साहपूर्वक इसमें हिस्सा लिया, तो वो फेज अब समाप्त हो चुका है। और इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने स्पेशली भी कहा है कि गांव-गांव जाकर हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था आदि को ये एप्लीकेशन भरवाएंगे और उनका वहीं पर मौके पर ही लाभ देना सुनिश्चित करेंगे। तो ये अभियान ऑलरेडी खत्म हो चुका है, परंतु गांव-गांव में जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश के ग्रोथ सेंटर्स को बाजार और निजी भागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया। देहरादून जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की व्यापक तैयारियां। यात्रा मार्ग पर बनाए जाएंगे चिकित्सा राहत केंद्र और प्रदेश में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एकदा फिर स्वागत है आप सभियों को अपनी बोली भाषा का ये लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम जगत मां जेता आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बेटी सुनना छीन और मिझो आपे दगड़िया शांति बिंजुला सुन दरो। बरखा बतवणी का ये मौसम मां भारी गाड़ी अंगुए चलाया, रफ्तार कम रख्या किले की सड़कियों मां पानी भरू रोंदू और खड़लों पता कते नहीं चलदू और दुर्घटना को खतरा बढ़ जान। तो भारे स्वस्थ रहा, मस्त रहा और हाँ रेडियो जरूर सुनते रहा। आप ते बतौला कि भोल ग्राम जगत मां गढ़वली लोक कवि को प्रसारण करे जालू, तो टक लगे कि सुनिया ग्राम जगत। और एक बात होर बुनाई कि आप ते दह लगाने कि हम कौन चिट्ठी जरूर भेजा, हमारे चिट्ठी पता जो चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com कन लगना छे ना आप ते ग्राम जगत कार्यक्रम सभी कार्यक्रमों के बारे में आप हम तय लिख सकते हैं। हम तो आप की चिट्ठियों को जगवाल राल और भी पहले दिन आप एक चिट्ठियों को जवाब दिए जाल, तो बारे जरूर लिखा। और अब एक सूचना। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुना आने वाला मैंने बेटी हम आपक खातिर ग्राम जगत में कुछ नए कार्यक्रम लेके आना छवा। मैंने का प्रत्येक वारागुण साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनी ली न्यार द्वार फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम जगत आप सुनी ली मैं नमा द्विदा पहलू और तीसुर शुक्रवार गुण। और ये कार्यक्रम का खातिर श्रोताओं की फोन रिकॉर्डिंग भी प्यारा दिन बेखुंदा 4 बजे बिटी 4:30 बजे तक करी जल। ये कार्यक्रम का वास्ता हमारे फोन नंबर 1383

0: भुवनेश्वरी काला का स्वरमायु छ सुंदर पर्यावरण गीत और ये की दगड़ हमारो आज को ग्राम जगत कार्यक्रम यमी संपन्न होंदू। भोल आपसे फिर भेंट वेली, तब तक का वास्ता अपर दगड़िया शांति बिंजुरता दया अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर शाम के 6:50 हो रहे हैं और अब वक्त है गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में मृणाल रतुड़ी। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश का कई जिलों में भारी बरखा की चेतावनी। सुरक्षा की दृष्टि से चारधाम यात्रा तय अस्थायी रूप से थोड़ा वक्त खुणी रोकी गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धनन प्रदेश का ग्रोथ सेंटर्स तय बाजार निजी भागीदारी और कोल्ड स्टोरेज चेन से जोड़ने पर जोर देनी। पौड़ी जिला में ग्रामोत्थान परियोजना का तहत माल्टा का छिलका बंड लग्या महिला मन की आय को नयु साधन। प्रसंस्करण इकाई में तैयार करी जाना हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद। और प्रदेश में सौण का पहला सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक करी। अब समाचार विस्तार से। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश का विभिन्न जिलों में हल्की हल्की बरखा होनी चे। बरखा और भूस्खलन से पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सड़कों पर यातायात बाधित होना छन। संबंधित जिला प्रशासन की ओर से बंद सड़कों तय खोलने का प्रयास कैरी जाना छन। मौसम विभागन अगला 24 घंटों का दौरान प्रदेश का कई जिलों में भारी बरखा की चेतावनी देनी। मौसम की चेतावनी तय देखी राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क छ। सभी संबंधित विभागों तय अलर्ट मोड पर रखी छ, जैसे कि आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई कैरी जा सको। प्रदेश में लगातार होने लगी बरखा और चारधाम यात्रा का विभिन्न जगहों में भूस्खलन ते देखी सावधानी का तौर पर चार धाम यात्रा को संचालन अस्थायी रूप से थोड़ा वक्त खुणी रोकण को निर्णय लियो छ। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूपन मार्ग बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों ते सुरक्षित जगहों पर रुकण और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करोण ते संबंधित जिलाधिकारियों ते निर्देश दिनी। प्रशासनन स्पष्ट करियो छ कि यू निर्णय यात्रियों की सुरक्षा ते सर्वोच्च प्राथमिकता देण खुणी लियो छ। आने वाली 23 जुलाई से शुरू होनी कांवड़ यात्रा तय सुरक्षित और सुचारू बनाने का उद्देश्य से देहरादून जिला में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां अंतिम चरण पर। ये के तहत यात्रा मार्ग पर भली स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी जानी छन, जैसे कि आपात स्थिति में कांवड़ियों तय तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सको। देहरादून का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि यात्रा मार्ग का मुख्य जगहों पर चिन्हित चेक पोस्टों पर विशेष स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था होनी चे। ये सभी जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय रैली और श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर खास नजर रख ली।
3: प्रत्येक साल की भांति अभी तक जो जानकारी है उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो पॉइंट चिन्हित किए जाते हैं, जैसे श्यामपुर चौकी पे एक MRP हमारे द्वारा बनाया जाता है, ऐसी IDPL में भी एक हमारे द्वारा MRP स्थापित किया जाता है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जिसमें हमारी जो मेडिकल टीम है जिसमें एक डॉक्टर रहता है, एक फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स रहती है और एक वार्ड बॉय रहता है, तो ये टीम हमारे द्वारा वहाँ पे जाती है टीम और 24/7 काम करती है, रोस्टर में शिफ्ट वाइज ड्यूटी रखती है और वहाँ पे जो सामान्य औषधियाँ हैं और जाँच की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है लोगों को रहती है। इसके अलावा जो बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी 108 के द्वारा एम्बुलेंस की जो स्थापना जो है हमारे द्वारा की जाती है, तो ये लगातार हमारे द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है।
2: मुख्य सचिव आनंद वर्धनन आज सचिवालय में संबंधित विभागों का साथ प्रदेश का ग्रोथ सेंटर्स की प्रगति की समीक्षा करी। उन ग्रोथ सेंटर्स तय स्थानीय अर्थव्यवस्था को जरूरी आधार बताए और बोली यू तय बाजार निजी भागीदारी और कोल्ड स्टोरेज चेन से जोड़न जरूरी छ। मुख्य सचिवन बढ़िया प्रदर्शन करने वाला केंद्रों तय तकनीकी सहयोग देन और बंद पड़िया केंद्रों तय फिर संचालित करने का निर्देश देनी। दगड़ दगड़ी उत्पादों तय GI टैगिंग जैविक प्रमाणन से जोड़न और ऊ की पहचान व्यवस्था पर जोर देनी। ऊन भीड़ और ऊन विकास बोर्ड का अंतर्गत पशुपालकों की समस्याओं तय समझण और ऊ को निस्तारण खुणी लगातार पशुपालकों का साथ बातचीत और कार्यशाला आयोजित करने की बात भी बोली।
4: गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र देहरादून बठिन प्रसारित होनु छे। ताजा समाचारों को आप हमारा सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकदिन। दगड़ ही यो समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छन।
2: पौड़ी जिला में ग्रामोत्थान परियोजना का तहत शुरू हुए एक विशेष पहल में माल्टा का छिलकौते महिला मन की आय को नयु साधन बने। उमंग स्वायत्त सहकारिता द्वारा संचालित प्रसंस्करण इकाई में महिलाएं माल्टा का छिलकों से फेस पैक, स्क्रब और हर्बल उपटन तैयार करनी छन। ये उत्पादों में छिलकों का साथ मुल्तानी मिट्टी, चंदन, गुलाब पाउडर, हल्दी, बेसन और नीम जन प्राकृतिक तत्वों को उपयोग होनु छ। पूरी तरह हर्बल और केमिकल फ्री उत्पाद बाजार में लोकप्रिय होना छन। ग्रामोत्थान परियोजना का प्रबंधक कुलदीप बिस्टन बताए कि पहाड़ों में पूरी मात्रा में होने वाला माल्टा को उपयोग पहले सिर्फ फल और जूस तक सीमित छाई। खाद्य बनौन की प्रक्रिया का बाद यूं का छिलकों तय फेंकी देंदा छा। अब यूं छिलकों को वेस्ट टू वेल्थ मॉडल का तहत हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों में बदली जानू छ।
5: पौड़ी में उमंग स्वायत्त सहकारिता द्वारा एक बेड़ू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है, जिसमें बेड़ू के साथ साथ अन्य फल और सब्जियों का भी प्रसंस्करण किया जाता है। तो जब हम इसमें माल्टे का प्रसंस्करण करते हैं तो माल्टे के जो छिलके हैं वो वेस्ट चले जाते थे, तो इन वेस्ट से कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए, इसी के तहत हमने इसकी रिसर्च और थोड़ा एनालिसिस करके हमने माल्टे के छिलकों से विभिन्न प्रकार के जो कॉस्मेटिक्स हैं वो तैयार किए हैं, जिसमें अभी इनिशियल स्टेज में हमने तीन प्रकार के कॉस्मेटिक्स, जो माल्टा फेस पैक है, माल्टा स्क्रब है और माल्टा का हर्बल उपटन है, ये पूरी तरीके से जो है जैविक उत्पाद जो है तैयार किए गए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जो माल्टे के छिलके वेस्ट होकर फेंक दिए जाते थे उनसे ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का एक नया स्रोत इससे तैयार होगा।
2: वकी ग्रामोत्थान परियोजना से जुड़ी महिला रवीना रावतन बताए कि उत्पाद निर्माण, पैकेजिंग और विपणन से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बननी च।
6: माल्टे के छिलका हम गाँव से मंगाते हैं, लेडीजों से वहाँ से 100-150 लेडीज माल्टे के छिलके हमें देती हैं। माल्टे को धो के सुखा के काट के उनको अच्छे से साफ करके फिर उन्हें उसके बाद फेस पैक उपटन बनाते हैं। और महिला हमें रोजगार का साधन है, हमारे अपना थोड़ा बहुत खर्चा इससे निकल जाता है हमारे पति के।
2: सौण मास का पहला सोमवार पर आज राजधानी देहरादून सहित राज्य का विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं भगवान शिव को जलाभिषेक करी। ये दौरान मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले का जयघोष से भक्तिमय वातावरण बन्यू रहे। बागेश्वर जिला का प्रसिद्ध बागनाथ धाम शिव भक्तों की आस्था से भक्तिमा मगन नजर एनी। भगवान शिव को जलाभिषेक और पूजा अर्चना खुणी महिलाओं, युवा और बुजुर्गों दगड़ बहुत संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन मंदिर परिसर में लगी रहे। मंदिर का पुजारी पंडित हरीश पाठकन बताए कि सौण को पहलू सोमवार भगवान शिव की आराधना खुणी बहुत शुभ मान्यु जांत।
7: आज का विशेष महत्व यह है कि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और इस सोमवार में जो पहले श्रावण मास शिव को अति प्रिय है, इसमें हर किसी दिन यहाँ पे जल धारा का विशेष महत्व है। जल प्रिय है, आशुतोष है, जल से प्रसन्न होने वाले हैं और सोमवार का उसमें और बड़ा महत्व हो जाता है। इस दिन जो है महिलाएं खासतौर पर व्रत रखती हैं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, अपनी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए, जो भी कामना उनके मन में होती है अपने परिवार के लिए वो कामना उनकी शीघ्र पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ जी।
2: वकी टिहरी, चमोली और चंपावत में बरखा का बावजूद सुबेर बटिन मंदिरों में भगवान शिव का दर्शन और जलाभिषेक खुणी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखने को मिली। पौड़ी जिला में जनजन की सरकार जनजन का द्वार अभियान का समापन द्वारिखाल विकास खंड में आयोजित अंतिम जनसेवा शिविर का दगड़ भेन। 4 जुलाई से 19 जुलाई तक आयोजित 16 बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर में 7,000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग करी, विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं को फायदा उठाएं। शिविर में केवल शिकायतों को समाधान ही नहीं बल्कि पात्र लाभार्थियों का विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण कर उतें मौके पर ही लाभान्वित करी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश का कई जिलों में भारी बरखा की चेतावनी। सुरक्षा की दृष्टि से चारधाम यात्रा तय अस्थायी रूप से थोड़ा वक्त खुणी रोकी गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धनन प्रदेश का ग्रोथ सेंटर तय बाजार, निजी भागीदारी और कोल्ड स्टोरेज चेन से जोड़न पर जोर दिनी। पौड़ी जिला में ग्रामोत्थान परियोजना का तहत माल्टा का छिलका बन लग्या महिला मन की आय को नयु साधन। प्रसंस्करण इकाई में तैयार होना छन हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद। और प्रदेश में सौण का पहला सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं भगवान शिव को जलाभिषेक करी। ये कदगढ़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को युवंक समाप्त भेनी। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान साथियों नमस्कार। सुहावना मौसम, खेतों में हरियाली और मिट्टी की सौंधी महक, यही तो है हमारे गांव और खेती की असली पहचान। इसी खुशबू और खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारी के साथ मैं कंचन आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि जगत में। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पशुओं में होने वाली एक गंभीर समस्या अफारा के बारे में। साथियों, क्या आपका पशु अचानक चारा खाने के बाद बेचैन हो जाता है या उसका पेट अचानक फूल जाता है, वह बार बार उठने बैठने की कोशिश करता है या उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है? यदि हाँ तो ये अफारा की समस्या हो सकती है। अफारा तब होता है जब पशु बहुत अधिक हरा या कोमल चारा जैसे बरसीम या दलहनी चारा एक साथ खा लेता है, या लंबे समय तक पशु ने अगर कुछ ना खाया हो और वह हरा चारा एकदम खा ले तो उसे अफारा की समस्या हो सकती है। साथियों, पशुओं में अफारा की समस्या ना हो इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें, हरा चारा धीरे धीरे खिलाएं, भूखे पशु को एकदम अधिक चारा ना दें और उसे पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल दें। यदि आपको पशु में अफारा के लक्षण दिखाई देते हैं तो घरेलू उपचार पर निर्भर ना रहें, तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। साथियों, यदि समय पर अफारा का इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपके पशु की जान बचा सकती है। साथियों, पशु केवल हमारे खेतों की ताकत नहीं बल्कि हमारे परिवार का एक

अभिन्न हिस्सा भी हैं। इनके सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और साथियों, आज है सावन मास का पहला सोमवार। इस दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे, आपके खेत लहलहाएं, फसलें भरपूर हो, पशुधन स्वस्थ रहें और आपके परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास हो। इसी कामना के साथ आइए सुनते हैं ये रोहिलखंडी भजन।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत। साथियों, भेड़ बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में भी किया जा सकता है। यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो यह किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनाएंगे आपको एक भेंटवार्ता। विषय है छोटे और सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गौरव जैन और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चमोली। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
2: नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर गौरव जैन। आप पशु पोषण विशेषज्ञ हैं और आज हमारी जो डॉक्टर साहब के साथ बातचीत का विषय है वो विषय रहने वाला है छोटे और सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पशुपालक हैं, खेती किसानी के साथ अगर हम पशुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी आमदनी है वो बढ़ती है। और कैसे हम बकरी पालन कर सकते हैं इस विषय पर डॉक्टर साहब से विस्तार से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
3: नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद सर, आपने मुझे एक बार फिर अवसर प्रदान किया।
2: जी डॉक्टर साहब, बकरी पालन की बात करें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें क्यों ज़रूरी है और कितना उपयोगी हो सकता है ये बकरी पालन हमारे पशुपालकों के लिए।
3: जी सर, अगर हम बात करें पशुपालन की, पशुपालन में जैसे हमारे गाय भैंस भेड़ बकरी होती हैं, उनमें अगर हम बकरी पालन की बात करें, बकरी पालन के संदर्भ में एक बात अवश्य बोली जाती है कि बकरी पालन, जो बकरी होती है वो छोटे किसानों के लिए गाय का काम करती है, क्योंकि बकरी को हम दूध पालन के लिए भी करते हैं, मांस उत्पादन के लिए भी करते हैं, और एक आध जो ब्रीड होती है हमारी वो ऊन उत्पादन के लिए भी करते हैं, जैसे गद्दी ब्रीड है। तो छोटे किसान हमारे बकरी पालन को आराम से और एक बहुत कम स्पेस में भी आराम से कर सकते हैं। बकरी पालन के लिए आवश्यक नहीं है कि हमारे किसान भाई ही करें, जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी बकरी पालन हम आराम से कर सकते हैं।
2: जी, किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है? जैसे एक तो बकरियों के लिए हमें बाड़ा बनाना है, दूसरा जैसे बकरियों के लिए नस्ल की हम बात करें, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि शुरुआत के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है।
3: सर जैसे अगर हम बात करें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, अगर हम बाड़े की बात करें, जैसे अगर एक बकरी की बात करें, एक बकरी के लिए हमें लगभग 4 से 5 मीटर स्क्वायर की जरूरत होती है, और अगर हमारे पास 18x80 का वो स्पेस है उसमें हम लगभग 100 बकरियों का आराम से पाल सकते हैं। और नस्लों की बात करें, जैसे जमुनापारी बकरी है या बर्बरी बकरी है, तो हम इस तरह की बकरी हम प्रेफर करते हैं किसान भाइयों को दूध उत्पादन के लिए, क्योंकि जमुनापारी बकरी एक दिन में 2 से 3 लीटर

0: दूध तक दे देती है। और
1: अच्छा
0: बरबरी बकरी जो होती है एक बार में एक दिन में लगभग 500 ml से लगभग 1.25 लीटर तक दूध दे देती है।
1: जी
0: और खान पीन की अगर हम बात करें इनकी, तो जो हमारे किसान भाइयों के घर में हमारा जो वेस्टेज बचता है उस पर भी हम आराम से बकरी पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ बकरी पालन में दलहनी फसलों का जितना भी अवशेष बचता है, जिसको हम कड़वी बोलते हैं, अगर किसान भाइयों के पास वो अगर मिल जाए, क्योंकि कड़वी एक प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है और भूसे में इतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना कड़वी में मिलता है, तो हमें कड़वी ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए जितने भी हमारी दलहनी फसलों के अवशेष होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया जमुनापारी बकरी या जो बरबरी बकरी की बात आपने बताई कि ये दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी है,
0: जी
1: ऐसे ही जैसे आपने बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि या तो दुग्ध उत्पादन के लिए हम बकरी पालन करते हैं या मांस के लिए, तो अगर हम मांस के लिए बकरी पालन कर रहे हैं तो फिर किस तरह की नस्लों का हमें
0: जी
1: पालना चाहिए?
0: अगर मांस के लिए अगर हम बात करें, तो मांस के लिए हमें जो बकरी है, बकरी की शारीरिक बनावट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
1: अच्छा
0: जैसे अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें, जैसे ब्लैक बंगाल एक ब्रीड है, यह सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। इसके
1: अच्छा
0: बाद हमारी जो गद्दी ब्रीड है, ये भी मांस उत्पादन में है, और बीटल है, सानेन है, ये भी हमारी कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो दूध उत्पादन और मांस दोनों में चल जाती है। जैसे बीटल है, ये दूध उत्पादन में भी चल जाती है और मांस में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और ब्लैक बंगाल का सबसे अच्छा टेस्ट होता है, और ये छोटी बकरी होती है और आराम से हम इसको पाल सकते हैं घर में।
1: जी थोड़ा सा डॉक्टर साहब अब आहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि चाहे अच्छा दुग्ध उत्पादन लेना हो या आप मांस के लिए अच्छे किस्म की बकरी पालना चाह रहे हैं, तो किस तरह का आहार हमें बकरी पालन में अपने जो पशु हैं या जो बकरियां हैं उनको खिलाना चाहिए?
0: सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि पशुपालन में 70% हमारा जो खर्चा होता है वो सिर्फ उनके भोजन के ऊपर होता है, बाकी का 30% उनका प्रबंधन के ऊपर हमारा खर्चा हो रहा है।
1: जी
0: और अगर हम भोजन की बात करें, अगर पशुओं में अगर हमें मांस उत्पादन लेना है या दूध उत्पादन लेना है, तो मांस उत्पादन वाली बकरियों में हमें अधिकतम चना है या सोयाबीन है, जिन फसलों में अधिक एनर्जी होती है और जिससे पशु का ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ता है, हमें उनको प्रेफर करना चाहिए। दूध उत्पादन में हम उनकी क्वांटिटी कुछ कम कर सकते हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्शन में अगर कोई हमारी बकरी है, तो उसको हमें प्रतिदिन 500 से 700 ग्राम दाना देना चाहिए, परंतु अगर हम बात करें कि मांस उत्पादन के लिए, उसको हमें 800 से 1 किलो से 1.25 किलो तक दाना देना चाहिए, ताकि उसका जल्दी से जल्दी मांस बढ़े। तो जब हम पशुओं को चारा दे रहे हैं, चारा देने के हमारे तरीका है कि आप पशुओं को पूरा संपूर्ण चारा, संपूर्ण भोजन एक बार में ना दें। उससे क्या होगा कि पशु पूरा चारा ग्रहण भी नहीं करेगा और काफी चारा वेस्ट कर देगा। उसकी बजाय आप 24 घंटे में हम जितना दाना देना है या चारा देना है, हरा चारा देना है, सूखा चारा देना है, आप उसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए। आप उसको 33% एक बार में, 33 और 34 एक बार में दीजिए, और चारा देने के कम से कम 7 से 8 घंटे के बाद आप उसको दोबारा दीजिए।
1: अच्छा
0: उससे क्या होगा कि जो हमारी बकरी होती है, जुगाली करने वाला पशु होता है, ये इसको पहले खाता रहता है, पेट भरता है, उस वक्त पचाता नहीं है, पचाने के लिए बाद में जब बैठ के जुगाली करता है, अगर हम इसको संपूर्ण भोजन एक बार में दे देंगे, तो उसको ब्लोटर डिजीज हो सकती है, अफारा आ सकता है, उससे कभी कभी हमारे पशु पशुओं में देखा जाता है कि उनकी डेथ तक हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे हम खुले मैदान में उनको चराने के लिए छोड़ते हैं, तो ये कितना अच्छा रहता है हमारी बकरियों के लिए?
0: सर जो हमारी एक बकरी है और एक भेड़ है, अगर हम दोनों में अंतर कहीं बात करें, भेड़ हमेशा एक दूसरे के पीछे चलती रहती है, जबकि बकरियां क्या है, जब हम चराने के लिए लेके जाते हैं, बकरियां तितर बितर हो जाती हैं, जो एक बहुत अच्छी आदत है। उससे क्या होता है कि जब बकरियां विभिन्न प्रकार के हरे चारे खाती हैं, तो हर प्रकार की वनस्पति में हम विभिन्न प्रकार के कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बकरी का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध माना जाता है।
1: जी
0: इवन दैट जब हम देखते हैं कि हमारे को कभी डेंगू वगैरह हो जाता है परिवार में या आस पड़ोस में, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको बकरी का दूध पिलाओ। क्यों? क्योंकि बकरी के दूध में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ अगर हमें बकरियों का चराने के लिए लेके जाना है, तो उसका जब सुबह के टाइम ओस रहती है घास के ऊपर, जब तक वो ओस घास पर से ना हट जाए, तब तक उनको हरे चारे में नहीं चराना
1: अच्छा,
0: चाहिए।
1: उससे नुकसान है कुछ?
0: जी, क्योंकि जो ओस की बूंदे होती है, उससे क्या होता है कि बकरियों के गले में जो छाले टाइप से एक बीमारी होती है वो पड़ जाती है, उससे बकरियों को नुकसान होता है, पता भी नहीं चलता है कि बीमारी किस कारण से हो रही है। अगर हम वहीं उस जब ओस समाप्त हो जाती है, जब जैसे सनलाइट आ गई और सनलाइट आने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम लेके जाते हैं, तब तक वो सट जाती है, उसके बाद में वो हरे चारा नुकसान नहीं करता, सिर्फ वो ओस के कारण, क्योंकि पूरी ओस में होती है डस्ट वगैरह भी होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं, उसके कारण बीमारी होती है वो।
1: जी अच्छा, इसके अलावा जैसे और किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, और किस तरह के रोग हैं जो बकरियों में आमतौर पर देखे जाते हैं?
0: सर देखिए, अगर हम बकरियों में बात करें, सबसे

0: नहीं, हमारे पशुपालकों भाइयों को हमें जो हमारा टीकाकरण एक प्रोग्राम होता है वो टीकाकरण जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा बरसात आने वाला है 1-2 महीने पश्चात, तो बरसात से पहले जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं, चाहे वो गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, सभी में टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। स्पेशली जैसे बकरी और हमारे दुधारू पशु होते हैं, उनमें खुरपका एक मुंहपका बीमारी होती है, इससे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में फफूंदी भी छाले वगैरह पड़ जाते हैं, इससे पशुओं को खाना खाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, और उनकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है। और अगर हम ये जितने भी टीके हैं ये सरकारी अस्पताल में फ्री में उपलब्ध होते हैं, सरकार केंद्र एवं राज्य सरकारें सभी टीकाकरण के ऊपर बहुत ध्यान देती हैं। इससे अलग भी अगर हम बात करें बकरियों में, जैसे हमारी गलघोंटू बीमारी है या PPR डिजीज है, इनमें भी फफूंदी वगैरह, गले में छाले वगैरह हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बीमारियों से बचने के लिए हमें टीकाकरण अवश्य यूज करना चाहिए।
1: जी, ये तो बीमारियों की बात हुई डॉक्टर साहब, क्या कुछ और समस्याएं भी हैं जो बकरी पालन में आ सकती हैं हमारे पशुपालकों के साथ?
0: जी, जैसे अगर हमारे पशुपालक भाई जब कभी बकरी पालन शुरू करते हैं और हम एक स्थान से खरीदकर बकरियों को दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं,
1: जी
0: तो उस परिस्थिति में बकरियों की क्या आदत होती है कि तो बकरियां खड़ी रहती हैं, तो जब हमें बकरियों को दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो उस स्थिति में हमें बकरियों को ले जाने से पहले उनको कम से कम 3 घंटे पहले खाना खिला 4 घंटे पहले खाना खिला देना चाहिए। क्या होगा कि अगले 3 से 4 घंटे में बकरियां वो खाना डाइजेस्ट कर लेंगी, उसके बाद हमें बकरियों को ट्रेवल कराना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि जब हम बकरियों को खाना खिलाने के बाद तुरंत अगर लेके जाते हैं तो बकरियां खड़ी रहती है, खड़े उस टाइम ट्रेवलिंग के टाइम पे बकरियां जुगाली करती नहीं है, और जब जुगाली करेगी नहीं, वो खाना पेट में रखा रहेगा, और जब दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे वहाँ का टेम्परेचर तापमान अलग होता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है, कंडीशंस अलग होते हैं, तो उस समय फिर वो पशु डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, तो उस समय कई बार हमने देखा कि 20 से 30% हमारी बकरियों की मृत्यु हो जाती है। और उसमें सबसे बेस्ट तरीका, आप 3 से 4 घंटा पहले खाना खिलाइए, उसके बाद आप बकरियों को लेके जाइए, और ट्रेवलिंग के टाइम पे जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहे हैं, अधिक से अधिक 6 से 8 घंटा आप ट्रेवल कीजिए, और वो सबसे बढ़िया है कि रात्रि के समय आप करें। रात्रि के समय में हमारा तापमान कम होता है, तो ट्रेवलिंग में बहुत कम प्रॉब्लम होती है नाइट टाइम में, और दिन में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, बकरियाँ खड़ी रहती हैं, तो उससे बकरियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, तो इस तरह से जो हमारे पशुपालक हैं, जो हमारे बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, वो सावधानियों का ध्यान रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बीमारियों की बात हो गई, समस्याओं की बात हो गई, क्या इस तरह का भी कुछ रेशियो रखा जाता है कि इतनी बकरियों के साथ इतने हमें बकरे रखना ज़रूरी है?
0: जी, अगर हम बकरी पालन जब भी करते हैं तो नर और मादा दोनों पशुओं की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें कि नर पशु कितने होने चाहिए और मादा पशु कितने होने चाहिए, लगभग 20 मादा पशुओं पर एक नर काफी पर्याप्त होता है, परंतु उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी भी एक नर को किसी मादा के साथ प्रजनन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी दिन हमें उस नर को किसी दूसरी मादा के साथ प्रजनन के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: तो जैसे नर बकरे की हम बात करें, उसके चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा हमें?
0: जी, अगर हम नर बकरे 2 प्रकार के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक मांस के लिए और एक प्रजनन के लिए। अगर हम बात करें मांस के लिए, तो मांस के लिए हमें वो बकरे का प्रयोग करना है कि जिसका वजन अधिक हो, देखने में हष्टपुष्ट हो और वो बधिया हुआ हुआ हो, तो उससे क्या होगा कि अगर बधिया बकरा है तो उसके मांस की गुणवत्ता अच्छा होगी। अगर हम बात करें प्रजनन के लिए, प्रजनन के लिए हमें उस बकरे को प्रयोग में करना चाहिए कि जो सुडौल हो, मजबूत हो, हष्टपुष्ट हो, चंचल टाइप हो, और साथ ही साथ उसकी टांगें मजबूत होनी चाहिए, स्पेशली पीछे वाली टांगें ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, और उसका प्रजनन के प्रति इंटरेस्ट भी होना चाहिए। कि कभी कभी देखा जाता है कि कुछ कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि जिनको हम मादा पशुओं के साथ रखते हैं परंतु वो उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो मादा नर पशु ऐसा भी होना चाहिए जिसको मादा पशुओं में इंटरेस्ट भी हो और साथ ही साथ वो मजबूत हो, हष्टपुष्ट हो, और खाने खाने में डाइजेशन से रिलेटेड उसे कोई बीमारी ना हो।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अब ये गर्मियां आ रही हैं, तो ऐसे में बकरियों के साथ कुछ सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है?
0: जी, अब गर्मियों में अगर हम बात करें बकरी पालन में, तो बकरी पालन में सबसे हमें पहले हमें थोड़ा सा तापमान अपना नियंत्रित करना चाहिए कि हमें बकरियों को सुबह के समय या तो ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहे हैं या शाम के लिए। दिन के समय में हमारे पशुपालक भाई उनको शेड में या कहीं वृक्ष के नीचे बिठा सकते हैं, और तो वहीं पर उनको पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी भी देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको उनको कुछ हरा चारा या स्टॉल फीडिंग करनी है, खोर में उनको भोजन देना है, तो आप दिन में जब पशुपालक हमारी हमारे बकरियाँ दिन में आराम करती हैं, उस समय आप उनको थोड़ा सा हरा चारा या सूखा चारा मिला करके आप दोनों चीज़ दे सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर गौरव जैन, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत बकरी पालन के विषय में आपके साथ हुई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था छोटे और सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गौरव जैन और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी विकास चमोली। साथियों, में उम्मीद है कि आप इस भेंटवार्ता का पूरा लाभ उठाएंगे। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें उस पल की याद दिलाता है जब पहली बार इंसान ने चंद्रमा पर कदम रखकर इतिहास रचा था। चंद्रमा केवल एक सुंदर उपग्रह नहीं बल्कि खेती किसानी और प्रकृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से किसान चांद की कलाओं को देखकर मौसम का अनुमान लगाते आए हैं। आज अंतरिक्ष से मिलने वाली जानकारी किसानों के लिए बेहद उपयोगी रहती है। मौसम की सटीक जानकारी, फसलों की निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी और बेहतर कृषि योजनाएं, ये सभी आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक की ही देन है। आइए आज अंतरिक्ष चंद्रमा दिवस के अवसर पर विज्ञान को अपनाने और आधुनिक तकनीकों के साथ खेती को और अधिक समृद्ध बनाने का संकल्प लें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की शुभकामनाएं। और साथियों, इसी के साथ अभी कार्यक्रम में वक्त हुआ है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

इसी गीत के साथ साथियों अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो रहा है, लेकिन आपको आज का हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। यदि आप कार्यक्रम से संबंधित किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं या अपनी पसंद का कोई लोकगीत रागिनी सुनना चाहते हैं तो ये सब आप अपने पत्रों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथियों पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 2480001 या jagatkrishi@gmail.com पर आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। साथियों आप अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अब अपनी दोस्त कंचन को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 हो रहे हैं और अब वक्त है कुमावनी में प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगर मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। प्रदेशक कई जिलों में भारी उद्योग चेतावनी, सुरक्षा दृष्टि चार धाम यात्रा के स्थायी रूपल कुछ बगत तक लीजी रोकी गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल प्रदेशक ग्रोथ सेंटर्स के बाजार निजी भागीदारी और कोल्ड स्टोरेज चेन से जोड़न पर जोर दे। पौड़ी जिला में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत माल्टाक छिलका बणनिन सैणियाक आयक नई साधन, प्रसंस्करण इकाई में तैयार करी जानिन हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद। और प्रदेश में सोणक पहली सोमवार पर बड़ संख्या में श्रद्धालुओं भगवान शिवजी के जल चढ़े। अब समाचार विस्तारल। प्रदेश में लगातार होने वाली दियो और चारधाम यात्रा बाटों कई जगहों में भूस्खलन के देखभेर ऐतिहासिक तौर पर चारधाम यात्रा संचालन कुछ भगत तक लीजी रोकणक निर्णय ली गई। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूपल बाट बंद होणक स्थिति में तीर्थ यात्रियों के सुरक्षित जगहों में ठहरण और बाटपुर तरीका ठीक होणक बाद ही यात्रा शुरू करणक संबंधित जिलाधिकारियों के निर्देश दी छिन। प्रशासन एल साफ करो कि यह निर्णय तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के सर्वोच्च प्राथमिकता दी ले गई छू और तीर्थयात्रियों थे अफवाहों पर ध्यान नि देण और प्रशासनक आधिकारिक सलाह पालन करणक अनुरोध करी गई छू। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश कई जिलों में रुक रुक बेर दियो हुणय दियो और भूस्खलनल पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के दगड़ ही अन्य सड़कों में यातायात बाधित हुणय संबंधित जिला प्रशासनक तरफा बटी बंद सड़कों के खोलणक कोशिश करी जाणे। यह बीच मौसम विभागल अगिल 24 घंटक दौरान प्रदेशक कई जिलों में भारी उद्योग चेतावनी दे छु। मौसमक चेतावनी के देखबेर राज्य सरकार पूर्व तरीकल चौकन्न छु। सभी संबंधित विभागों में अलर्ट मोड पर धरी गई जेल कैले आपतक स्थिति में झट कार्रवाई करी जैली। आने वाल 30 जुलाई बटी शुरू होने वाल कांवड़ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू बनौणक वेल देहरादून जिला में स्वास्थ्य विभागक तैयारियां अंतिम चरण में छिन। एक भीतर यात्रा मार्ग में व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी जानी ताकि कैले आपतक स्थिति में कांवड़ियों के तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। देहरादूनक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज कुमार सरमाल बताए कि यात्रा मार्ग में प्रमुख जागों और चिन्हित चेक पोस्टों पर विशेष स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था करी जाने। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सक्रिय रोल और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और पर पैनी नजर धरेल।
2: प्रत्येक साल की भांति अभी तक जो जानकारी है उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो पॉइंट चिन्हित किए जाते हैं, जैसे श्यामपुर चौकी पे एक MRP हमारे द्वारा बनाया जाता है, ऐसी IDPL में भी एक हमारे द्वारा MRP स्थापित किया जाता है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जिसमें हमारी जो मेडिकल टीम है जिसमें एक डॉक्टर रहता है, एक फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स रहती है और एक वार्ड बॉय रहता है। तो ये टीम हमारे द्वारा वहाँ पे जाती है टीम और 24/7 काम करती है, रोस्टर में शिफ्ट वाइज ड्यूटी रखती है और वहाँ पे जो सामान्य औषधियाँ हैं और जाँच की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है लोगों को रहती है। इसके अलावा जो बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी 108 की जो के द्वारा एम्बुलेंस की जो स्थापना जो है हमारे द्वारा की जाती है। तो ये लगातार हमारे द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है।
1: मुख्य सचिव आनंद वर्धनल आज सचिवालय में संबंधित विभागों के दगड़ प्रदेशक ग्रामोत्थान सेंटर्सक प्रगतिक समीक्षा करी। उन्होंने ग्रोथ सेंटर्स के स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बतेबे को कि इनके बाजार निजी भागीदारी और कोल्ड स्टोरेज चेन से जोड़ने की जरूरत छू। मुख्य सचिव भल प्रदर्शन करने वाले केन्द्रों के तकनीकी सहयोग देण और बंदपणी केन्द्रों के फिर से संचालित करने का निर्देश दें। दगड़ ही उत्पादों के GI टैगिंग, जैविक प्रमाणन से जोड़न अरवीक पछाण व्यवस्था पर जोर दे। मुख्य सचिव हाउस ऑफ हिमालयाज दगड़ समन्वय बढ़ूर नवार्ड वित्तीय सहयोग सुनिश्चित करण और वन आधारित ग्रोथ सेंटर सक लिजी बिजनेस प्लान तैयार करना निर्देश दे। उन्होंने भेड़ और ऊन विकास बोर्डक अंतर्गत पशुपालकों की समस्याओं को समझण और उनर निस्तारणक लिजी पशुपालकों के दगड़ संवाद और कार्यशाला आयोजित करण के लिए बात कही।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: पौड़ी जिला में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत शुरू करी गई एक अनोखी पहल में माल्टाक छिलकोल सैणियाक आमदानी के नई साधन बन रहे। उमंग स्वायत्ता सहकारिता द्वारा संचालित प्रसंस्करण इकाई में सैणिया माल्टाक छिलकाल फेस पैक स्क्रब और हर्बल उपटन तैयार करणिन। इन उत्पादों में छिलकों दगड़ मुल्तानी माट चंदन गुलाब पाउडर हल्द बेसन और नीम जस प्राकृतिक चीजनक उपयोग करी जाने। पूरी तरीका हर्बल और केमिकल फ्री या उत्पाद बाजार में लोकप्रिय होने। ग्रामोत्थान परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिस्टल बता कि पहाड़ों में खूब मात्रा में होने वाले माल्टा का उपयोग पहली केवल फल और जूस तक सीमित छी, जबकि प्रसंस्करण बाद इन छिलकों के फरदी छी। लेकिन अब इन छिलकों के वेस्ट टू वेल्थ मॉडल तहत हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों में बदली जाने।
4: पौड़ी में उमंग स्वायत्त सहकारिता द्वारा एक बेड़ू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है, जिसमें बेड़ू के साथ साथ अन्य फल और सब्जियों का भी प्रसंस्करण किया जाता है। तो जब हम इसमें माल्टे का प्रसंस्करण करते हैं तो माल्टे के जो छिलके हैं वो वेस्ट चले जाते थे, तो इन वेस्ट से कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए, इसी के तहत हमने इसकी रिसर्च और थोड़ा एनालिसिस करके हमने माल्टे के छिलकों से विभिन्न प्रकार के जो कॉस्मेटिक्स हैं वो तैयार किए हैं, जिसमें अभी इनिशियल स्टेज में हमने तीन प्रकार के कॉस्मेटिक जो माल्टा फेस पैक है, माल्टा स्क्रब है और माल्टा का हर्बल उपटन है, ये पूरी तरीके से जो है जैविक उत्पाद जो है तैयार किए गए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जो माल्टे के छिलके वेस्ट होकर फेंक दिए जाते थे उनसे ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का एक नया स्रोत इससे तैयार होगा।
1: वे ग्रामोत्थान परियोजना से जुड़ी श्रेणी रवीना रावतल बता कि उत्पाद निर्माण पैकेजिंग और विपणन से जुड़े श्रेणिया आत्मनिर्भर बनानी।
5: माल्टे के छिलका गाँव से मंगाते हैं, लेडीजों से वहाँ से 100-150 लेडीजें माल्टे के छिलके हमें देती हैं। माल्टे को धो के सुखा के काट के उनको अच्छे से साफ करके फिर उन्हें उसके बाद फेस पैक उपटन बनाते हैं। और महिला हमें रोजगार का साधन है, हमारे अपना थोड़ा बहुत खर्चा इससे निकल जाता है हमारे पति के।
1: सौनक मैनक पहली सोमवार पर आज राजधानी देहरादून दगड़ ही राज्यक अलग अलग शिव मंदिरों और शिवालयों में ठुल संख्या

0: में श्रद्धालुओं और भगवान शिव जी के जल अभिषेक करो। यह दौरान मंदिरों में हर हर महादेव अर बम बम भोले जय घोषल भक्तिमय वातावरण बनी रहो। बागशिर जिला प्रसिद्ध बागनाथ धाम में शिव भक्तों का आस्थाल भरी नजर आई। भगवान शिवक जल अभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रेणिया जवान बूढ़ बाढ़ और ठूल संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी कतार मंदिर परिसर में लगी रही। मंदिरक पुजारी पंडित हरीश पाठकल बता कि सौणक महीनक पहली सोमवार भगवान शिव जी की आराधना के लिए बहुत शुभ मानी जा।
1: आज का विशेष महत्व यह है कि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और इस सोमवार में जो पहले श्रावण मास शिव को अति प्रिय है, इसमें हर किसी दिन यहाँ पे जलधारा का विशेष महत्व है। जल प्रिय है, आशुतोष है, जल से प्रसन्न होने वाले हैं और सोमवार का उसमें और बड़ा महत्व हो जाता है। इस दिन जो है महिलाएं खासतौर पर व्रत रखती हैं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए, जो भी कामना उनके मन में होती है अपने परिवार के लिए वो कामना उनकी शीघ्र पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ जी।
0: उठा तिहरी चमोई और चंपावत में द्योग बावजूद राती बटी मंदिरों में भगवान शिवक दर्शन और जल चलूणक लीजी श्रद्धालुओं को लंबी लेन देखण के मिले। पौड़ी जिला में जनजनक सरकार जनजनक द्वार अभियानक समापन द्वारिखाल विकासखंड में आयोजित अंतिम जनसेवा शिविरक दगड़ होए। 4 जुलाई बटी 19 जुलाई तक आयोजित 16 बहुउद्देशीय जनसेवा शिविरों में 7,000 है ज्यादा मैसोल प्रतिभाग करो विभिन्न विभागों की योजनाओं सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाई। शिविरों में केवल शिकायतों का समाधान ही नहीं हो बल्कि पात्र लाभार्थियों का अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण कर उनके मौके पर ही लाभान्वित ले करी गई। जनसेवा शिविरों का उद्देश्य शासनक सेवाओं के मैसों तक घर द्वार तक पहुंचने और समस्याओं का झट समाधान सुनिश्चित करण छू। आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। प्रदेशक कई जिलों में भारी द्योग चेतावनी सुरक्षा दृष्टि चारधाम यात्रा के स्थायी रूपल कुछ भगतक लिजी रोकी गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल प्रदेशक ग्रोथ सेंटर्स के बाजार निजी भागीदारी और कोल्ड स्टोरेज चैन से जोड़बेर जोड़ दे। पौड़ी जिला ग्रामोत्थान परियोजना के तहत माल्टाक छिलकों से बढ़ने श्रेणिया आमदानी के नई साधन प्रसंस्करण इकाई में तैयार करी जानी हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद और प्रदेश में सोणक पहली सोमवार पर ठुल संख्या में श्रद्धालुओं भगवान शिव जी के जल चढ़ाए। एकादगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।

105 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40 हो रहे हैं और अब पेश है फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और सुनेंगे फिल्म संगीत में ये पहला गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वर में। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है प्यासा सावन।

जी हाँ श्रोताओं, आजकल का जो वादियाँ हैं ना वो बहुत हसीन हो चुकी हैं, क्योंकि ये चल रहा है महीना सावन का और रिमझिम फुहारों के बीच ये हरी भरी वादियाँ और ये हसीन सा मौसम। तो जी हाँ, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:46 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और जिसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, और फिल्म है प्रिंस। शंकर जयकिशन ने इस गीत को संगीत दिया है और बोल हैं हसरत जयपुरी के।

0: हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो जाना
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:50 होने को है श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण।
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान दर्पण के साथ मैं प्रियंका मलिक आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ज्ञान दर्पण के इस विशेष कार्यक्रम में हर हफ्ते की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी, जिसमें हम बात करेंगे ईट राइट यूथ हैकाथॉन उत्तराखंड की। युवाओं को ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल के प्रति किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। साथ ही जानेंगे आखर ऐप के बारे में, जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा और बोलियों को संरक्षित करने का काम कर रहा है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शुमार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली तिला सेन कौन है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। श्रोताओं, अच्छा खान पान स्वस्थ जीवन का आधार है, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर गलत खान पान और अनियमित दिनचर्या के कारण बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गलत खान पान से बचने के लिए देश भर में ईट राइट अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाने के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में देश में पहली बार यूनाइटेड नेशन की संस्था ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशंस के सहयोग से उत्तराखंड में ईट राइट यूथ हैकाथॉन उत्तराखंड 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश भर के तमाम युवाओं से फूड सेफ्टी को लेकर इनोवेटिव आइडिया लिए गए। इसके लिए उत्तराखंड के करीब 1600 युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिनमें से सिर्फ 26 युवाओं का ही चयन किया गया था। बता दें कि देश दुनिया में ईट राइट एक बड़ी समस्या बनी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ठीक जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते लोग इससे बीमार भी हो जाते हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार देश भर में ईट राइट अभियान संचालित कर रही है, ताकि लोगों को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे न सिर्फ वो स्वस्थ होंगे बल्कि उन्हें अस्पतालों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन आज भी देश में फूड को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड में संस्था की ओर से ईट राइट यूथ हैकाथॉन का आयोजन किया गया। करीब 9 महीने तक चले इस इनोवेशन बूट कैंप के जरिए प्रदेश के 9 टीम यानी 26 युवाओं का चयन हुआ, जिन्होंने फूड को सुरक्षित रखने के साथ ही न्यूट्रिशंस से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण आइडिया दिए। युवाओं का कहना है कि स्ट्रीट वेंडिंग सिस्टम को चेंज करना होगा, क्योंकि जो पारंपरिक वेंडिंग सिस्टम है उसमें फूड और वेजिटेबल सोलर लाइट की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे में उन्होंने एक ऐसा कार्ड बनाया

0: है जिसमें स्ट्रीट फूड और सब्जियां जल्दी खराब ना, साथ ही उसको धूल मिट्टी से भी बचाया जा सके। हमें उम्मीद है कि हमारा ये इनोवेशन काफी हद तक सफल होगा। हालांकि युवाओं का कहना है कि इस कार्ड की कीमत करीब 25,000 रुपए रहने की संभावना है, लेकिन भविष्य में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। ऐसी बातें युवाओं का कहना है जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया। इसके साथ ही वर्तमान समय में फूड सेफ्टी यानी कि खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में फूड सेफ्टी को लेकर इन युवाओं ने जो नया आइडिया दिया है वो आने वाले समय में काफी हद तक बेहतर और मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आखर ऐप की। श्रोताओं, उत्तराखंड की 3 मुख्य बोलियों को लेकर तैयार किए गए इस मोबाइल ऐप को एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा बोलियों से जोड़ने का ये ऐप एक बढ़िया माध्यम बन सकता है। संस्कृति, रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का इससे जुड़ना बेहद जरूरी है। जबकि किसी भी देश प्रदेश की संस्कृति उसकी बोली उसकी भाषा से जुड़ी होती है, ऐसे में अपनी बोलियों और भाषाओं को जानना भी काफी अहम हो जाता है। इसी को समझते हुए उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाएं अब मोबाइल ऐप में शब्दकोश के जरिए समाहित की गई है। कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी डिमरी और उनके सहयोगियों ने उत्तराखंड की 3 क्षेत्रीय भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी पर बनाए गए मोबाइल ऐप आखर शब्दकोश को तैयार किया है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक भाषाओं को नई पीढ़ी और दुनिया भर में बसे उत्तराखंडियों तक पहुंचाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा के छोटे से कस्बे चारूबेटा से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शुमार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली आईटीबीपी की जवान तिला सेन की हर तरफ चर्चा हो रही है। आईटीबीपी की 11 महिला पर्वतारोहियों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली तिला सेन के जज्बे, हौसले, साहस को आज हर कोई सलाम कर रहा है। भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा का जिम्मा उठाने वाली तिला सेन ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। आपको बता दें कि खटीमा के छोटे से कस्बे चारूबेटा में रहकर सरकारी स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने वाली तिला ने नैनीताल से पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। 2021 में तिला सेन एसएससी जीडी के माध्यम से 36वीं इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस लोहाघाट चंपावत में पोस्टेड हुई। यहीं से तिला के उन सपनों को उड़ान मिली जिसके बूते आज उत्तराखंड के टॉप 5 माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिलाओं में वो शुमार हो चुकी है। तिला के मुताबिक 19 अप्रैल 2026 दिल्ली से माउंट एवरेस्ट फतेह करने का सफर नेपाल के कठिन साउथ कोल रूट से शुरू हुआ। आईटीबीपी के पहले सर्व महिला एवरेस्ट अभियान में 17 सदस्य दल में 11 महिला पर्वतारोहियों के साथ तिला ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करने के अभियान की शुरुआत की। साहस, हिम्मत, हौसले और जुनून के दम पर उत्तराखंड की बेटी ने आखिरकार कठिन पूर्ण पर्वतारोहण के इस अभियान को सफल करते हुए 21 मई 2026 को सुबह 6:52 पर उनकी टीम ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराया। श्रोताओं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया बिछेंद्री पाल, वह भी उत्तराखंड निवासी रही। उन्होंने 23 मई 1984 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। इसके साथ ही एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही बनी थी। और अब बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड, नाम से ही इसकी आध्यात्मिक पहचान साबित होती है। ये पावन भूमि है जहां आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कुमाऊं मंडल से संचालित कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा तथा गढ़वाल मंडल की चारधाम और नंदा राजजात जैसी यात्राएं उत्तराखंड को देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बनाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की अगर हम बात करें तो ये यात्रा भारत की सबसे कठिन और पवित्र धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा मार्ग से संचालित ये यात्रा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के समन्वय से आयोजित की जाती है। यात्रा का मार्ग दिल्ली से प्रारंभ होकर टनकपुर, धारचूला, गुंजी और नाभीडांग होते हुए लीपू लेक दर्रा तक पहुंचता है। नाभीडांग से श्रद्धालु को पवित्र ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। इसके बाद यात्री तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पहुंचते हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 जुलाई को चंपावत जिले के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहले दल में चिकित्सक समेत 49 सदस्य शामिल है, जिनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं श्रद्धालु है। पहले दल में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के श्रद्धालु शामिल है। दल के सबसे वरिष्ठ यात्री राजस्थान के 68 वर्षीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल है, जबकि गुजरात के 21 वर्षीय हरे कृष्णा सबसे युवा तीर्थ यात्री है। ये यात्रा लगभग 21 से 22 दिनों में पूरी होती है। इस दौरान श्रद्धालु लगभग 52 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा करते हैं, जबकि कुल पैदल यात्रा लगभग 40 से 50 किलोमीटर की होती है। यात्रा अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम हिमालय क्षेत्र से होकर गुजरती है। उत्तराखंड में आवास, भोजन और परिवहन की व्यवस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है, जबकि सुरक्षा और चिकित्सा सहायता भारत तिब्बत सीमा पुलिस उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक सौंदर्य, कठिन पर्वतीय मार्ग और गहन आध्यात्मिक अनुभूति से जुड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा श्रद्धालु के लिए आस्था, साहस और आत्मिक अनुभव का अद्वितीय संगम है।
1: अभी आप सुन रहे थे आरएनए देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

शा सुनिए पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहाँ चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के

0: बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया। जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शिखराय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जी राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रकाश गवड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगा साई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अलसानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं काव्यांजलि में श्री सतीश बंसल से कविताएं।
2: कार्यक्रम काव्यांजलि के अंतर्गत आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ अपनी कुछ नई कविताएं लेकर। आइए शुरुआत करता हूँ काव्य पाठ की एक दोहे के साथ।

और मित्रों, अभी हमने मातृ दिवस मनाया। माता को समर्पित एक दोहा पेश करता हूँ कि सब उपमाओं से परे

तार। और मित्रों, कविता की बात हो, उसमें गीत का समायोजन ना हो, ये तो अनुचित ही लगता है। आइए, गीत की कुछ चंद पंक्तियां आपको सौंपता हूं। ये गीत आपको जीवन दर्शन के बारे में बात करेगा। कि शीतल

वीणा। अब कविता की मूल विधा की तरफ लौटता हूँ। कविताएं हमको प्रेरित करती हैं जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हर परिस्थिति में। आज उन तमाम नौजवानों को ये कविता सौंपता हूँ जो थोड़े निराशा के भंवर में हैं, जिनको लगता है कि हमारे सब कुछ करने के बाद भी हमको फल की प्राप्ति उस तरह से नहीं हो रही है। कि चित्त को रखने चेतना में और निश्चल, चित्त को रख चेतना में और निश्चल, नित्य लगते चांचलों का पी हलाहल। चित्त को रख चेतना में और निश्चल, नित्य लगते लांछनों का पी हलाहल। चूम ले जब तक नहीं पग लक्ष्य तेरे, ओ पथिक कर्तव्य पथ के चल चला चल। ओ पथिक कर्तव्य पथ के चल चला चल। के अनगिनत छाले पगों के फूट ना सहे, अनगिनत छाले पगों के फूट ना सहे, साथ अपनों का निरंतर छूट ना सहे। जो सहेजे उम्र भर निज अंग जैसे, उन सभी का निज बतन से टूट ना सहे। और घूंट पलकों के अधर से दर्द का जल, घूंट पलकों के अधर से दर्द का जल। ओ मुसाफिर ओ पथिक कर्तव्य पथ के चल चला चल, ओ पथिक कर्तव्य पथ के चल चला चल। के मौन के वाचाल के हर चल अचल के, धीर धर उर्वार सहकर छल छद्म छल के। मौन के वाचाल के हर चल अचल के, धीर धर उर्वार सहकर छद्म छल के। है निरुत्तर प्रश्न जो उलझे हुए हैं, कर निरंतर यत्न उनके पूर्ण हल के। और जब तलक तरु कर्म का देवे नहीं फल, जब तलक तरु कर्म का देवे नहीं फल। ओ पथिक कर्तव्य पथ के चल चला चल, ओ पथिक कर्तव्य पथ के चल चला चल। और मुक्त रख उरको अनैतिक आवरण से, मुक्त रख उरको अनैतिक आवरण से। पालता जो सत्य का व्रत प्राण प्रण से, कर सका जो संयमित बंसल स्वयं को। वर विजय वह लौटता हर बार रण से, जापता नित सिद्धि का यह मंत्र पल पल। ओ पथिक कर्तव्य पथ के चल चला चल, ओ पथिक कर्तव्य पथ के चल चला चल, ओ पथिक कर्तव्य पथ के चल चला चल। और मित्रों, एक बहुत ही सुंदर विधा है कविता की, जिसको हम माहिये कहते हैं। चलते चलते कुछ माहिये आपको समर्पित करता हूँ। चाहत के नाम पिए

0: अभी आप सुन रहे थे काव्यांजलि में श्री सतीश बंसल से कविताएं। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। श्रोता आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और ये पहला गीत फिल्म खूबसूरत से अभिजीत और श्रद्धा पंडित की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। फिल्म है कुछ कुछ होता है।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:40 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, समय को देखते हुए सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अंतिम गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत में पिरोया है AR रहमान ने। फिल्म है लगान।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश

0: नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
4: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा

परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म संगीत में अभी आप ये गीत सुन रहे थे बी पराग और जसलीन रॉयल की आवाज़ में फिल्म शेरशाह से। तो श्रोताओं सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने और फिल्म है सलाम नमस्ते।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 9:43 हो रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत फिल्म गजनी से।

श्रोता फिल्म संगीत में अभी आप ये गीत सुन रहे थे अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में फिल्म भारत से। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। तो श्रोताओं सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत जसलीन रियाल की आवाज़ में। फिल्म है शिवाय।

शुदा फिल्म संगीत में सुनेंगे अंतिम गीत, जिस गीत को संगीतबद्ध किया है अंकित तिवारी ने, और फिल्म है रॉय। इस गीत में आवाज़ भी है अंकित तिवारी की। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाई फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभा सदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य है। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के रक्षा समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय सभापति है। प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीपाल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
3: प्रश्न नंबर 1,
4: प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
5: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
6: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है,

0: विरासत हमें दर्शन भी देता है। और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे। मोदी जी ने प्राण प्रण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी। और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा। और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति भी संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
1: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्ते लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10:13 हो रहे हैं और पेश है फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

सावन आया है, घटाएं छाई है, रिमझिम की झनकार है और आज है शिव का पहला सोमवार। भक्ति का त्यौहार है और इस खूबसूरत सी रात में कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट सोनिया खुशाल। तो जी हाँ श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और इन रिमझिम सी फुहारों का

लेते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ श्रोताओं, ये वही कार्यक्रम है जिसमें सुनवाए जाते हैं आपको आपके पसंदीदा गीत आपके नाम और पतों के साथ। तो उठाइए अपना मोबाइल और कर दीजिए हमें व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। तो जैसे कि श्रोताओं मैं आपसे अक्सर कहा करती हूँ कि हमारे कुछ नियमित श्रोता हैं जो हम संग जुड़ चुके होते हैं समय रहते ही। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। आप जुड़े हैं हमारे साथ मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस, और साथ ही चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं सैफाली, सैफी और दावेश, विमल और सतीश, अनेजा। साथ ही अगर हम बात करें हमारे अगले श्रोता की तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हैं हमारे साथ निशांत। निशांत जी तहे दिल से शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। और रेणुका और नीलम, और साथ ही हमारे साथ हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, और नर्मदा पाक मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और सलीम पटेल। तो आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: गांव फरासी जिला हिसार से हमारे साथ है राजकुमार हुड्डी, प्रमोद कुमार हुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार हुड्डी और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं जिला अंबाला उगाला से हमारे साथ हैं दिनेश और दानू और साथ ही हमारे अगले श्रोता हैं जो हम संग जुड़े हैं आप हैं हमारे साथ ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, कोटवा, नारायणपुर, बाबा बट्टी, बलिया से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया और नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल। तो श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
1: पूछे जो कोई मुझसे

श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं शंभू दयाल खटक जी, और साथ ही हमारे साथ हैं मारहड़ा दरवाजा एटा से हमारे साथ हमारे अगले श्रोता हैं। और अगर हम बात करें हमारे अगले श्रोता की, तो आप हमारे साथ हैं देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू।

राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा और आर एस आहूजा, रजत आहूजा, सुनील कुमार सक्सेना, मयंक और नक्स हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर से। साथ ही हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं हमारे साथ देहरादून चक्राता रोड से, सुनील और नीतू, और झारखंड से हमारे साथ हैं अब्बास आलम, अमजद अली और लाडली बेबी निशा और सभी घर के सदस्य हैं। तो आप सभी की फरमाइश पर श्रोताओं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो आइए श्रोताओं सुनेंगे ये फरमाइशी गीतों का ये अगला कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े हैं किशन, वंजनी, नीलम, स्वाति और संगीता, सरिता, सुमन महाजन और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, तहे दिल शुक्रिया। और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमारे साथ हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। साथ ही हम बात करें हमारे अगले श्रोता की, तो आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अगले श्रोता आप हैं वर्णिंग खेड़ा से हमारे साथ है तिशु और नानू, और बटिंडा रोड मंडी डावली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। और साथ ही हमारे अगले श्रोता हैं गांव कल्याण मलका जिला बटिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया परमिंदर समचूर और मनिंदर सिंह। तो श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप ये बेहद ही खूबसूरत सा नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनुराग से। जी हाँ श्रोताओं, आपका कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश का और आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर और मैं हूँ आपकी दोस्त और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट सोनिया खुकशाल। तो जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत जिसकी फरमाइश करता हमारे साथ जुड़े हैं शेरकोट जिला बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अजीम बाकी, अलीम बाकी और अदीम बाकी। साथ ही हमारे साथ है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा। जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ हैं सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा। तो श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ श्रोताओं, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ये बेहद ही खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे शैलेंद्र की आवाज में, और फिल्म थी खेल खेल में। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ बहुत मजा आ रहा होगा। और चलिए कार्यक्रम में सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, जिसके फरमाइशकर्ता हमारे साथ हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल और प्रिया। वर्निंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली। और साथ ही हमारे साथ जो हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं हमारे साथ वर्ली मुंबई से नवाब खान और इरशद जहां, मोहम्मद यासीन हासमी और मोहम्मद नगमा बेगम हासमी। आप हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा से हमारे साथ। और साथ ही हमारे अगले श्रोता हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा और नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्रा। तो श्रोताओं, सुनेंगे आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत, और इसी गीत के लिए हमारे साथ हैं गंगोला दातागंज जिला बदायूं से हैं इसरत खान और शाइना बेगम, रुसत खान और साबरीन बेगम, सहबाज खान। तो श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का

0: साथ है,
1: फिर कुड़ी भी तेरे साथ है,
2: तो
1: फिर
2: शुरू हो जा सोनियो। तो जी हाँ श्रोताओं, हम भी आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं, क्योंकि बिना साथ के ये कार्यक्रम तो संभव ही नहीं है। जी हाँ श्रोताओं, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि अगर कोई भी श्रोता हम संग ना जुड़े तो वो हमारी हार है और हर एक

जगराओं से। और बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और हार्दिक। साथ ही हमारे साथ हमारे अगले श्रोता हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। जी हाँ श्रोताओं, और किशोर नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय जय श्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, राम निवास अग्रवाल और धनंजय और पीबी कुल थे। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से, शेरवाली गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब अंसारी। तो श्रोताओं सुनेंगे आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

गांव जाखोद राजस्थान से हमारे साथ हैं समुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। साथ ही हमारे साथ हैं हमारे जो अगले श्रोता हैं, आप हैं हमारे साथ मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद सारिक अली और बाबू अंसारी, निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, धनौरी तेलीवाला सर।

टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा। साथ ही हमारे जो अगले श्रोता हैं आप हैं हमारे साथ जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और दीपक कुरहाड़े जी। और अगर हम बात करें हमारे अगले श्रोता की तो आप हैं लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जारी, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सहनवाज, मोहम्मद शाहरुख और मोहम्मद सोएब कहकशा और पूरा परिवार। तो जी हाँ श्रोता, अक्सर मैं कहा करती हूँ कि कोई भी काम अगर हम परिवार के साथ मिलकर करते हैं तो उस काम को करने का मज़ा दोगुना हो जाता है। और अगर हम बात करें रेडियो पर कार्यक्रम सुनने की तो उसके क्या ही कहने, ऊपर से हमारा कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश का। तो जी हाँ श्रोताओं, तहे दिल से पूरे परिवार के साथ हम संग जुड़ने के लिए शुक्रिया। और धनौरी तेरीवाला से हमारे साथ हैं निशा सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। तो आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: घटा छा गई है, बाहर आ गई है। जी हाँ श्रोताओं, हम इस उम्मीद के साथ कि सावन की ये फुहारें आपके जीवन में खुशियों की बौछार करें और आपका जीवन खुशहाल हो, इसी के साथ कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी दोस्त और होस्ट सोनिया खुकशाल को दीजिए इजाज़त, इसी वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। तब तक रखें अपना ख्याल। शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे की जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु।

विधानसभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।